सुप्रभात। मेडे वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की दूसरी तिथि, तदनुसार 23 जून सन 2026। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के ठीक 5:48 और 40 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: जीवन में हमारा लक्ष्य चाहे कितना भी दूर हो और हमारी चलने की गति कितनी भी मंद क्यों ना हो, निरंतर चलते रहने से हमारी लक्ष्य सिद्धि निश्चित संभव है। व्यक्ति अपने जीवन में कई उद्देश्यों के साथ कई लक्ष्यों को निर्धारित करता है तथा उन्हें पाने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त कर व्यक्ति जीवन में अपनी अर्थवत्ता, गुणवत्ता और आत्मतुष्टि का प्रसाद प्राप्त करता है। व्यक्तिगत स्तर पर जहां मानव अपने सपने सच होने का सुख अनुभव करता है,

0: वहीं वह समष्टि के स्तर पर एक खुशहाल समाज और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना स्वाभाविक योगदान भी करता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है कि अपने जीवन को सम्मानजनक एवं उन्नत बनाने के लिए अपनी जीवन शैली में उन्नतिप्रद लक्ष्यों की ओर निरंतर चलते रहने की आदत बनाए रखें। कभी कभी हमारे लक्ष्य हमारी पहुंच से परे लगने लगते हैं, यद्यपि हमारी आंतरिक लालसा होती है कि हम उन सारी चीजों को प्राप्त करें जो हमें सुख और खुशी दे सकती है, तथापि लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते की लंबी दूरी और साधन की तुक्षता देखकर कई लोग धीमे चलना बंद कर बीच में ही रुक जाते हैं। वे आगे बढ़ने का प्रयास ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने से तो मनचाही मंजिल तक पहुंचने की सारी संभावनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। ये बात हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं है अगर हम धीरे धीरे ही सही किंतु बिना रुके और बिना प्रयास छोड़े मंजिल की दिशा में बढ़ते रहें तो आज नहीं कल ही सही पर अपने लक्ष्य को पाना असंदिग्ध रहता है। रुक जाने वाले तो अनजाने में ही बस एक कदम भर की दूरी पर मंजिल से वंचित रह जाते हैं। एक कदम चलने की कोशिश कितनी मूल्यवान है ये बात समझी जा सकती है। ऐसी किसी भी अनचाही संभावना को हम निर्मूल कर सकते हैं। हमें दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि हम कभी भी समस्याओं से संघर्ष में मनोबल को टूटने नहीं देंगे। हारकर अपने कार्य सिद्धि के लिए किए जा रहे प्रयास को छोड़ेंगे नहीं। परिस्थितियों को देखते हुए गति भले ही मंद कर लें किंतु आगे बढ़ने का प्रयास कदम दर कदम जारी रखेंगे। अगर हमारा प्रयास अनवरत जारी रहता है कोई भी बाधा हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। फिर कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो पूरा ना किया जा सके, कोई ऐसी मंजिल नहीं जहां हम पहुंच ना सके। ऐसा भी कभी हो सकता है कि एक व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करें और तेज गति वाले उस लक्ष्य तक कम समय में पहुंच जाएं। वे मंजिल तक पहले पहुंचे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। सफलता के सच्चे सुख की अनुभूति बहुत व्यापक और समय की सीमा से परे होती है। कुछ देर बाद ही सही जिन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है वे भी उस मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं और सफलता की दिव्य खुशी अवश्य अनुभव करते हैं। हमें इस क्रम में एक कमजोरी से सतर्क अवश्य रहना चाहिए, वह है आलस्य। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लक्ष्य की सुगमता की बात सोचकर हम अति आत्मविश्वास में कुछ समय के लिए अपने प्रयास को विराम दे दें कि इसे तो हम कभी भी पूरा कर सकते हैं। ये बात हमारे लक्ष्य की सिद्धि में बाधक हो सकती है। संसार की परिस्थितियां क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होती रहती है। वे परिवर्तित परिस्थितियां हमेशा हमारे प्रयास के लिए अनुकूल ही हो ये आवश्यक नहीं। अतः अपने कार्यरण नीति के अंतर्गत हम अपना प्रयास कभी धीमा कर दें, मार्ग परिवर्तित कर दें किंतु उन्हें कभी भी बंद न करें। अपने उद्योग में लगे रहने से, निरंतर मंजिल की ओर बढ़ते रहने से मनुष्य को अपने अंदर से एक नई ऊर्जा, एक नए जोश, एक नए विश्वास का संचरण होने लगता है। आशा की नई किरण आगे आगे मार्ग आलोकित करती, हमें आगे बढ़ते जाने को प्रेरित करती है। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी तो निरंतर हमें अपनी गति से चलते रहने की ही प्रेरणा देते हैं, रुकने की नहीं।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि चर्चा। विषय है पोषण वाटिका के लाभ।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे घरों के आसपास जो भी थोड़ी बहुत खाली जमीन उपलब्ध है उसमें योजनाबद्ध तरीके से आप साग सब्जियां और फल उत्पादन कर सकते हैं और इसे ही किचन गार्डन या पोषण वाटिका, गृह वाटिका हम कहते हैं। पोषण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति जिन फलों से, जिन सब्जियों से होती है और जहाँ पर उनको हम लगाते हैं उसे ही पोषण वाटिका का नाम देते हैं। वैसे तो संतुलित आहार के लिए प्रत्येक सामान्य व्यक्ति को कुछ हरी सब्जियाँ, कुछ फल और कुछ अनाज, दूध, दही का प्रयोग करना चाहिए। तो ये साग सब्जियाँ जो हैं और फल जो हैं जो कि छोटे क्षेत्र में हो सकते हैं उन्हें आप अपने पोषण वाटिका में लगा सकते हैं। पोषण वाटिका के कुछ लाभ और कुछ उद्देश्य भी हो

0: ते हैं। परिवार को पोषण सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। परिवार के प्रत्येक सदस्य को उनकी आवश्यकता अनुसार, पसंद इच्छा अनुसार संतुलित भोजन इससे उपलब्ध होता है। फल और सब्जियां विटामिन ए और खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। गृह वाटिका द्वारा हम भोजन में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। घर के समीप की खाली पड़ी भूमि का सदुपयोग हो पाता है। घर के उपयोग से प्राप्त व्यर्थ जल एवं भोजन अवशेषों का सदुपयोग हो पाता है। वर्ष भर स्वास्थ्यवर्धक गुणवत्ता युक्त सस्ते फल एवं सब्जियों की सुलभता बनी रहती है। रसायन सहित सब्जियों के उत्पादन एवं सेवन को बढ़ावा मिलता है। गृह वाटिका लगाकर महिलाएं परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में अपना योगदान दे सकती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से स्वयं उगाई गई सब्जियां बाजार की फल और सब्जियों से अधिक स्वादिष्ट लगती है। अब बात आती है कि गृह वाटिका का निर्माण हम कैसे करें। तो गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चयन करें जहां पर कम से कम 6 घंटे से अधिक सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। जहां तक संभव हो गृह वाटिका का निर्माण घर के नजदीक किया जाए ताकि इसका प्रबंधन भली भांति किया जा सके। गृह वाटिका हेतु ऐसी जगह का चुनाव करें जहां पानी का स्रोत बराबर बना रहे और जहां किसी भी प्रकार छाया का पड़ाव नहीं हो, यानी कि छाया वहां पर न पड़ती हो। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि की मृदा जांच प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर भी करानी चाहिए। गृह वाटिका हेतु चयनित भूमि समतल होनी चाहिए क्योंकि ढलवा होने पर पोषक तत्वों के क्षय होने की आशंका होती है। अब बात ये आती है कि इसमें किस किस तरह की सब्जियां लगा सकते हैं। तो खरीफ मौसम वाली सब्जियां जो हैं जून जुलाई के महीने में आप लगावें। इसमें भिंडी, लौकी, करेला, तोरई, बैंगन, टमाटर, ग्वार, लोबिया, मिर्च, अरबी इत्यादि है। रबी मौसम में जो सब्जियां लगाएंगे वो सितंबर अक्टूबर माह में लगाते हैं। इस समय बैंगन, सरसों, मटर, चना, प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर, शलजम, फूलगोभी, बंद गोभी आदि सब्जियां होती हैं। गृह वाटिका हेतु जो जमीन की तैयारी होती है वो आप यदि क्षेत्र बड़ा है तो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें, नहीं तो कुदाल या खुरपी से उसका प्रबंधन आप कर सकते हैं। कंकड़ पत्थर उसमें से हटा दें। गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें। मिट्टी भुरभुरी रहती बना लें और उसमें कार्बनिक खाद और जीवांश तत्वों से भरपूर मिट्टी है उसमें ही गृह वाटिका लगाने का आप प्रयास करें। और आवश्यकता अनुसार अपने क्षेत्र को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लें। प्रत्येक क्यारियों में अलग अलग सब्जियां आप लगाएं। जैसे किसी में आपने प्याज लगाया, किसी में लहसुन लगाया, किसी में मटर लगा दिया, किसी में टमाटर लगा दिया, किसी में भिंडी, लौकी, तो इससे ये होगा कि आपको जो है हर तरह की सब्जी उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ सब्जियां होती हैं जो एक साथ तैयार हो जाती हैं, जैसे कि गोभी है, तो आप एक ही दिन में पूरी क्यारी में गोभी की फसल अपनी नहीं लगावें, बल्कि 2-4 पौधे 2-3 दिनों के अंतराल पर लगावें ताकि लंबे समय तक आपको उससे गोभी की सब्जी मिलती रहे। तो इन सब बातों पर ध्यान दे करके यदि आप पोषण वाटिका किचन गार्डन बनाते हैं, अपने घर के अगल बगल जो खाली जमीन है उनका भी आप सदुपयोग कर पाएंगे और अपनी आमदनी में से कुछ पैसा भी बचा लेंगे जो कि आप सब्जियों की खरीद पर लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है जैविक सब्जियां मिलेगी जो कि घर की लगाई होगी और उसमें एक अपनापन महसूस होगा, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा।
1: पोषण वाटिका के लाभ इस विषय पर जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। सुबह के 6 बजने के हैं और ये समय है हिंदी में समाचार का। इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत तेजी से विकसित हो रही भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय शक्ति है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस द्वारा आयोजित सम्मेलन में कहा कि पिछले दशक में भारत की उपलब्धियां राष्ट्र प्रथम की भावना से निर्देशित रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में लिए गए निर्णय और कार्रवाई सदियों तक देश के भविष्य की आधार

0: आधारशिला रहेंगी।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन में अपनी हाल की भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के प्रति भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की चेतना में सदियों से सहेजी गई स्मृतियां जीवंत हैं। वर्तमान में उठाए गए कदम अगले 1000 वर्षों के लिए भविष्य को आकार देंगे। सरकार के 12 वर्ष के सेवा कार्यों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश के लगभग 45,000 गांवों तक मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। श्री मोदी ने कहा कि आज कुछ लोग संविधान की बात उठाते हैं, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो नक्सल ग्रस्त क्षेत्रों में संविधान का नाम लेने पर ही गोली तक मार दी जाती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया जैसी पहल इस कारण सफल हो सकी है क्योंकि देश के लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि रखा और देश के प्रति कर्तव्य निभाए। आर्थिक सुधारों से मध्यम वर्ग को मिल रहे लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कर राहत उपायों से परिवारों की कर मुक्त आय बढ़ी है। भारत और मोरक्को के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनोद बाहड़े और मोरक्को के राष्ट्रीय न्यायिक पुलिस ब्रिगेड के प्रमुख हिशाम बाली ने की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। उम्मीद है कि ये पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों और हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ आग हादसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थी मारे गए और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज के लिए संभावित हाजियों के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हज नीति 2027 जारी करते हुए कहा कि आवेदन हज कमेटी ऑफ इंडिया के पोर्टल और हज सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, जिससे ये प्रक्रिया ज्यादा आसान और सुलभ हो जाएगी। फीफा विश्व कप में इस समय अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ग्रुप 1 के मुकाबले में फ्रांस और इराक के बीच मैच चल रहा है। इससे पहले ग्रुप जे के मैच में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी ने 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोज का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। और विश्वास में इतनी शक्ति है कि इससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है।

इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरित मानस से पाठ, मुख्य स्वर है भूपेंद्र सिंह का।

राजा दशरथ ने कैकेयी को कई प्रकार से समझाया, अनुनय विनय की कि वो विवेक से सोच समझकर दूसरा वर मांगे, क्योंकि राम के बिना उनका जीवन नहीं रह पाएगा। किंतु राजा के कोमल वचन कैकेयी की क्रोधाग्नि में मात्र आहुति का काम कर रहे हैं। रानी की एक ही टेक है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहां आपकी माया नहीं चलेगी। या तो जो वर मैंने मांगा है वो दे, नहीं तो ना ही करके अपयश के भागी बने। सवेरा होते ही यदि राम मुनिवेश धारण करके वन को नहीं जाते तो हे राजन, निश्चय जानिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। इतना कहकर कैकेयी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे क्रोध की नदी उमड़ी हो। दो वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का हठ उस नदी की तीव्र धारा है, मंथरा की प्रेरणा भंवर है।

क्रोध रूपी वो नदी राजा दशरथ को मूल रूप से ढहाती हुई विपत्ति के समुद्र की ओर ले चली है। राजा ने समझ लिया कि स्त्री के रूप में मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है। उन्होंने कैकेयी के चरण पकड़कर विनती की कि वो सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी न बने, वो उनका मस्तक मांग ले जो वो शीघ्र दे देंगे, राम के विरह में उन्हें न मारें। किंतु राजा की गुहार व्यर्थ हुई। उन्होंने जान लिया कि रोग असाध्य है। अत्यंत आर्तवाणी से हा राम कहकर वो पृथ्वी पर गिर पड़े।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर था भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह का। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है, हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है प्राणायाम। इस विषय पर डॉक्टर शिवजी कुमार से बातचीत कर रहे हैं रूपेश कुमार रूप।
1: श्रोताओं नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शिवजी कुमार को, जो एक योग प्रशिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, और बात का हमारा जो विषय है वो है हमारे स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, जो योग का एक अंग है उसकी कितनी अहमियत है और कौन कौन से मुख्य प्राणायाम ऐसे हैं जो सरसंक्षेप में बता दें और हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं वो कहीं भी हों तो उस प्राणायाम को करके अपने को फिट रख सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
2: जी
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
1: तो सर बताया जाए कि प्राणायाम की क्या अहमियत है हमारे स्वास्थ्य के लिए।
2: देखिए जैसे प्राणायाम जो है ये प्राण सबसे बना है, तो प्राण की बात जब करें तो हमारे शरीर में पांच प्रकार के प्राण काम करते हैं। कंठ से हृदय तक जो कार्य करता है, जो शक्ति काम करती है उसको बोलते हैं प्राण। कंठ से ऊपर जो सिर पर्यंत कार्य करती है, जो मस्तिष्क का संचालन, आंखों का, कानों का संचालन या वाक शक्ति का, ये सब जो संचालन करती है उसका नाम है उदान। और हृदय से लेके नाभि तक जो काम करती है उसका नाम है समान, वो पाचन तंत्र को ठीक रखती है। और नाभि से नीचे जो प्राण काम करता है उसका नाम है

0: अपान, उसका काम है मलमूत्र का निष्कासन करना, और पूरे शरीर में जो घूम घूम करके कार्य करता है उसका नाम है व्यान। वो कहीं पर भी चोट लग जाए देखे तुरंत वहां पर उठ जाता है या लाल हो जाता है, तो वो प्राण शक्ति काम करती है। तो ये प्राण शक्ति जो कार्य करती है, तो प्राण शक्ति को पुष्ट करने के लिए ही हम प्राणायाम करते हैं, क्योंकि प्राण तो हमारा चल रहा है, सांस चल रही है, आ रही है, जा रही है, तो इसमें कुछ हमारा कोई योगदान नहीं है, ये तो ईश्वर प्रदत्त है। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो प्राणों की गति का विच्छेदन कर देते हैं हम, श्वास की गति का। कहते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे अध्याय में कहा है, अपाने जुहोति प्राणम प्राणे अपानं तथा परे प्राण अपान गति रुद्धवा प्राणायाम परायणा। प्राण और अपान की गति को अवरुद्ध करना, जैसे आप देखिए प्राणायाम की मुख्य जो विधि है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि एक पूरक क्रिया होती है श्वास लेना, दूसरी होती है रेचक क्रिया, और तीसरी होती है कुंभक क्रिया। इन्हीं तीन क्रियाओं के अंदर सारे प्राणायाम है, चाहे वो आप भस्त्रिका से शुरू करें, भस्त्रिका कपालभाति, हमारा बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और प्रणव, ये मुख्य प्राणायाम है। ये 8 प्राणायाम के अंदर सारी समस्याओं का समाधान है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा हम कभी बीमार ही ना पड़े, पहला मेरा संकल्प तो यही होना चाहिए कि हम बीमार क्यों पड़े। हम खामा खा जरा सा बरसात हो गई तो भींग गए तो बीमार पड़ गए, थोड़ा गर्मी पड़ गई तो बीमार पड़ गए, थोड़ा ठंड लग गई तो बीमार पड़ गए। तो इन सब से आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपका जो अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आपको बीमारी नहीं होगी।
1: सर आपने बड़े अच्छे और बहुत विस्तार से बताया इतनी छोटे से अवधि में कि प्राणायाम क्यों हमारे लिए जरूरी है। अब सर कुछ ऐसे प्राणायाम, आपने बताया 8 प्रकार के प्राणायाम हैं, उनमें से कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, क्योंकि वक्त निकाल कर तो हम अगर चाहें तो नियमानुसार हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं और सारे प्राणायाम को एक जगह बैठ कर करें, लेकिन जिस तरह से बदलते वक्त की धारा में लोग काफी व्यस्त हो गए हैं, तो उसमें कुछ ऐसे प्राणायाम जो हम कुछ समय में करके अपने कार्यालय में बैठे हों, अपने घर में बैठे हों, कहीं ट्रेन में जा रहे हों, या हम कहीं भी जा रहे हों, तो हम उसको करें और हमको उसका फायदा मिले, वो कुछ प्राणायाम आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: और बहुत सरल विधि है प्राणायाम की, केवल उसको समझना है और उसको अपने जीवन में अपनाना है। आज अब किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि प्राणायाम किसको कहते हैं, तो वो हो सकता है अपना नाक पकड़ के बता दे कि ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वो कितना जानता वो उनमें नहीं जानता। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे जो पहला काम है प्राणायाम में हमारा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम सबसे बढ़िया है। उसकी विधि यही है कि दोनों नाक से श्वास खींचिए और फिर छोड़िए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। अब आइए आप दूसरे जो पेट की समस्या, मुख्य साधन जो हमारा पेट है, क्योंकि सारे तत्व तो वहीं बनते हैं, सारी धातुएं वहीं बनती है, सब धातुएं बनती हैं, अब इनका संतुलन कैसे करें हम। तो पाचन तंत्र यदि ठीक होगा तो रस ठीक बनेगा, रस ठीक बनेगा तो रक्त ठीक बनेगा, रक्त ठीक बनेगा तो मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र तक जो आगे की जो क्रियाएं हैं वो सब सही होंगी। जब सब सही होंगे तो कोई रोग होगा ही नहीं। तो ये चीजें जो है कपालभाति के माध्यम से, लोग कहते हैं कभी कभी कोई प्रश्न आता है कि कोलेस्ट्रॉल के लिए कौन सा प्राणायाम करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कोई कहता है हमारा SGPT बढ़ा हुआ है, सबका उपाय कपालभाति में समाहित है। तो भस्त्रिका कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम यदि समय रहे, अगर ना 3 का समय रहे तो कम से कम कपालभाति और अनुलोम विलोम भी अगर दोनों कर लें।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य शिवजी कुमार जी, आप इतने कम समय में आपने हमारे श्रोताओं को प्राणायाम की समस्त विधि बता दी, ये भी बता दिया कि कम वक्त में हम अपने सेहत को अच्छे से और पूरी तरह से पूरे प्रभावी ढंग से अपने हाथ में रख सकते हैं, नियंत्रित रख सकते हैं। तो आप सर हमारे स्टूडियो में आए, आपने इस विषय पर हमसे बातचीत की, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं प्राणायाम, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे योगाचार्य शिवजी कुमार, और इनसे बातचीत कर रहे थे रुपेश कुमार रूप। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं आपको बता दें आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। सुबह 7:15 पर बज्जी का लोक गीत आप सुनेंगे रागिनी सिंह की आवाज में, और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 7:15।

अक्षय वट। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता योग और अध्यात्म से दूर हो सूनापन। वार्ताकार होंगे वकील सिंह। इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा दोपहर 1:05 पर और दोपहर 1:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। शाम 4:30 पर प्रस्तुत करेंगे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से जीवंत प्रसारण आप सुनेंगे शाम 5:00 से। शाम 5:30 पर प्रस्तुत करेंगे मगही कार्यक्रम मागधी। ग्रामीण भाई बहनों के लिए कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण होगा शाम 6:30 पर और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शाम 7:00। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे बिहार और 10:30 पर आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। तो श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा। पहले आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, फिर सुनेंगे हिंदी समाचार। इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: शिक्षकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारतस्य द्रुतगत्या वर्धमानस्य विश्वसनीय वैश्विक शक्तिरूपेण परिवर्तनस्य प्रेरक शक्तिः राष्ट्रप्रथमस्य सिद्धान्तः एव अस्तीति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तम्। नवदिल्ल्याम् एकेन निज वार्तावाहिन्या आयोजिते सम्मेलने सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् विगत दशके देशस्य उपलब्धयः विश्वासे स्थिरतायां बृहत्तर वैश्विक कल्याणाय प्रतिबद्धतायां च निहिताः सन्ति।
1: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
0: सम्प्रति G7 शिखर सम्मेलने स्वस्य सहभागितायाः उल्लेखं कुर्वन् सः अवदत् यत् राष्ट्रियहितं सर्वोपरि स्थापयितुं भारतस्य अविचल प्रतिबद्धतां वैश्विकनेतारः स्वीकृतः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने

0: पर जोर। ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की और सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत और मोरक्को के बीच आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण तथा बेहतर कार्य प्रणालियों के आदान प्रदान के माध्यम से आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। यह पोर्टल नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि यह पोर्टल नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने और किसानों, सदस्य संस्थानों तथा हितधारकों के हित में बेहतर डिजिटल मंच प्रदान करेगा। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी और 9 अन्य घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमरीकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। श्रोताओं आज है 23 जून और 23 जून इतिहास में दर्ज है आज की तारीख कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए और आज कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी मनाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 23 जून वर्ष 1757 को पलासी के ऐतिहासिक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव मजबूत की थी। वर्ष 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। आधुनिक ओलंपिक आंदोलन के इतिहास में ये दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। साथ ही 23 जून 1961 को अंटार्कटिक संधि प्रभाव में आई थी। इस संधि ने अंटार्कटिका को शांति और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था। श्रोताओं 23 जून 1912 को आधुनिक कंप्यूटर

ज्ञान के जनक माने जाने वाले महान गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग का जन्म हुआ था। आज के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 23 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से स्वास्थ्य, मित्रता और उत्कृष्टता के मूल्यों को बढ़ावा देना है। आज अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विधवा महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और उनके समक्ष आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। श्रोताओं, बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, जानकारियां और भी हैं, लेकिन पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, देखिए, बात कर रहे थे इतिहास की, तो आज 23 जून के दिन 1953 में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हो गया था। 1980 में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की विमान दुर्घटना में आज ही के दिन मृत्यु हो गई थी। तो ये तो थी इतिहास की कुछ बातें, और अब बात करें फिटनेस की और योग की। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि योग आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने काम और जिम्मेदारियों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते, और ऐसे में योग और नियमित व्यायाम अगर हम करें तो ये हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। योग हमारे शरीर को केवल लचीला नहीं बनाता, बल्कि ये मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन भी स्थापित करता है।

सकता है। प्रतिदिन कुछ समय निकालकर योगासन, प्राणायाम और ध्यान करने से आप तनाव कम कर सकते हैं, एकाग्रता बढ़ती है इससे और सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। श्रोताओं, फिटनेस का अर्थ केवल वजन कम करना नहीं है, बल्कि फिटनेस का अर्थ है शरीर का स्वस्थ, सक्रिय और ऊर्जावान होना। नियमित रूप से टहलना, दौड़ना, साइकिल चलाना या किसी भी खेल में भाग लेना, ये हमारे हृदय, फेफड़ों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। तो याद रखिए श्रोताओं, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय योग और फिटनेस के लिए निकालें तो न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, बल्कि हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा और ऊर्जावान बना रहेगा। लीजिए सुनिए एक और प्यारा सा गीत कार्यक्रम में आगे।

श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए बज्जी का लोकगीत। कलाकार हैं रागिनी सिंह।

रागनी सिंह से अभी आप सुन रहे थे बज्जी का लोक गीत। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शास्त्रीय का शहनाई वादन। कलाकार हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। इनसे हम सुनेंगे राग मियां की तोड़ी। पहले प्रस्तुत है विलंबित एक ताल में और फिर द्रुत तीन ताल में। तो लीजिए सुनिए राग मियां की तोड़ी उस्ताद बिस्मिल्ला खान से शहनाई पर।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और साथियों से शहनाई वादन राग मियां की तोड़ी।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अग्निकांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 और आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक ले जा रहे 4 जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। कतर ने रास लाफान एलएनजी विस्फोट में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। नई दिल्ली में कल निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही है। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को साझा किया है। सरकार के 12 वर्ष के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा

0: देने की पहल राष्ट्र निर्माण के लिए नागरिकों की प्रतिबद्धता में सफल हुई है।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही है उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने सस्ते आवास, कर सुधार, स्वास्थ्य देखभाल योजना और बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे का उल्लेख किया। देश की मजबूत अवसंरचना पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत रेलगाड़ियां विस्तारित राजमार्ग और हवाई अड्डों से संपर्क व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
1: 2014 में करीब 28 लाख लोग हर रोज मेट्रो से सफर करते थे, आज करीब 1,28,00,000 लोग हर रोज मेट्रो से सफर कर रहे हैं। अब वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी अच्छी सड़कों, अच्छे हाईवे से समय तो बच ही रहा है, गाड़ियों की मेंटेनेंस पर होने वाला खर्चा भी कम हुआ है। बीते वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या डबल हुई है, इससे कई छोटे छोटे शहरों में भी मिडिल क्लास को हवाई यात्रा की सुविधा पहली बार मिली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
1: भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो चुका है, ये गति आगे और तेज होगी। ये हमारा सपना जितना बड़ा है हमारे प्रयास भी उतने ही विराट होंगे और 140 करोड़ देशवासियों का यही साझा प्रयास विकसित भारत बनाकर रहेगा।
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में कल ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में चीन की विदेश मंत्री वांग यी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक में दोनों देशों के संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में हुई प्रगति सहित आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री डोभाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, भरोसेमंद और सकारात्मक संबंध दोनों देशों के बीच विश्वास और बेहतर समझ को मजबूत करने में सहायता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की तथा सकारात्मक संबंधों की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 अलंकरण दिए जाएंगे।
2: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: हमारी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में पद्म पुरस्कार पाने वाले सम्मानित व्यक्तियों के जीवन, उनके कार्यों और समाज में उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
3: मैं राब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है,
4: मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
5: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मलसी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के उसको

0: मनाने के लिए हमने प्रयास कर रहे हैं।
1: ये विशेष कार्यक्रम आज सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर प्रसारित किया जाएगा। श्रोता इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। लखनऊ अग्निकांड में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने BNS और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत 6 नामजद आरोपियों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। राज्य सरकार ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दे दिए हैं। घटना की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT का गठन किया गया है, जिसके सदस्य 7 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। SIT में अतिरिक्त मुख्य सचिव धर्मार्थ कार्य, पर्यटन और संस्कृति अमृत अभिजात और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन प्रवीण कुमार शामिल हैं। कल दोपहर लगी भीषण आग में कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें ज्यादातर 16 से 25 साल की उम्र के छात्र थे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में NEFED की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। यूरिया, डाई अमोनिया फॉस्फेट और सल्फर लेकर आ रहे 4 भारतीय मालवाहक जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुसार ये जहाज अब देश के विभिन्न बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह और गुजरात का मुंद्रा बंदरगाह शामिल है। दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि कतर के अधिकारियों ने रास लाफान क्षेत्र में रविवार रात हुई दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। दूतावास ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घटना में घायल सभी लोगों को उचित चिकित्सा उपचार मिल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोहा स्थित भारतीय दूतावास कतर के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और भारतीय नागरिकों के परिवारों की सहायता कर रहा है। कतर की सबसे बड़ी गैस रिफाइनरी में हुए विस्फोट में 13 लोग मारे गए और 66 अन्य घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए परामर्श जारी किया है। यह यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कश्मीर से जम्मू जाने वाले वाहनों को सवेरे 11:30 से पहले नवयुग सुरंग पार करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं जम्मू से कश्मीर जाने वाले वाहनों को प्रतिदिन दोपहर 3 के बाद सुरंग में प्रवेश नहीं मिलेगा। परामर्श में घाटी के कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए समय सीमा भी तय की गई है। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे अमेरिकी ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में बेल्जियम के जूलियन कैरागी से खेलेंगे। किदांबी श्रीकांत अपने पहले दौर के मुकाबले में चीनी ताइपे के लियाओ झुओ फू का सामना करेंगे। वहीं महिला सिंगल्स में भारत की 7 खिलाड़ी मुख्य ड्रॉ में शामिल हैं। 17 वर्षीय तन्वी शर्मा जर्मनी की यवोन ली के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेंगी। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज का सामना करेंगी। वहीं हॉकी में FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना पाकिस्तान से होना है। उधर फीफा विश्व कप में फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया है। वहीं न्यूयॉर्क में नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 से हराया। इस बीच आज सवेरे 8:30 से जॉर्डन और अल्जीरिया के बीच मैच खेला जाएगा। इससे पहले अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराया। दोनों गोल अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने किए। इसके साथ ही मेसी 18 गोल के साथ जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोस का 16 गोल का रिकॉर्ड तोड़कर विश्व कप के इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
1: मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक असम, मेघालय, पश्चिम

0: बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, तटवर्ती कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बृहस्पतिवार तक तेज हवाएं चलने और गरज के साथ वर्षा का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद मुकेश। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, अमेरिका ईरान के बीच बात बनी, 60 दिन में होगा अंतिम समझौता। ईरान के तेल से पाबंदी हटी, स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिसॉर्ट में घंटों चली वार्ता। बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जेडी वेंस ने बैठक को ऐतिहासिक बताया। पंजाब केसरी ने तनाव के बीच उम्मीद शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जेडी वेंस अमेरिका के भावी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जा रहा है। अगर शांति समझौता विफल रहता है तो ट्रंप इसका पूरा दोष वेंस पर डाल देंगे। ये शांति समझौता वेंस के राजनीतिक करियर के लिए दोधारी तलवार बन चुका है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस्तीफे का ऐलान किया। बर्नहम ने पीएम पद की दावेदारी पेश की। स्टार्मर बीते 10 साल में ब्रिटेन के पीएम पद से इस्तीफा देने वाले छठे व्यक्ति। जनसत्ता की सुर्खी है, लखनऊ के अलीगंज में इमारत में लगी आग, 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने हालात का जायजा लिया, जांच के लिए SIT गठित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए पीड़ितों की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दैनिक जागरण ने लापरवाही की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, बहुत दिन नहीं हुए जब देश की राजधानी में अवैध होटल में आग से 20 से अधिक लोग मारे गए थे। माना यह गया था कि इस घटना से सीख ली गई होगी, लेकिन लखनऊ की आग से पता चलता है कि ऐसा नहीं किया गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ अधिकरण कांड में 4 अधिकारियों को निलंबित किया, 4 आरोपी गिरफ्तार। उर्वरक लेकर आ रहे 4 जहाज हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की ओर बढ़े। और कैलिफोर्निया में आज से शुरू हो रहे US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज प्रिंसिपल ऑफ नेशन फर्स्ट has been driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. President Draupadi Murmu to confer Padma Awards during second round of civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan today. Uttar Pradesh government suspends 4 officials in connection with Lucknow fire incident. 4 accused arrested. 4 ships carrying fertilizers heading towards Indian ports after crossing Strait of Hormuz. Qatari authorities confirmed death of 12 Indian nationals in Ras Laffan LNG explosion. And Lakshya Sen and Tanvi Sharma to lead India's challenge at US Open Super Badminton Tournament beginning today in California. Prime Minister Narendra Modi has said the principle of nation first has been the driving force behind India's transformation into a fast-growing, credible and reliable global power. Addressing a summit organized by a private media house in New Delhi, the Prime Minister said the country's achievements of the past decade were rooted in trust, stability and a commitment to the larger global good.
3: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है, मैं अभी दो तीन दिन पहले

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाक़े के सिलसिले में चार ओहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज अब नए हुर्मुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुक्काम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। नई दिल्ली में एक प्राइवेट मीडिया हाउस के ज़ेरे एहतमाम एक समिट से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता दहाई के दौरान मुल्क की कामयाबियां भरोसे, इस्तेकाम और आलमी सतह पर वसीतर बहबूद के तई अहद की बदौलत हासिल हुई हैं।
1: भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है और भारत राइजिंग पावर के साथ साथ सुपर पावर तक ले गए हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि भारत रिलायबल पावर है। मैं अभी 2-3 दिन पहले जी समिट से लौटा हूं और दुनिया का हर नेता, हर देश इस बात को भली भांति समझता है कि आज के भारत के लिए नेशन फर्स्ट ही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा सिद्धांत है।
0: G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में हालिया शिरकत का तस्किरा करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आलमी रहनुमाओं ने मुल्क के मफादात को मुकद्दम रखने के तई भारत की पुख्ता अज़्म को तस्लीम किया है और ये एक ऐसा फलसफा है जिसका मुल्क की पॉलिसियां और तरक्याती एजेंडा तय करने में अहम रोल

0: रहा है। सरकार की गुज़श्ता 12 साल को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी के फरोख और मकामी अशिया के लिए हिमायत जैसे इकदामात इसलिए कामयाब हो सके कि लोगों ने मुल्क की तामीर के जज्बे को अपनाया।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में अगर आप तराजू से तोलोगे, हर निर्णय, हर कदम, हर प्रयास, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया। देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूँ।
0: जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में तकरीबन 25 करोड़ अफराद गुर्बत से बाहर आए हैं, जिससे एक नया बड़ा मुतवस्सित तबका उभरा है और इक्तिसादी सरगर्मियों को तकवीत मिली है।
1: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, नियो मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इतना फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाजात तकसीम करने की तकरीब के दौरान पद्म अवार्ड्स 2026 अदा करेंगी। पद्म अवार्ड्स 3 जुमरों, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में अदा किए जाते हैं और मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में शामिल हैं। आज मुनक्किद होने वाली इस तकरीब में सदर जमहूरियत 65 पद्म अवार्ड्स अदा करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स हासिल करने वालों में 19 खवातीन शामिल हैं और 16 अफराद को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिए जाएंगे। टेनिस के सरकर्दा साबिक खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती, फिल्म गुलूकारा अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा उन 56 शख्सियात में शामिल हैं जिन्हें सदर जमहूरिया आज पद्म अवार्ड से नवाजेंगी। इन अवार्ड की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर साल योम जमहूरिया के मौके पर इनका ऐलान किया जाता है। मजकूरा अवार्ड गैर मामूली काम के एतराफ में तफवीज किए जाते हैं और आर्ट, समाजी काम, अवामी उमूर, साइंस, इंजीनियरिंग, तिजारत व सनत, अदविया, अदबो तालीम, खेल, सिविल सर्विस जैसे मुतअद्दी शोबों में ये अवार्ड अदा किए जाते हैं। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: आकाशवाणी का खबरों का शोभा आकाशवाणी पर पीपल्स पद्मा की सीरीज के तहत खसूसी प्रोग्राम नश्र कर रहा है। इस सीरीज के तहत पद्म अवार्ड याफ्ता शख्सियात की जिंदगी और खिदमात पर मबनी एक बसीरत अफरोज प्रोग्राम पेश किया जाता है।
3: नैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है, तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
4: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ वो एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मलसी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था, उसी गुलदस्ते को फिर से उजागर करने के, उसको बनाने के लिए हमने प्रयास करा।
0: ये प्रोग्राम आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 पर सुबह 9:10 से सुना जा सकेगा। इसके अलावा आकाशवाणी के ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी दस्तियाब रहेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ में पेश आए आग लगने के हादसे के तनाजुर में रियासती हुकूमत के 4 ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया है। मस्कुरा हादसे में 15 तलबा हलाक हुए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 6 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है और इनमें से 4 अफराद को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
5: रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी आग बुझाने वाले महकमे और बिजली महकमे के चार अहलकारों

0: मुअत्तिल कर दिया गया है। अलीगंज पुलिस ने 6 नामजदों मुलजिमों और दीगर कसूरवार अफराद के खिलाफ BNS और उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एक्ट के मुतालिका दफात के तहत FIR दर्ज की है। आग लगने के इस वाक़े की आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है और खसूसी जांच टीम बनाई गई है जो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कल सपहर आग लगने के इस सानहा में कम अज कम 15 अफराद की मौत हो गई थी जिनमें बेशतर 16 से लेकर 25 साल की उम्र के तलबा थे। 9 तलबा जख्मी हुए जिन्हें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में दाखिल किया गया है। बेशतर अमवात दम घुटने की वजह से हुई। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नष्ट किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में भारत की कौमी जरई इमदाद बाहमी मार्केटिंग फेडरेशन नेफेड के नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। नीलामी के अमल में शफाफियत को मुस्तहकम बनाने और कामकाज को सहल बनाने की समत ये एक अहम कदम है। उम्मीद है कि मजकूरा पोर्टल से नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत करने और किसानों मेंबर इदारों और मुतालिका फरीकों के मफाद में नेफेड के मजमूई कामकाज को वसत देने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम हो सकेगा। बाद में जनाब अमित शाह नेफेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के साथ एक मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में नेफेड अपनी सरगर्मियों और पेशरफ्त के बारे में एक प्रेजेंटेशन पेश करेगी। नेफेड का मुस्तकबिल का खाका भी पेश किया जाएगा। केमिकल्स और कीमियावी खाद महकमे की वजारत ने कहा है कि यूरिया डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP और सल्फर की खेप लाने वाले 4 मालबरदार बहरी जहाजों ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाई हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया और अब ये मुल्क में अपनी अपनी मुकर्ररा बंदरगाहों की तरफ जा रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और काकीनाडा बंदरगाह, ओडिशा में पारादीप बंदरगाह और गुजरात में मुंद्रा बंदरगाह शामिल हैं। वजारत ने कहा है कि कीमियावी खाद की इस दरामद से मौजूदा जरई जरूरियात की तकमील को मजीद तकवियत मिलेगी। वजारत ने ये जानकारी दी है कि मुल्क में कीमियावी खाद का मजमूई स्टॉक 196 लाख टन है जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 168 लाख टन था। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ कल नई दिल्ली में बातचीत की जिसमें बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने में पेशरफ्त समेत दोतरफा रवाबित के अहम पहलुओं पर तवज्जो मरकूज की गई। ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मुशीरों के मीटिंग के मौके पर ये बातचीत हुई। जनाब डोभाल ने मीटिंग में इस बात पर जोर दिया कि मुस्तहकम और तामीरी दोतरफा ताल्लुकात से तरफैन के दरमियान बाहमी एतमाद और बेहतर मुफाहिमत कायम करने में मदद मिलेगी। दोहा में भारतीय सिफारतखाने ने यह ऐलान किया है कि कतर के हुकाम ने इस बात की तस्दीक की है कि इतवार की रात को रास लफान में हुए हादसे में 12 भारतीय शहरी हलाक हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सिफारतखाने ने सोगवार खानदानों से ताजियत का इजहार किया और महलुकीन के लिए दुआ की। पोस्ट में मजीद बताया गया है कि कतरी हुक्काम ने तस्दीक की है कि हादसे में जख्मी होने वालों की हालत मुस्तहकम है और वो जेरे इलाज हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस हादसे में होने वाले जानों के जिया पर दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि दोहा में वाकई भारतीय सिफारत खाना इस हादसे से मुतासिर होने वाले भारतीय शहरियों के खानदान की मदद के लिए कतरी हुकाम के साथ करीबी इश्तराक से काम कर रहा है और उनके राबते में है। कतर के सबसे बड़े गैस के मरकज में हुए धमाके के बाद कम अज कम 13 अफराद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। दाखिली उमूर की वजारत ने बताया कि दोहा में रास लफान जोन में वाकई शहर के अहम रकीक कुदरती गैस LNG की प्रोसेसिंग के मकाम पर ये तकनीकी हादसा पेश आया। कतर के तवानाई के वजीर ने कहा कि इस धमाके से मुल्क की बरामदात मुतासिर नहीं होंगी। US ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। इसमें सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। मर्दों की सिंगल जुमरे के पहले राउंड में आलमी नंबर 14 लक्ष्य सेन का मुकाबला बेल्जियम के जूलियन काराजी से होगा जबकि किदाम्बी श्रीकांत चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू का सामना करेंगे। मिक्स डबल्स में ध्रुव रावत और मीनाक्षी की जोड़ी इंडोनेशिया के वीरावन एहसान आदम और सेरेना कानी के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। मर्दों के एफआईएच

0: हॉकी प्रो लीग के इफ्तिताही मैच में आज भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। चीन के होलम्बियर में मुनक़िदा एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये पहला मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के सभी अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत एक काबिल भरोसा मईशत के तौर पर दुनिया में तेजी से उभर रहा है। पिछले 12 बरसों में शुरू की गई फलाही स्कीमों से आवाम को फायदा पहुंचा है। वजीर खारजा और डॉक्टर अजय शंकर ने मंगोलिया के अपने हम मनसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तालीम सकाफत और कई तरक्याती प्रोजेक्टों समेत अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। अजीत डोभाल की सदारत में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती मशीरों की दो रोजा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। कौमी सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल और सिक्योरिटी खतरात के तनाजुर में नई टेक्नोलॉजी के रोल पर हुई बातचीत, ये खबर भी आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी के साथ तरक्की करती हुई मोतबर और भरोसेमंद आलमी ताकत बनने में मुल्क मुकद्दम के उसूल का अहम रोल रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में सिविल एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में आग लगने के वाक़े के सिलसिले में चार अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया है। चार मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। कीमियावी खाद लाने वाले चार बहरी जहाज आबनाए हुरमुज को पार करने के बाद भारतीय बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे हैं। कतर के हुकाम ने रास लफान एलएनजी धमाके में 12 भारतीय शहरियों की मौत होने की तस्दीक की है। और यूएस ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रहा है। लक्ष्य सेन और तन्वी शर्मा भारतीय चैलेंज की कयादत करेंगे। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
4: बिहार के सभी अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के भाइयों व बहनों ध्यान दें, जहां हो आपके हक की बात सहायता कॉल सेंटर दे आपका साथ हर बार। अगर आपको चाहिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी या अपनी शिकायतों का समाधान, तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-345-6345।
5: सभी दिवस पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सहायता आपके हक और तरक्की का साथी।
4: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक होंगे थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्वसनीय विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक रहा है। कल नई दिल्ली में एक निजी मीडिया हाउस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीयता, स्थिरता और वैश्विक हित के लिए प्रतिबद्धता पिछले दशक में भारत की उपलब्धियों के मूल में रही हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व नेताओं ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने की भारत की अटल प्रतिबद्धता को समझा है। सरकार के 12 वर्षों के कार्यों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, खादी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने जैसी पहल राष्ट्र निर्माण के प्रति नागरिकों की प्रतिबद्धता से सफल हुई हैं।
1: पिछले 12 वर्षों के जो भी सिद्धियां देश की रही हैं, उनके मूल में राष्ट्र प्रथम की भावना ही केंद्र में है। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर मेक इन इंडिया, खादी खरीदने पर जोर, स्थानीय वस्तुएं खरीदने पर जोर, ये सारे इनिशिएटिव इसलिए सफल हुए क्योंकि देश की जनता ने देश को सबसे ऊपर रखते हुए अपना कर्तव्य निभाया।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से उभरे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में अभूतपूर्व अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ भारतवासियों के सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
1: 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न्यू मिडिल क्लास में आए हैं, तो इसका फायदा केवल उन परिवारों तक नहीं रहता बल्कि मिडिल क्लास का भी इसमें फायदा होता है, क्योंकि ये नया कंज्यूमर है जो इकोनॉमी को ड्राइव करता है, उसे अल्टीमेटली मिडिल क्लास के लिए अवसर बनते हैं। यानी गरीबी कम होना केवल वेलफेयर का ही विषय नहीं है, यह अवसरों के विस्तार की गाथा है, नई एस्पिरेशन की प्रेरणा है।
0: राज्य सरकार भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लघु जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को भूजल के संरक्षण और विनियमन के लिए बिहार भूजल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2026 लाने की दिशा में तेजी से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए जिसमें वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण और जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिले। उन्होंने भू जल स्तर में सुधार के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी उपायों को अपनाने पर जोर दिया। इस बैठक में विभागीय मंत्री संतोष कुमार सुमन समेत कई अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक को ही थानाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार वर्तमान में चिन्हित 208 थानों के अलावा 217 थानों को सामान्य श्रेणी के थानों में उत्क्रमित किया गया है। इन थानों में पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों को भी थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित किया जाएगा। साथ ही आपातकालीन या अल्पकालिक अवकाश की स्थिति में पुलिस निरीक्षक रैंक से नीचे के किसी भी पदाधिकारी को इन थानों में

0: प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वैशाली जिले के हाजीपुर में औद्योगिक क्षेत्र गोरौल फेज एक में अत्याधुनिक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की परियोजना समाशोधन समिति की बैठक में इस संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है। यह बैठक उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 एकड़ में स्थापित होने वाली इस इकाई के लिए 17,25,00,000 रुपए तक का निवेश किया जाएगा। इस परियोजना से 200 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। शिक्षा विभाग वित्तीय अनियमितता और लापरवाही के मामले में 6 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 8 मई से प्रभारी हो गया है। आदेश में कुछ अधिकारियों की वेतन पेंशन से कटौती और वेतन वृद्धि पर रोक की अनुशंसा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूति, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गौरतलब है कि पिछले महीने आयोजित पुरस्कार के पहले चरण के तहत बिहार की 3 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनमें प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और डोमकच लोक नृत्य परंपरा के पुरोधा विश्वबंधु को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनके परिजनों ने राष्ट्रपति से यह सम्मान प्राप्त किया। वहीं भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला और लोक गायन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी @90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग के अनुसार मानसून की रेखा फिलहाल गया और मुजफ्फरपुर से गुजर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भाग के जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका के कुछ स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात की आशंका है।
1: 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। अररिया, कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इस बीच दक्षिण बिहार के कई स्थानों पर बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इधर नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही लगातार

बारिश के कारण कोसी नदी के जलस्तर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया कि इस वर्ष पहली बार नदी का जलस्तर 1 लाख क्यूसेक के आंकड़े को पार कर गया है। कोसी बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए बराज से 1,955 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। इधर मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। राज्य सरकार ने मानसून अवधि में 4 महीने के प्रतिबंध के दौरान अन्य राज्यों में बालू की बिक्री और परिवहन की अनुमति दे दी है। खान और भूतत्व विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार बालू स्टॉक के लाइसेंसधारी 26 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य के बाहर बालू भेज सकते हैं। इसके लिए ई चालान निर्गत किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज और कल 13 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन करेगा। ये ट्रेन पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र और दानापुर समेत अन्य रेलवे स्टेशनों से परिचालित होगी। रेलवे की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज 6 और कल 7 विशेष ट्रेनें चलेंगी। इधर आगामी 27 जून से दानापुर और पुणे के बीच अमृत भारत ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यह साप्ताहिक ट्रेन पुणे से प्रत्येक शनिवार और दानापुर से प्रत्येक सोमवार को चलेगी। वहीं धनबाद मंडल में छीपादोहर, बरवाडी, मंगरा रेलवे स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन चालू करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के मद्देनजर 14 ट्रेनों का परिचालन रद्द किया गया है। साथ ही 16 ट्रेनें परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। लखीसराय जिले में आयोजित नीट पुनर्परीक्षा के दौरान फर्जी परीक्षार्थियों के माध्यम से परीक्षा दिलाने वाले संगठित गिरोह के 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अनुमंडल पदाधिकारी प्रभाकर कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त जांच में यह कार्रवाई की गई है। श्री कुमार ने बताया कि जिले के 3 परीक्षा केंद्रों से 9 फर्जी परीक्षार्थी, सहयोगी और बायोमेट्रिक कर्मियों समेत कुल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में किउल तथा कवैया थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शिवहर जिले की एक अदालत ने पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में एक दोषी को 20 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये का अर्थदंड दिया है। मधुबनी जिले में कलवाही थाना पुलिस ने मांगा टोल बेलाही में छापेमारी कर 100 लीटर देशी शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित महिला अंडर 19 एक दिवसीय लीग मुकाबले में टीम बी ने टीम ए को 5 विकेट से हरा दिया। भागलपुर के सैंडिश कंपाउंड में खेले गए मुकाबले में टीम ए के लिए कप्तान और विकेटकीपर अक्षरा गुप्ता ने 68 गेंदों में 164 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि उनकी यह पारी टीम को जीत नहीं दिला सकी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर नीट पुनर्परीक्षा से जुड़ी है। अखबार लिखता है मेडिकल छात्र ने बनाया स्कॉलर गैंग, 30 गिरफ्तार। दैनिक जागरण की सुर्खी है किसानों को राहत, मुख्यमंत्री ने खातों में भेजी 260 करोड़ की राशि। दैनिक भास्कर ने लिखा है पीएमसीएच में अब सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे एक छत के नीचे। प्रभात खबर की विशेष खबर है म्यूचुअल फंड निवेश में बिहार टॉप 10 राज्यों में शामिल, औसत एसेट अंडर मैनेजमेंट में 80,731 करोड़ रुपए पहुंचा। आज अखबार का शीर्षक है भरत तिवारी मुठभेड़, 5 पुलिसकर्मी निलंबित। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं लखनऊ की कोचिंग में लगी आग, 15 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के तेजी से विकसित भरोसेमंद अर्थव्यवस्था और विश्व शक्ति बनने में राष्ट्र प्रथम का सिद्धांत प्रेरक बल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा प्रदेश में भूजल के अनियंत्रित दोहन को रोकने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। प्रदेश के 425 थानों में पुलिस निरीक्षक होंगे थानाध्यक्ष पद पर नियुक्त। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 48 घंटों के दौरान मानसून के राज्य के शेष भागों में आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।
आकाशवाणी पटना से अगला समाचार।

0: बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: first prize.
1: ये ना बहुत रोमांचित है।
0: Head of the trade negotiations, Tara stated,
2: दिवस के साथ साथ
0: it has undergone nine revisions.

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है, पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

जब शेर ने सुनी इब्ने मजाहिर की ये तकरीर, बचपन का ख्याल आया तो रोने लगे शब्बीर। फरमाया कि मजबूर हो जो ख्वाहिश तकदीर, दिखलाता है ए बाप की फुरकत।

है पर आशिक सादिक नहीं मिलता। फरमा के ये छाती से लगाया कई बारी रुखसत।

है, चलता नहीं मर कर इसी मैदान में गड़ूंगा, तलवार ना होएगी तो हाथों से लड़ूंगा। फिर ना थके बस पड़ने लगी तीरों की बौछार, देखा जो उधर पुश्तू पे नैजे का लगा वार।

था कि शब्बीर के सदके छाती बिछीनी तीरों से और फर्क दो पारा, रग रग जो कटी फिर न रहा जब्त का यारा। शीराज अज आए बदन खुल गए सारा, गिरते हुए घोड़े से ये आका को पुकारा। या आपका आना मेरी बख्शिश की सनद है, ऐ शेरे लाही के पिसर वक्त मदद है। नागा हसफे चीड़ के आए शहजीशा, देखा कि वो मजलूम है कोई दम का है मेहमा। लाशे से लिपट कर ये पुकारे बसत अफगा, ऐ दोस्त मेरे तेरी मोहब्बत के मैं कुर्बा। दिखला दो मुझे जख्म कहाँ खाए हैं भाई, छाती से लिपट जाओ के हम आए हैं भाई। छाती से लिपट जाओ के हम आए हैं भाई। आका की सदा सुन के उसे होश जो आया, गर्दन के तले जानू शब्बीर को पाया। आंखों से कफे पाए मुबारक को लगाया, अकबर की तरफ जोड़ के हाथों को सुनाया। कुछ अपने नमक खार पे ऐसा नहीं करते, हजरत पे उठा के मुझे कुर्बान नहीं करते। ये कहते थे कि बस गुलशन दुनिया से सिधारे, निकली रही होठों पे जबां प्यास के मारे, बाजू को हिला।

होते थे अभी मर गए भाई। हाय हाय मेरे आशिक मेरे शहदा मेरे यावर, हाय हाय मेरे सलमान मेरे मुग़दाद बबूज़र, हाय हाय मेरे रुस्तम मेरे ज़ैग़म मेरे सफ़दर, हाय हाय मेरे अम्मार मेरे मालिक अश्तर, ताज़ीस्त तेरे हिजर में फरियाद।

मैं तुझे याद करूंगा, फिर लाश दरे खेमे पिलाए शहे आलम, सर पीट के फरमाया के

0: कस का बिछा कर सफे मातम, यारों ने को उसके जनो फरजंद नहीं है, मजलूम मुसाफिर के अगर हैं तो हम ही हैं। यारों ने को उसके जनो फरजंद नहीं है, मजलूम मुसाफिर के अगर हैं तो हम ही हैं। जब शैन सुनी हजरत इब्ने तकरीर, जब शैन सुनी इब्ने मजाहिर की ये तकरीर।
1: सामिन, अगली पेशकश में आप सुनेंगे नौहा। पेश कर रही हैं मोहतरमा मुमताजी बानो।

0: Hussein, Hussein.
1: मोहतरम सामीन, आप सुन रहे थे नौहा। नौहा पेश कर रही थी मोहतरमा मुमताज़ी बानो। अब पेश खिदमत है एक मुज़ाकरा गुफ्तगू। मौजू है वाक़िया करबला की तारीख़ी नौयत। मोहम्मद सनाउल हुदा से मोहम्मद आलम की गुफ्तगू पर ये मबनी है। मुलाहिज़ा हो। सामईन आदाब, वाक़िया करबला की तारीख़ी नौयत पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मदऊ हैं मशहूर इस्लामी स्कॉलर जनाब मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी और उनसे मुखातिब हैं खाकसार मोहम्मद आलम कासमी। जनाब मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी, आपका स्टूडियो में खैर मकदम है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वाक़िया करबला एक नहायत ही मशहूर व मारूफ वाक़िया है। दुनिया में न जाने कितने वाक़यात पेश आए, मगर योम आशूरा को जो 680 हिजरी में इराक के करबला के मैदान में नवासे रसूल इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का जो वाक़या पेश आया, ये तारीख इंसानी का नहायत ही अनोखा वाक़या है। सदियां बीत गईं मगर वो आज भी ताज़ा है। वाक़या करबला की जो अहमियत है और तारीख़ी एतबार से इसकी जो नौयत है, हम चाहेंगे कि आप इस अहम वाक़े पर रोशनी डाल दें।
2: शुक्रिया मौलाना मोहम्मद आलम कासमी साहब। वाक़े करबला बहुत दर्दनाक, अलमनाक और गमनाक वाक़या है। अगर तारीख की कड़ियों को जोड़ना न होता और उसके जो असरात पूरी दुनिया पे पड़े उससे लोगों को बाखबर करना न होता तो इस दर्दनाक वाक़े का ज़िक्र करना कोई बहुत पुरलुत्फ़ मामला नहीं है। बल्कि जब भी करबला का ज़िक्र आता है, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र आता है, तो कल्ब

0: गमगीन होता है
1: बेशक
0: और दिलों में एक आंधी सी चलती है कि आखिर क्या हालात थे 30 साल से जायद के मुद्दत में इस तरह का वाकया पेश आ गया। वाकया करबला बहुत सीधा सीधा वाकया नहीं है। हमें हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को समझना चाहिए। उनकी शख्सियत की तामीर व तश्कील के जो अनासिर थे उनको समझना चाहिए। और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह कदम क्यों उठाया इसको भी समझना चाहिए। तमाम लोग इस बात को जानते हैं कि हजरत अली करम अल्लाह वजहू हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में जंगें हुईं जिसकी वजह से तौसीए इस्लाम और तौसी का जो काम मुल्की सतह पर सल्तनत की सतह पर होना चाहिए था वो रुक सा गया था। तो हजरत अली करम अल्लाह वजहू के बाद हजरत हसन को लोगों ने खलीफा बनाया आप जानते हैं। और हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने 6 महीने में हजरत माविया से सुलह कर लिया। हजरत हसन को लोगों ने बहुत बुरा भला कहा, आप बुज़दिल हैं, आप माविया से लड़ने को तैयार नहीं हुए, आपने सुलह कर लिया। लेकिन हजरत हसन ने ये बात कही कि मैं बहुत सारे शुहदा का खून क़यामत के दिन अपनी गर्दन पर लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने सुलह कर ली ताकि इस्लाम की तौसी व इशाअत का काम, तरवीज व इशाअत का काम और मुल्क के हदूद की वसअत का काम जो हो रहा था वो जारी रहे। हजरत हसन के बाद हजरत माविया का जब इंतकाल हो गया तो इंतकाल के पहले ही बाज़ अपने मुकर्रबीन के मशवरे से उन्होंने यजीद को इस अम्र पर मामूर किया कि वो वली होंगे और अमीर की हैसियत से काम को संभालेंगे। यजीद हजरत माविया का लड़का था और बहुत सारी चीज़ों में लोगों ने जो बातें कही हैं उससे लगता है कि वो उस डगर से थोड़ा हट सा गया था जो डगर सुन्नत नबवी से उम्मत को मिला था।
1: उस मनसब के बिल्कुल लायक नहीं थे।
0: ये मामला था जिसकी वजह से ये बहुत सारे सहाबे किराम जिसमें हज़रत अब्दुल्ला उमर जैसे लोग थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर जैसे लोग थे, ये सारे लोग यजीद की इमारत पे मुत्तफिक नहीं थे और बैत से इन लोगों ने इनकार कर दिया था। तो बैत से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने भी इनकार कर दिया था, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी इनकार कर दिया था और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला सब ने इनकार कर दिया था। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के वाक़े को इतना नहीं बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया जितना हजरत हुसैन के इमारत के बैत से इनकार को पेश किया गया। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि सब जानते थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के असरात उतने नहीं हैं जितने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हैं
1: बेशक
0: और नवासे रसूल होने की हैसियत से हैं, आले बैत में होने की वजह से हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह महबूब रखते थे आपको उसकी वजह से हैं। तो सब ये महसूस करते थे कि हजरत हुसैन का जो है बैत से इनकार करना इसके असरात बहुत दूरस होंगे और इसकी वजह से एक दबाव हजरत हुसैन पर बनाने की कोशिश की गई। हजरत हसन ने सुलह कर लिया था, उस वक्त का ये अहम वाकया था और उस वक्त के हालात के एतबार से यही मुनासिब था। इसीलिए हजरत हसन के सुलह करने पर हजरत हुसैन की तरफ से तारीख में कोई ऐसा रद्द अमल नहीं जिक्र किया जाता है, इसलिए कि वो जानते थे कि हजरत माविया सहाबी भी हैं और कातिब वही भी हैं। तो हजरत हसन का सुलह कर लेना उन तमाम लोगों को
1: उस वक्त
0: बर्दाश्त
1: के
0: हो गया,
1: तकाजे के मुताबिक था।
0: उस वक्त के तकाजे के मुताबिक था। लेकिन जब हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का दौर आया तो इस वक्त का तकाजा कुछ और था। अगर आपने बैत कर लिया होता और आपने यजीद के हाथ में हाथ दे दिया होता तो फिर हक बात कहने की जुरत जो इस्लाम ने मुसलमानों को दी है और बताया है कि खौफ और ईमान दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकते, हजरत हुसैन ने ईमानी तकाजों को सामने रखा और उस वक्त के हालात को सामने रख करके इनकार कर दिया बैत से और उसके बाद एक पूरा

0: तवील सिलसिला चला। कूफा वालों का ख़त आया और फिर हज़रत मुस्लिम इबन अकील को भेजा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हों ने उनके हाथ पे बहुत सारे लोगों ने बैत कर लिया। हज़रत मुस्लिम इबन अकील ने जब पैगाम भेज दिया कि अब ये मामला जो है ठीक ठाक है, आप तशरीफ़ लाएँ, तो हज़रत हुसैन ने आने का कस्द कर लिया और चल पड़े। और उसके बाद हज़रत मुस्लिम इबन अकील से जिन लोगों ने बैत की थी उन्होंने बैत तोड़ दी और वो सब अलग होते चले गए। यहाँ ये बात जहन में रखना चाहिए कि हज़रत मुस्लिम इबन अकील के साथ कूफा के जो लोग शरीक हुए थे ये वो लोग थे जिनकी इस्लामी तरबियत पूरे तौर पर नहीं हुई थी। ये इलाके के बद्दू थे जो नौ मुस्लिम थे और उन्होंने हज़रत मुस्लिम के साथ लग करके एक तादाद पैदा कर दी थी।
1: तरबियत
0: और
1: याफ्ता नहीं थे,
0: तरबियत याफ्ता लोग नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने यह किया कि हज़रत मुस्लिम का साथ छोड़ दिया और फिर हज़रत मुस्लिम इबन अकील को बहुत अजीब व गरीब अंदाज में शहीद कर डाला।
1: हालात का मुकाबला भी नहीं
0: लेकिन
1: किया।
0: हज़रत हुसैन निकल चुके थे और निकलने के बाद जब उनके लोगों ने मशवरा दिया कि आपको नहीं जाना चाहिए, हालात अच्छे नहीं हैं और रहने के लिए सबसे अच्छी जगह इसद मदीना मुनव्वरा है, लेकिन जब वो निकल चुके थे तो उनको अपने नाना की ये बात भी याद थी कि जब नबी असलाह ले लेता है, चल देता है, निकल पड़ता है तो वो लौटता नहीं है। तो हज़रत हुसैन ने कहा कि अब जो होना होगा होगा, मैं लौट के अब नहीं जाऊंगा, और वो कूफा की तरफ चले गए। और फिर वो दर्दनाक वाकया पेश आया, पानी बंद कर दिया गया, 3 दिन से ज़्यादा पानी बंद रहा और फिर बारी बारी 72-73 की तादाद में खानवादे के लोग जो है शहीद कर दिए गए और आखिर में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को भी जामे शहादत नोश करा दिया। तो ये तारीख का बहुत
1: आपने
0: बड़ा
1: जो है इस वाकया पे बहुत ही मुख्तसर लफ्ज़ों में हम मोड़ की जानिब इशारा किया है, लेकिन ये तारीखी वाकया है और इसकी ज़्यादा नौयत मजहबी है। आप इसे आम तारीखी हवाले से किस तरह से जानते हैं?
0: देखिए, ये वाकया जिस दौर में हुआ उसमें मजहब और तारीख का मामला अलग अलग नहीं था। जब हम मजहब के मामले में बढ़े वही तारीख का हिस्सा है। ज़माना जो गुज़र गया और जो वाक़यात पेश आते हैं वही तारीख बनती है। तो हम इस पूरे वाक़े को मजहबी और तारीखी हैसियत से
1: अलग
0: अलग अलग नहीं कर सकते। हमें मालूम है कि राशिदुल खैरी ने बहुत तफसील से ये बात लिखी है कि असलन ये लड़ाई हाशिम के वक्त से थी, जो जुड़वा
1: ज़माने
0: बच्चे
1: जाहिलियत से इसकी
0: जुड़वा बच्चे पैदा हुए उनके दरमियान तलवार से अलग किया गया और वो उसके असरात रहे। तो असल में वाक़े करबला पर चाहे वो मजहबी हैसियत से हो, यानी मोतज़ला और ख़वारिज का मामला हो, सबाइयों का मामला हो, या तारीख दानों ने जो कुछ लिखा है उसमें इतना रतब व याबिस भर गया है कि बहुत मुश्किल है कि तमीज़ किया जाए। कई मौरख ने यह लिखा कि ये असलन बनु अब्बास या बनु उमैया की या बनु हाशिम की लड़ाई थी और उस लड़ाई का असर जब तक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे वो दबा हुआ रहा और ज़माने जाहिलियत की असबियत जो है उस पर गालिब नहीं हो सकी। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब उनके चारों खुलफा दुनिया से चले गए तो अब वो जो पहले की तासुब वाली चीज़ें थी
1: जी दबी हुई थी
0: बनु
1: जो
0: अब्बास की, बनु उमैया की, बनु हाशिम की, तो वो सारे मैदान में आ गए और मुख्तलिफ अवामिल के तहत जो है ये काम हुआ। चुनांचे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हों की शहादत के बाद जो हुकूमत का सिलसिला चला कुछ दिनों तक बनु उमैया में चला और उसके बाद फिर बनु अब्बास में चला गया। तो ये पसम तारीख को सामने रख करके लोग ये भी कहते हैं कि ये तारीख के एतबार से भी तारीखी अवामिल भी थे इसके, तो उस पस मंजर में लोग कहते हैं। लेकिन मैं ये समझता
1: इमाम
0: हूँ
1: हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत हुई और अभी आपने जिस जानिब इशारा किया है बिलाशुबा इसका ताल्लुक मुसलमानों से है, तो क्या इस वाकया ने आम इंसानियत को भी मुतासिर किया और आम इंसानी माहौल में भी इसके कुछ असरात पड़े?
0: बहुत पड़े। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद इस वाक़े का असर बहुत पड़ा, उस वक्त भी पड़ा और आज भी उसके असरात देखे जाते हैं। असर ये पड़ा कि वो लोग जो हज़रत हुसैन के ख़िलाफ़ हो गए थे उनकी शहादत के बाद उनके हमनवा हो गए और उन्होंने इस पूरे वाक़े की तारीख़ में बड़ी मजम्मत کی انہوں نے بدایہ و نہایہ دیکھا جا سکتا ہے۔

0: है, महमूद अब्बाद की अबकरियात अली देखी जा सकती है, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी की अलमुर्तज़ा देखा जा सकता है। तो इन लोगों ने बहुत ज़्यादा बाद में उसकी मुखालफत की, बल्कि तारीख़ में यह भी लिखा है कि यजीद के दरबार में जब सर पेश किया गया तो उसने बहुत लानत मलामत की उस शख्स की जिसने ये काम अंजाम दिया था, और उसने कहा कि अगर ये मेरे पास आ जाते और बातें हो जाती तो ये हादसा नहीं होता। तो गोया के हजरत हुसैन का खून रायगा नहीं गया, उसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को उस दौर में खुसूसियत से नई ताजगी, नई तवानाई और हक पर जमने की वो सलाहियत पैदा की जो दूसरे किसी वाक़े से मुमकिन नहीं था। तो इस तारीख वाक़े का ये मुस्बत पहलू है, वो लोग जो हक पर जमने का मलका खोते जा रहे थे हजरत हुसैन के जम जाने और हजरत हुसैन की शहादत के बाद
1: हक
0: उनके
1: बात
0: अंदर
1: कहने
0: ये
1: की जुरत पैदा।
0: हौसला और जुरत पैदा हुई और उसके असरात देर तक रहे। बनू उमैया के बाद बनू अब्बास का सिलसिला चला और उसके बाद खुलफा के नाम से मोतसिम बिल्ला का सिलसिला चला, सब में उसके असरात देखे गए।
1: इस वाकया को गुजरे हुए तकरीबन 1350 साल के करीब हो गया है। अब जमाना बहुत बदल गया है, हालात बहुत बदल गए हैं, तो इतना अरसा गुजरने के बाद मौजूदा पसे मंजर में, आज के हालात में आप इस वाकया को किस नौयत से देखते हैं?
0: देखिए, इस वाक़े से इबरत पज़ीरी और असर लेने की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा आज है। उस वक्त बहुत सारे लोग थे जो हक कहने की जुरत भी रखते थे, हौसला भी रखते थे, कुछ लोग थे जो ऐसा नहीं कर सके, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आज का जो दौर है, इस दौर में हर आदमी मसलहत अंगेज़ और मसलहत आमेज़ गुफ्तगू करता है, और
1: मफाद
0: बल्कि
1: का गलबा ज्यादा हो,
0: मफाद का गलबा है,
1: हक बात का नहीं कहना चाहिए।
0: खुदगर्जी का गलबा है, उसको जिधर मफाद नजर आता है उधर बढ़ जाता है। तो ऐसे मौकों से हजरत हुसैन की जिंदगी हमारे लिए बहुत बड़ा उसवा और नमूना है कि चाहे आदमी तन्हा पड़ जाए लेकिन जो हक बात है और जो हक कहना चाहिए और हक के लिए मैदान में खड़ा होना चाहिए, ये वो पैगाम है जो आज के दौर में हजरते हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से हमें मिलता है। हम वाकई करबला पर मातम तो खूब करते हैं, लेकिन उसका जो सबक है और उससे जो इबरत पकड़ना है और उसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी में, अपने फ़िक्र में, अपनी सोच में, अपने आमाल में जो तब्दीलियाँ लानी है, उसकी तरफ हमारी तवज्जो कम जाती है।
1: इमाम
0: हमने
1: हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के इस वाक़े से ये पैगाम ये भी मिलता है कि वक्ती तौर पे किसी के इकतदार ताकत से मरूब नहीं होना चाहिए, हक पे डटे रहना चाहिए, हक की आवाज़ को बुलंद करना
0: बिल्कुल
1: चाहिए
0: सही,
1: और उसके लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती है।
0: बिल्कुल सही,
1: वक्ती तौर पे लगता है कि हक कमज़ोर हो गया है, लेकिन हक कभी ख़त्म नहीं होता है।
0: बिल्कुल
1: जिस तरह से आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम लेने वाले सारी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, और उस वक्त के जो बरसरे इकतदार लोग थे आज उनका नाम वो निशान नहीं है, तो ये हक की ताकत इस वाक़े से बखूबी समझी जाती है। तो आखिर में हम चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि इस वाक़े से आम इंसानों को क्या पैगाम लेना चाहिए और क्या पैगाम मिलता है।
0: इस वाक़े का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि हक बात के लिए कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, अपने मौक़फ़ पे हक पे जमना चाहिए और बिला खौफ लौमत अलाइम, किसी मलामत करने वाले की परवाह किए बगैर इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी ताकत, तवानाई और हमारे पास जो कुछ अल्लाह ताला ने कुव्वत इस्तेआत दी है उसके मुताबिक हम हक़ के लिए खड़े होंगे और हक़ की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, चाहे उसमें हमारा ख़ानदान चला जाए, हमारी जान चली जाए और हमें कर्बोबला से गुजरना पड़े। हमें ऐसा करना चाहिए।
1: इस वाकया ने दुनिया को एक नई सोच दी, नई फिक्र दी कि वक्ती तौर पे चाहे बातिल कितना ही ताकतवर हो, लेकिन एक न एक दिन उसे ख़त्म होना है और हक को एक न एक दिन सरबुलंदी मिलती है, उसे कामयाबी मिलती है। और ये वाकया ने फतो शिकस्त के मानी भी बदल दिए हैं। ये बिल्कुल नादरुल मिसाल है और इस वाकया से उन तमाम हक पसंदों को ये हौसला मिलता है कि हक के लिए हमें डटते रहना है और डटे रहना है, और उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़े उस कुर्बानी देंगे, تبھی جا کر

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं रसमंजरी। श्रोताओ, रसमंजरी कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके लिए पहला गाना श्रेया घोषाल और अन्वेषा की आवाज में रांझना फिल्म से। इस गाने को लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

रस मंजरी में लीजिए, अगला गाना पेश है ए आर रहमान और श्रीनिवास की आवाज में। इस गाने को हमने लिया है लगान फिल्म से, जावेद अख्तर के बोल और इस म्यूजिक कंपोजर हैं ए आर रहमान।

0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप सुन रहे हैं रसमंजरी कार्यक्रम में। चलिए सुनते हैं अगला गाना मोहित चौहान की आवाज में, जब वी मेट फिल्म से। इरशाद कामिल के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है प्रीतम ने।

0: सुखविंदर सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे टशन फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था पीयूष मिश्रा ने और संगीत से सवारा था विशाल शेखर ने। इस गाने के साथ ही रसमंजरी का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम इनसे मिलिए। आइए सुनते हैं शिक्षक शिक्षिका और समाज सेवी रीता रानी और प्रीति प्रभा की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम इनसे मिलिए में बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षिका और समाज सेविका रीता रानी। रीता जी आज समाज में उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो अपनी शारीरिक बनावट, अपने कद काठी को लेकर कुंठित रहते हैं। रीता जी की हाइट 2.5 फुट है, लेकिन हौसला पहाड़ों से भी ऊंचा। समाज ने इनका मजाक उड़ाया, हीन दृष्टि से देखा, लेकिन इन्होंने समाज से छिपने के बजाय लड़ना सीखा। रीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: नमस्ते
1: जी। रीता जी अपने बारे में कुछ बताइए ना, अपने जीवन शैली के बारे में। आप एक शिक्षिका भी हैं और फिर आप बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटी की अध्यक्ष भी हैं, पूरे मगध रेंज को देखती हैं। तो किस तरह से स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के अलावा आप दिव्यांग लोगों के बीच में काम करती हैं और आप दिव्यांग बच्चों को अपने घर पर पढ़ाती भी हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं?
2: पहले तो मैडम मैं नमस्कार कर रही हूँ। मैडम मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, गया में, जो बोधगया मेरा इंटरनेशनल प्लेस है, वहीं पर एक हमारा विद्यालय है, उसी में मैं पढ़ाती हूँ शिक्षिका के रूप में। वहाँ पे तो मैडम पढ़ाने में कठिनाइयाँ तो होती है बहुत, लेकिन मैं उस कठिनाइयाँ को एंजॉय में लेती हूँ। अगर मैं टेंशन दिमाग में लूंगी तो शायद हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगी, नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं उस एंजॉय को, उस पढ़ाई को बच्चे को सिखाने में लगता, चलो आदमी दो कदम आगे बढ़ता चढ़ता है तो कोशिश करता है, कहा जाता है कि कोशिश कामयाब होती है। तो मैं बोर्ड हमारा सर से ऊपर का बोर्ड है, तो सोच लीजिए मेरी लंबाई से ऊपर का, तो हमारी चाहत होती कि उस ब्लैक बोर्ड के मैं चूमूं। हम पढ़ाएंगे तो ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। तो मैं एक बेंच लगाती हूँ, बेंच पे लगाकर, बेंच पे भी चढ़ने में कठिनाइयां होती, लेकिन मैं अच्छे से चढ़ जाती हूँ, इंजॉय करके, एक दो तीन करके चढ़ जाती। बच्चों को खूब अच्छा से हम पढ़ा लेते हैं खूब। उसके बाद फिर बेंच से उतरती हूँ तो बुक के द्वारा बच्चों को समझाती हूँ, पढ़ाती हूँ, और बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जिस शैली से मैं समझाती हूँ और पढ़ाती हूँ तो बच्चे भी काफी हमारे प्रति समर्पित होते हैं। एक होता है ना कि बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, सो नहीं, मैं बच्चों को बहुत प्यार से, साइकोलॉजिकल ढंग से मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ।
1: और जी आपने बच्चों को पढ़ाने की बात कही तो मैं जानना चाहूंगी कि जब आप शिक्षक बनी, एक सरकारी स्कूल में आप शिक्षक हैं, और आपका पहला दिन कैसा था जब आप स्कूल में गई और फिर बेंच पर खड़ी होकर आपको पढ़ाना पड़ रहा था, बच्चों का रिएक्शन क्या था, वहाँ के टीचर्स के क्या रिएक्शन थे?
2: जब फर्स्ट डे मैं स्कूल में इंटर किए तो सबसे पहले तो थोड़ा सा वहाँ का स्टाफ लोग जो थे हमारे, उन लोग को लगा थोड़ा सा अकबक, कैसे करेगी, जो कि हमको बहुत ताज्जुब लगा कि मैच्योर्ड माइंड होकर लोग इस तरह से कर रहे हैं, पढ़े लिखे
1: सोचते हैं,
2: है ना, सोच रहे हैं कि कैसे ही करेगी, आ गई स्कूल में। लेकिन हम अपनी जो मेरी खासियत थी, जो मेरे में गुण था, विशेषता थी, हम वहाँ पे नहीं बोलने गए, चुपचाप हम गए बैठे किए। फिर बच्चे लोग भी हमारे पास आ गए, एक जो गांव का माहौल था, बच्चे लोग भी झुंड बना के आ गए। तो बच्चों से मैं ही सवाल कर दिया कि बच्चे आप लोग पढ़ते हैं? तो हाँ, हंसने लगे, बोले हाँ। तो हम बोले एक रैम से सुना दो। सबसे पहले बच्चे लोग गाना से प्रभावित हो जाते हैं, रैम से, तो बच्चे लोग एक रैम सुनाने लगे, मछली

0: लीजल की रानी है, सब सब पढ़ने
1: हम्म,
0: लगा, बाबा ब्लैक शिप है, सब हम लोग भी पढ़े थे, तो बच्चे बताने लगे, तो मुझ में खुशी हुई। लेकिन कुछ स्टाफ लोग मुझे देखते रह गए। उसके बाद हमें क्लास मिला, क्लास मिला तो हम क्लास में गए, क्लास बड़े थी, सर्वप्रथम डे का मैं कह रही हूँ आपको, तो दिया लोग बोला मैडम क्या पढ़ाएंगी, तो हम बोले हम सोशल स्टडी पढ़ाएंगे, एकदम समाज अध्ययन में हम सोशल स्टडी पढ़ाएंगे, जब समाज में कर रहे हैं तो सोशल स्टडी पढ़ाने का, तो ऑल सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ लेकिन सोशल स्टडी पे झुकाव ज्यादा हमारा। लिए किताब और बच्चे के बीच में, क्लास 7th का बच्चा था, हम गए और बेंच वहां पे लगा हुआ नहीं था, बोर्ड बहुत ऊंचा पे था, तो बेंच एक बच्चा से निकलवाए जो वहां पर एचएम थे, उनको बोले कि सर अगर आपकी परमिशन है तो एक बेंच हमें दे दीजिए, तो नहीं बिल्कुल मैडम बिल्कुल, तो एक बेंच निकला, बेंच पे चढ़ के और बच्चे को मैं पढ़ाना शुरू कर दी, और सारे स्टाफ खड़ा होकर हमें देखने लगे, एकदम मैं फर्स्ट डे की बात बोले जब मैं गवर्नमेंट स्कूल में गई तो सारे स्टाफ देखने लगे, तो मुझे लगा कि देखने से क्या होगा, हम में विशेषता है, मेरिट है, हम अपना पढ़ा रहे हैं, और पीछे मुड़ के फिर हम देखे नहीं, आप लोग कुछ बोलते रहिए, कुछ कीजिए, कुछ हंसी भी कीजिएगा तो हमें कोई गम नहीं, जिस काम के लिए मैं आया हम काम कर रहे हैं तो रहे। उसी तरह से फिर पर डे में जाती रही और उसी तरह से पढ़ाते रहे। कठिनाइयां तो बहुत आया, रिक्शा से, टेम्पू से, टेम्पू से, बस पे भी चढ़ना पड़ता था, लेकिन इस सब कठिनाइयां को मैं इंजॉयमेंट में लेते हुए काम
1: किस तरह
0: करते
1: की
0: थे।
1: कठिनाई होती है बस पर चढ़ने में, ऑटो पे?
0: बस तो काफी ऊंचा रहता है, तो मेरी पांव छोटी है, तो कुछ लोग मुझे हाथ, जो जान पहचान कुछ भी जो भी रहते हैं, तो हाथ का सहारा देता था लोग, तो हम चढ़ते हैं, लेकिन हाँ चढ़ जाते हैं हम एकदम किसी भी तरह से, लोग कुछ हंसे चाहे कोई कुछ बोले, मैं चढ़ जाती
1: लोग
0: हूँ।
1: हंसते भी हैं?
0: हाँ हंसते हैं, लाफिंग करते हैं, इसमें नो डाउट, काफी लाफिंग करते हैं, लेकिन उस लाफिंग का मुझे तब परवाह नहीं है। अरे हमको ना देख रहे हो, हमारे विशेषता को आप लोग देखिए, हमारी
1: जी
0: शीलगुण को
1: बिल्कुल।
0: देखिए कि हम में शीलगुण विशेषता क्या है। तो फिर वही आना जाना करते रहते, बच्चों को मैं पढ़ाते रहे, लेकिन ज्यादा जब सीनियर क्लास में क्लास लिए तो हमको लगा कि सीनियर से अच्छा कि हम बेसिक बच्चा को पढ़ाएं, बेसिक बच्चा को पढ़ाने लगे, जो हमारा 1-2 का बच्चा तो काफी कमजोर, और गांव का माहौल में तो कमजोर बच्चा ही रहता ही है, बहुत कमजोर रहता है। हमारे क्लास में 10 बच्चे, तो 10 का तो एक जैसा दिमाग है नहीं, किसी को पूरा आ रहा है अल्फाबेट, किसी को कुछ नहीं आ रहा, तो उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। उसकी आईक्यू लेवल को मैं देखती हूँ, मैं साइकोलॉजिकल ढंग से भी सबको, बच्चे को ट्रीटमेंट करती, तो उस लेवल से हम जूनियर सेशन बच्चे को देखते हैं। तो एक बार
1: क्या बात
0: हमारे,
1: कही
0: हाँ
1: आपने।
0: एक बार हमारे स्कूल में हमारे एक वरीय पदाधिकारी आए थे, तो उन्होंने जब जूनियर सेशन में आए तो बोले कि मैडम बच्चा तो आपका 10 बच्चा कुछ आ रहा कुछ नहीं आ रहा, तो हम बोले सर ऐसा बात है ना कि यहाँ पर बच्चे का आईक्यू लेवल आप टेस्ट कीजिए, आईक्यू लेवल से मैं जाती हूँ। तब वो हमारा मुंह देखने लगे, चेहरा देखने लगे, बोले वाह आप तो बहुत अच्छे से बच्चे को पढ़ाती, मैं एक ऑफिसर होकर नहीं जानती थी कि इस तरह से भी बच्चा को पढ़ाया जाता है।
1: क्या बात है, क्योंकि जिस जगह पे आपका स्कूल है उसके
0: हाँ
1: आसपास के जो इलाके हैं वो काफी गरीब और पिछड़े इलाके हैं,
0: हाँ
1: वहां पर
0: हाँ
1: शिक्षा का उस तरह से प्रसार नहीं है
0: नहीं है,
1: और बच्चों को पढ़ने में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, मजदूर बच्चे होते हैं। और हमने देखा है कि बोध गया में आपका स्कूल है, उच्च विद्यालय में आप पढ़ाती हैं,
0: मध्य विद्यालय
1: मध्य विद्यालय में पढ़ाती हैं, और आपका घर गया में है,
0: जी।
1: तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की और किस तरह से अपने आप को तैयार किया इसके लिए?
0: पढ़ाई तो मैं गया से ही की, गया जी से प्रॉपर टाउन से की है। सबसे पहले तो मैं इंग्लिश, बचपन में इंग्लिश स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में मेरे पेरेंट्स डलवाए, और वहाँ हम क्लास 5 तक पढ़े, और हम लोग के समय में तो हिंदी वगैरह ही था ही, लेकिन उसके बाद हम सरकारी स्कूल में चले गए, लेकिन पहले भी जो गवर्नमेंट स्कूल था इंग्लिश स्कूल से कम नहीं था। हम लोग के समय में भी बस चलता था सरकारी स्कूल में, और काफी डिसिप्लिन, काफी अनुशासन वाले स्कूल में, तो हमारा शिक्षा प्रॉपर गया टाउन से हुआ, मैट्रिक तक हम गया सरकारी स्कूल से, और वहां पे जो पहला पौधान जिंदगी का होता है उसमें हम फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे मैट्रिक।
1: तो आपको पढ़ाई के दौरान, स्कूल कॉलेज जाने के दौरान आपको क्या भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था?
0: हाँ सामना करना पड़ता था,
1: किस तरह के भेदभाव का सामना करना
0: जैसे
1: पड़ता?
0: बच्चे लोग में ही हो जाते थे, किसी को भी तेज बच्चा आ गया, किसी को नहीं आ रहा, तो अधिकतर लोग मुझे सोचते थे कि इसको कुछ नहीं आता है, इस तरह से देख के सोचते थे कि इसको कुछ नहीं आता है, इसको मत पढ़ाओ मत करो, और इवन कि कभी कभी टीचर लोग भी नहीं करती थी कि इस तरह से आ गई क्लास में क्या पढ़ेगी, लेकिन हम में एक अंदरूनी खासियत था कि हम अपनी विशेषता जाहिर नहीं करते थे। और उसी स्कूल में टीचर एक हमारी थी, काफी कोऑपरेट करती थी। जब वो मेरा कॉपी देखती थी स्पेशल,

0: और जब परीक्षा में कॉपी देखती थी तो सभी टीचर को दिखाती थी कि देखिए रीता रानी का कॉपी एकाएक लिखी हुई है, सारा लिखी हुई है।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल,
0: विशेषता
1: हौसला बुलंद हो तो
0: हाँ
1: कामयाबी कदम चूमती ही
0: चूमती
1: है।
0: है मैडम। बस
1: आपने संगीत की भी शिक्षा ली है,
0: जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से
1: कुछ
0: की।
1: गुनगुनाएंगे हमारे श्रोताओं के लिए?
0: अपनी जिंदगी का एक गाना है मैडम, और वो गाना है कि थोड़ा सा के लिए भगवान जो कहा जाता है धरती पे रख के हमें इस तरह से कर दिए, तो थोड़ा सा लगता है फिल्म जंजीर का है। मैं गुनगुना बस दो लाइन का
1: जी
0: कर
1: जी
0: देती हूँ। बना

0: महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है?
1: आज के समय में, लेकिन हम पहले से भी कहते हैं, जब से हमारी होश आई है, महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए, अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए, लगे कि हम भी टैलेंट है, हमें भी कुछ आ रहे, हम किसी के प्रति
0: किसी पर निर्भर ना हो।
1: निर्भर नहीं हुए और किसी के ऊपर बोझ ना बने, हम कुछ ही करें लेकिन करें।
0: जी।
1: महिलाओं के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ।
0: रीता जी, आप बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्संस विथ डिसेबिलिटी की अध्यक्ष हैं, पूरे मगध रेंज में काम करती हैं, आप देखती हैं,
1: जी
0: तो उसमें महिला पुरुष दोनों ही दिव्यांग लोग उससे

0: जुड़े हुए हैं और उनको लेकर आप काम करती हैं, तो किस तरह से कामकाज होता है वहां पर?
1: वहाँ पे भी काम होता है मैडम, हम अपने स्कूल के बाद ही करते हैं, शाम में करते हैं, 6 बजे 5 बजे के बाद ही काम करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा उसके लिए टाइम निकालते हैं। जो भी उन लोग का काम करना मदद हुआ, ऑफिस जाना होता है तो ऑफिस में जाके उन लोग का कुछ कुछ काम, जैसे हुआ कि उन लोग का सर्टिफिकेट बनवाना होता है, राशन कार्ड की होती है, वगैरह वगैरह बहुत से होते काम, तो उन लोग में मदद कर देते हैं। और मैं एक बात और मैडम, मैं मेंटल रिटायर्ड बच्चों को भी पढ़ाई हूँ, जो दिमाग से और से शरीर से भी है, उस बच्चे को भी मैं 12 साल सेवा की हूँ। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल में आ गई।
0: उन बच्चों को आपने कैसे तैयार किया?
1: उन बच्चों को जो मेंटल रिटायर्ड बच्चे, उन लोग को जैसे कि जो बच्चे हमारे 25 साल के हैं, 18 साल के, तो उनकी IQ लेवल किसी की 5 साल की है, किसी की 4 साल की है, उस लेवल पे जाते, किसी का 0 बटा है तो उस 0 से शुरू किया जाता है, पहचानने की क्षमता देखो क्या है क्या नहीं है। मेंटल रिटायर्ड बच्चे तो पहचानते बहुत कम है, बोलते भी बहुत कम है, तो उन लोग को पहले वही पहचानना है, दिखाना है, सिखाना है, इस तरह से लेवल पे करना होता है, IQ लेवल करना होता है। उन बच्चे में कठिनाइयां हैं बहुत, लेकिन मैं हैबिचुएटेड हो गई हूँ ऐसे बच्चे के बीच में, आराम से कर लेती हूँ।
0: अभी भी आपके पास ऐसे बच्चे आते हैं?
1: आते हैं छुट्टी में
0: जी
1: आते हैं, जैसे अभी गर्मी का छुट्टी हमारा है तो गर्मी के छुट्टी में आते हैं, तो बुलाहट भी होता तो चले जाते
0: तो
1: हैं।
0: क्या उनके सिर्फ पढ़ाई पे आप फोकस करती हैं या फिर वो आत्मनिर्भर बन जाए उस पर फोकस करती हैं, क्या होता है?
1: मैडम पढ़ाई तो बाद में देखते हैं, पहले उनकी लेबल देखते हैं क्या है, तो उन लोग को वोकेशनली मैं कराती हूँ ज्यादा, कलर कॉम्बिनेशन हो गया, पहचानो कलर हुआ, कुछ मूर्ति बनाना हुआ, लिप इनवलप बनाना हुआ, अगरबत्ती बनाना हुआ, इस सब से क्या होगा, सीखेगा बच्चा तो वो अपने आप को आत्मनिर्भर हो गया। जैसे लिफाफा ही बनाएगा, हर एक घर में पेपर खरीदाता पढ़ने के लिए न्यूज पेपर, तो वो तो खत्म हो जाता है, अगर वो लिफाफा बनाएगा, पेरेंट्स के द्वारा सिखाते हैं थे हम लोग, अभी भी सिखाते हैं, तो वो अगर लिफाफा किसी दुकान में जाके बच्चे देंगे तो उसके पास तो कुछ पैसा आ गया, तो शुरू से तो एक आत्मनिर्भर हो गया।
0: जी
1: अगरबत्ती अगर जाता बनाने करता है तो अपने आप पे आत्मनिर्भर हो गया। तो इस तरह से बच्चे लोग को आगे बढ़ाते हैं, सिखाते हैं, कुछ ऐसा सिखा दीजिए मैथ में पैसा रुपया गिनने के लिए कि दुकान में भी कुछ काम कर ले।
0: जी बिल्कुल, क्या बात है। मैं चाहूंगी कि हम अपने श्रोताओं को आपके पसंद का गाना सुनवाएं। कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे?
1: मधुबन खुशबू देता है, सागरे सावन होता है, मधुबन।

0: मधुबन खुशबू देता।
1: क्या बात है। ये गाना क्यों पसंद है आपको?
2: ये गाना इसलिए पसंद है मैडम कि मैं खुशबू दे रहा हूँ, मधुबन खुशबू देता है। हम सूरज नहीं बन रहे तो दीपक भी जो है
1: चारों जरूर बने।
2: दीपक के नीचे जो अंधेरा होता है और चारों तरफ हिंजोला होता, वो मैं अपने आप को साबित करती हूँ।
1: क्या बात है, आत्मविश्वास से लबरेज हैं आप
2: जी।
1: और यही वजह है कि आप कामयाब भी हुई हैं। रीता जी, समाज में जिस तरह से महिलाओं को देखने का एक नजरिया है, एक खाका तैयार किया गया है, पतली लंबी चेहरे गोरी, ऐसी लड़कियों को सुंदर माना जाता है और उसे पसंद किया जाता है, ऐसे सोच ऐसे विचार को आप क्या कहेंगे, किस तरह से देखती हैं?
2: मैं ऐसे पर्सनालिटी को नहीं देखती, मैं वैसे लोगों को देखती हूँ जिसमें कि शील गुण विशेषता हो। हम काफी सुंदर है मैडम, एक हम बात बोलते हैं, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ बैठू रहूंगी तो उससे क्या कुछ हो जाएगा। आज का जो जमाना है, आत्मनिर्भर बनो, और सुंदरता कुछ नहीं, विशेषता बहुत बड़ी चीज होती है, बात भी होती, विशेषता में ही सारा गुण छिपा हुआ है
1: जी।
2: मैं विशेषता का ज्यादा महत्व देती
1: हूँ। बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में, खास करके दिव्यांग बच्चों को और लड़कियों की जो स्थिति है समाज में, ऐसे ऐसी जगह पे पेरेंट्स को क्या करना चाहिए आगे बढ़ाने में?
2: पेरेंट्स को अपने बच्चे के प्रति ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को समझाएं, और आजकल के बच्चे भी बहुत मैच्योर्ड हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे भी मैच्योर्ड करे और कहें कि बेटा इस विश्वास को जीत कर लाओ, अपने में विशेषता लाओ, विश्वास जीतो उसके बाद विशेषता को दिखा दो हमारे प्रति, तो वह उस तरह की लड़कियां अगर करने लगे तो हर एक पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, विश्वास तब विशेषता।
1: जी बिल्कुल। लेकिन आपके पेरेंट्स ने, आपके घर वालों ने जिस तरह से आपको सपोर्ट किया, आपको पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, उसी तरह से हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं जो अपने शरीर को लेकर, शरीर की बनावट को लेकर कुंठित रहते हैं और उनके घर वाले भी कुंठित रहते हैं, तो वो किस तरह से उनका सपोर्ट करें?
2: सबसे पहले तो मैडम आज का जो टाइम है एजुकेशन का है, हम तो कहते हैं ऐसे पेरेंट्स बच्चों को सबसे पहले एजुकेशन दे, एजुकेशन में बहुत बड़ी राज छिपी होती है, और वो एजुकेशन देंगे तो बच्चे किसी भी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, जरा सा भी जानकारी उन्हें हो जाएगी तो खुद अपने दरवाजे पे भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी अगर पढ़ाएंगे तो अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उन्हें डोर टू डोर जाएंगे, जो दिव्यांग है कुछ भी उनको आ जाएगा तो जैसे हम ट्रांसलेशन बनाना ही आ जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा, हिंदी में ग्रामर आ जाएगा, थोड़ा सा विज्ञान सीख लेंगे, सोशल समाज सीख लें, तो एक घर में दरवाजा पर ट्यूशन भी पढ़ा लेंगे तो अपने आप को एक आत्मनिर्भर हो जाए।
1: बिल्कुल, क्या बात कही आपने, सबके लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ही जरूरी होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में समय हो चला है विदा लेने का। रीता जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और इतनी गंभीर बातचीत के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
3: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शिक्षक एवं समाज सेवी श्रीमती रीता रानी प्रसाद से प्रीति प्रभा की बातचीत।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिन बन गया।

0: This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। नौ दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा को

0: रहा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो के घड़ी में दिन के ठीक 11 बज चुके हैं। समय हो चला है फिल्म संगीत का और कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गाना साधना सरगम, मुर्तजा और कादिर की आवाज़ें हैं, गुलजार के बोल, संगीत ए आर रहमान का। फिल्म का नाम है साथियाँ।

रहना है तेरे दिल में, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गाना के की आवाज में। समीर के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है हैरिस जयराज ने।

परिणीता फिल्म का ये गाना अभी आप सुन रहे थे। सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में स्वानंद किरकिरे के बोल और संगीत शांतनु मोइत्रा का था। लीजिए अगला गाना पेश है जीवा फिल्म से आशा भोसले और अमित कुमार की आवाज़ में। गुलजार के बोल पर इस गाने की धुन बनाई है RD बर्मन ने।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। लीजिए अगला गाना पेश है लता मंगेशकर की आवाज में जमीन आसमान फिल्म से। अनजान के बोल हैं और संगीत आर डी बर्मन का है।

0: इस गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे अगला कार्यक्रम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में आज हम मगही लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए सतीश कुमार शर्मा के गाए लोकगीत।

0: अभी आपने सतीश कुमार शर्मा के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में एक अंतराल लेंगे, सुनवाएंगे कुछ और लोकगीत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपने अन्नपूर्णा कुमारी के गाए लोकगीतों का आनंद लिया। इसी के साथ बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोता इस समय सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हमारे स्टूडियो की घड़ी में समय दिन के 12:30 होने को है। एक अंतराल लेंगे, इसके बाद सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नारी जगत सुनने वाली हमारी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो साथी सुरभि का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, नारी जीवन त्याग, ममता और असीम संघर्ष का प्रतीक है। स्त्रियां एक ओर जहां परिवार को जोड़कर रखती हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें शिक्षा, समानता और अपने अधिकारों के लिए सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। एक स्त्री जब विवाह के बंधन में बंधती है तो वो अपने जीवन के अनेक सपने अपने जीवन साथी के साथ संजोती है, लेकिन जब अचानक उसका ये साथ छूट जाता है तो उस दर्द को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। इसी दर्द, संघर्ष और चुनौतियों से भरा होता है विधवा जीवन। पति के मृत्यु के बाद एक महिला को केवल अपने प्रियजन के वियोग का दुख ही नहीं सहना पड़ता, बल्कि उसे समाज की रूढ़ियों, आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक तनाव का भी सामना करना पड़ता है। कितनी हृदय विदारक होगी वो पीड़ा जब मजबूर और मजबूत एक साथ होना पड़ता है और संवेदना समझने वाला कोई नहीं। ज्यादातर तो महिलाओं को अकेले ही परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, बच्चों की परवरिश, घर का खर्च और भविष्य की चिंताएं उसके जीवन को और अधिक चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। ऐसे में शिक्षा, रोजगार और अपनी प्रतिभा के माध्यम से विधवाएं न केवल अपने जीवन को नई दिशा दे सकती हैं, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी बन सकती हैं। कठिन परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास, साहस और आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होने का निर्णय लेता है तो रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। इन्हीं संभावनाओं में से एक है अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना, जैसे दुकान खोलने की तैयारी। जी हां बहनों, दुकान खोलने की तैयारी केवल व्यापार करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक सपने को साकार करने की शुरुआत है। किसी भी व्यापार को सफल बनाने के लिए सबसे पहले सही योजना बनाना आवश्यक होता है। बहनों, दुकान शुरू करने से पहले हमें ये तय करना होगा कि किस प्रकार की दुकान खोलनी है, उसका स्थान क्या होगा, प्रारंभिक निवेश कितना लगेगा और ग्राहकों की आवश्यकता क्या है। साथ ही दुकान का पंजीकरण, लाइसेंस, ऑनलाइन पेमेंट जैसे UPI, QR कोड जैसी डिजिटल व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना होगा। सरकार भी छोटे व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बिना बड़ी गारंटी के व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से नए उद्यमियों को आर्थिक सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है। बहनों, दुकान की सफलता केवल पैसे पर नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और ग्राहक सेवा और सही मार्गदर्शन पर निर्भर करती है। सरकारी योजनाएं उस यात्रा को आसान बनाने का माध्यम है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारे परिश्रम और दृढ़ संकल्प का होता है। इसलिए तो कहते हैं बहनों, मेहनत की डगर पर चलना सीख लो, हर कदम पर जीत का निशान मिलेगा। मेहनत की डगर पर चलना सीख लो, हर कदम पर जीत का निशान मिलेगा। हौसला हमेशा बुलंद रखना बहनों, तुम्हें अपनी मंजिल का हर मकाम मिलेगा।

0: बहनों, किसी भी समाज की प्रगति केवल आर्थिक और शैक्षणिक विकास से नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य से भी तय होती है। सही जानकारी के अभाव में अनेक मानसिक, शारीरिक और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस विषय पर हम खुलकर बात करें और जागरूकता फैलाएं। तो आइए इन्हीं विचारों के साथ सुनते हैं एक वार्ता जिसका विषय है प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता। वार्ताकार हैं डॉक्टर मीना सामंत।
1: आज हमने आमंत्रित किया है एक विशिष्ट अतिथि को, डॉक्टर मीना सामंत, जानी मानी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। स्वागत है डॉक्टर मीना सामंत आपका आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मैं आज आपके स्टूडियो में आई।
1: डॉक्टर मीना सामंत से हम बात करेंगे प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषय में। डॉक्टर मीना, जब प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि महिलाओं में ये जो फेज है वो मासिक धर्म आने के साथ ही शुरू हो जाता है। तो जब बालिकाएं किशोरावस्था में पहुंचती हैं, 16, 17, 18 साल की होती हैं, तो क्या उनको उसी वक्त से इस विषय के प्रति सतर्क हो जाना चाहिए? आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी?
2: बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा एक उठा

0: है मुद्दा। प्रजनन हम लोग जैसे पीरियड शुरू होता है किशोरावस्था से ही शुरू हो जाता है फेज, 15 साल के बाद हम लोग इस अवस्था को बोलते हैं। जब उनका मासिक धर्म शुरू होता है उनमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाती है, वो माँ बन सकती हैं क्योंकि अंडाशय से अब बनना शुरू हो जाते हैं अंडे, इसलिए उनको इसी समय इसकी समझ आ जानी चाहिए। हम लोग तो जानते हैं कि मैरिज की एज 18 है और इससे पहले कोई भी जो संपर्क होता है वो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आता है। इसकी भी जानकारी हर किशोरियों को होनी चाहिए कि कोई उन पे कोई दबाव नहीं डाले और इसी समय उनको अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूक हो जाना चाहिए। मेंस्ट्रुअल हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, कैसे सही सफाई से, कैसे पैड्स चेंज करें, अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो साफ़ सफाई से उसका यूज़ करें ताकि संक्रमण ना हो, और दूसरा ये जाने कि सेफ सेक्स क्या होता है क्योंकि आगे चल के कई बार अनभिज्ञता की वजह से या बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं होने के कारण वो गलत चीज़ों का शिकार भी बन जाती हैं, और इसलिए एक सेफ सेक्स क्या होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, कंडोम का यूज़ क्या होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, और संक्रमण अगर हो जाते हैं तो उससे क्या क्या असर पड़ते हैं बॉडी में इसका भी उनको ज्ञान होना चाहिए। पेड़ों में हमेशा दर्द बना रहना, पीरियड्स में रेगुलरिटी या मासिक धर्म बहुत ज़्यादा या बहुत कम होना शुरू हो जाए या डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, आगे चल के इसमें रिप्रोडक्शन में या माँ बनने में भी कई बार दिक्कतें आ सकती हैं।
1: जी बहुत अच्छे से आपने बताया किशोरियों को और उनकी माताओं को भी किशोरावस्था में ही सतर्क हो जाना चाहिए कि प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षा किस तरह से हम बना के रखें ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। एक किशोरी जब महिला बनती है और शादीशुदा जीवन व्यतीत करती है तो उस स्थिति में प्रजनन स्वास्थ्य और जागरूकता किस तरह से बनाए रख सकती है। कभी कभी महिलाएं बच्चा नहीं चाहती हैं कुछ दिनों तक शादी के बाद, तो उनको क्या करना चाहिए, और कभी महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि वो बच्चा चाहती हैं लेकिन उसमें देरी होती है, यानी कई तरह की स्थितियां हो सकती हैं। क्या बताना चाहेंगी हमारी नारी जगत की बहनों को?
0: इस प्रॉब्लम को दो तरह से मैं इसको एड्रेस करना चाहूँगी। पहले तो प्रिवेंशन, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। महिलाएं जब शादीशुदा भी हों उनको ये जानना ज़रूरी है कि उनका बच्चा कब होना है, कितना होना है, ये उनको सोचना है और उनके हाथ में है। तो जो कॉन्ट्रासेप्शन जो उनको लेना है गर्भनिरोध, उसकी उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए और क्या चीज़ है जो उनके लिए सही है उसकी जानकारी लेते हुए डॉक्टर से उसका इस्तेमाल करें, और हमेशा कंडोम का इस्तेमाल करें, निरोध का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो डुअल प्रोटेक्शन देता है। एक तो गर्भ होने से जब आप नहीं चाहते हैं उसको रोकता है, और दूसरा संक्रमण से भी रोकता है, जो यौन संक्रमण होते हैं उनसे भी रोकता है। तो जिस समय जब तक वो बच्चा नहीं चाहती है उसका नियमित रूप से यूज़ होना चाहिए। और दूसरा है कुछ कुछ न्यूट्रिशन, जब बॉडी का अच्छा होता है तो बॉडी में बहुत सारी मतलब अपनी ताकत होती है कि वो इन्फेक्शन से बचाव कर सके, तो अपना सही न्यूट्रिशन उनको हमेशा ध्यान देना है। स्पेशली जब वो माँ भी बनना चाह रही है तो पहले से ही एनीमिक रहें, कैल्शियम की कमी हो, हड्डी कमज़ोर हो, तो वो आगे बढ़ती चली जाती है, तो ये चीज़ अपना ध्यान रखें। तीसरी चीज़ है वैक्सीनेशन। आजकल कई वैक्सीनेशंस आ गए हैं, उसमें से जो सबसे नया है और बहुत सरकार का भी इस पे जोर है वो है HPV वैक्सीनेशन, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का नाम एक वायरस होता है उससे बचाव करता है, आगे चल के कैंसर और जेनाइटल वॉट से भी बचाव करता है। तो उसकी लेने की उम्र यही किशोरावस्था की होती है, इसको अभी टाइम से ले लेने से आगे की हेल्थ में भी बचाव होता है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और दूसरा है कि ये जानकारी होना, ये एम्पावरमेंट होती है वमन की, उनकी पावर है कि वो इस पर अपना जजमेंट यूज़ करें और अपनी सोच यूज़ करके आगे बढ़ें। तो कभी होता है ना, कई बार ये भी होता है कि समझ नहीं आता कि ये बीमारी है या यह सही लक्षण है, तो आजकल इतने सारे वेन्यूज़ हैं, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर महीना बहुत कम हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है या दर्द हो रहा है या कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, वो हो सकता है कि संकेत हो कि कोई इन्फेक्शन है या कोई और बीमारी है, तो एकदम लेट स्टेज में बहुत बढ़ने के बाद आने से अच्छा है बीच बीच में, चाहे सालाना हो या कुछ सालों बाद हो या प्रेगनेंसी से पहले या उसके बाद, जब डॉक्टर के पास जाएँ तो एक अपना गायनी चेकअप भी ज़रूर करा लें।
1: जी बहुत सही बात आपने कही, रेगुलर गायनिक चेकअप बहुत ज़रूरी।

0: है, पता चल जाता है कि कहीं हम किसी रोग के तो शिकार नहीं हो रहे। इसी से संबंधित एक मुद्दा और है जिसे यौन संक्रमित रोग भी कह सकते हैं। तो जो यौन संक्रमण रोग है, क्या इनके कोई लक्षण होते हैं? आजकल आधुनिक युग में ये भी हो रहा है कि समय के साथ किन्हीं के पार्टनर बदल गए, एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ वो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या यौन संक्रमित रोगों की संभावना बढ़ जाती है? इन रोगों के प्रति हम कैसे सचेत रहें और किस तरह से सावधान रहें?
1: बिल्कुल, एक से ज़्यादा अगर पार्टनर्स हैं तो ज़रूर इसकी संभावना बढ़ जाती है। मगर ऐसा भी होता है, महिला का पार्टनर तो एक है मगर जो वो पार्टनर है वो फेथफुल नहीं है और उसके एक से अनेक पार्टनर्स हो सकते हैं। और इसके सिम्टम्स होते हैं, सफ़ेद पदार्थ आ रहा है, पेड़ों में दर्द हो रहा है, कुछ छोटे छोटे पेनफुल अल्सर्स हो जाते हैं किसी किसी कंडीशंस में, या अनियमित ब्लीडिंग भी होना, वो भी इसका एक संकेतक हो सकता है। मगर यह भी जानना है कि अराउंड 50% में बिना किसी सिम्टम के भी हो सकता है। तो इसलिए अब हम लोगों का ये रहता है कि कभी भी महिला डॉक्टर के पास, स्पेशली कुछ हाई रिस्क कंडीशन है, प्रेगनेंसी में हम लोग रूटीनली HIV, हेपेटाइटिस बी, सी, सिफिलिस इनका जांच करते ही करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है अगर हम यहाँ अभी वो डॉक्टर के कांटेक्ट में हमेशा आती नहीं है, आए हैं और हम लोगों को माँ से बच्चे में होने वाले संक्रमण को भी बचाना है, तो हम लोग शुरुआत में जब महिला आती हैं प्रेगनेंट होके और टुवार्ड्स द एंड जब उनका डिलीवरी का टाइम पास आ जाता है, तब हम दोबारा पुनः चेक करते हैं अगर कोई हाई रिस्क है, जैसे कि जिनके हस्बैंड या जिनके हम लोग जानते हैं कि वो सेक्स वर्कर हैं, या उनके पार्टनर चेंज हुए हैं, या उनके हस्बैंड में प्रोमिस्क्यूटी है, महिलाएं ये शेयर करती हैं, तो उनमें हम लोग 2-3 बार भी ये चेक करते हैं और पार्टनर का भी चेक होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टनर कभी भी ये संक्रमण यौन संक्रमण होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर का भी इलाज हो। तो अगर पार्टनर हम लोगों के पास नहीं भी आता है तो हम दवा पार्टनर के लिए उनको बता देते हैं, क्योंकि वो हो सकता है संकोच करें आने में, या आए नहीं तो हम लोग वो अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं, तो उनको हम ट्रीटमेंट दे के महिला को दे देते हैं कि वो अपने पार्टनर या पार्टनर से शेयर कर लें, क्योंकि वो अगर वो सिर्फ अपना ही ट्रीटमेंट लेगी और पार्टनर नहीं होगा तो वो वापस से उनको हो जाएगा, तो वो चेन ब्रेक नहीं हो पाएगी। ये एक चीज़ है जो कि हम लोग ध्यान देते हैं। प्लस कंडोम का यूज़ बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम हमेशा मतलब उनको गाइड करते हैं कि ये कितना ज़रूरी है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ही नहीं बट संक्रमण से बचने के लिए भी। इसमें गर्ल्स को, वेमेन को हमेशा इंसिस्ट करना चाहिए।
0: जी, हर नारी को ये खुद समझना है कि वो किस तरह से स्वस्थ रह सकती है। और जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं तो उसमें प्रजनन स्वास्थ्य भी आता है। डॉक्टर मीना, वक्त के साथ जब मासिक धर्म खत्म हो जाता है, जब महिलाओं में मेनोपॉज हो जाता है, क्या प्रजनन अंगों के स्वास्थ्य पर उस वक्त भी ध्यान देना चाहिए?
1: ये जो उसका स्वास्थ्य है वो पहले से ही हम लोग उसका टेस्ट भी करते हैं और हम लोग जानते हैं कि 50 के आसपास फिर मेनोपॉज आ जाता है और उसके बाद क्या होने लगता है, हार्मोन की जो एस्ट्रोजन की कमी आती है बॉडी में, उससे हमारी बोन्स कमज़ोर होना शुरू करती हैं। अभी तक एस्ट्रोजन का प्रोटेक्टिव एक्ट होता है हमारे हार्ट पे, तो वो भी कम हो जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कई बार महिलाओं को जो अभी तक नहीं होता था बहुत, आजकल उनमें भी हार्ट अटैक्स आने लग रहे हैं, उनका भी लिपिड प्रोफाइल चेंज होने लग रहा है। तो आगे की हेल्थ की सुरक्षा हम लोगों को अभी से पहले से करनी होती है, जिसमें कि अपना वेट कंट्रोल करके रखें, बहुत मोटापा बाद में कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाता है। प्लस जो एक्सरसाइजेस हैं बोन्स के लिए, मसल्स के लिए, वो पहले से ही एक अपने रूटीन में लाएं, क्योंकि उसके बाद वो कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। और जहाँ तक प्रजनन ऑर्गन्स का सवाल है, हम लोगों ने पहले ही बताया HPV वैक्सीनेशन, हम लोग समय समय पर पैप्समेयर चाहे HPV स्क्रीनिंग करते रहते हैं, अल्ट्रासाउंड जब अगर कोई भी सिम्टम होता है अल्ट्रासाउंड से ओवरीज देखते हैं, या कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो अल्ट्रासाउंड द्वारा या बायोप्सी करके, यूट्रस की बायोप्सी करके देखते हैं। सर्विक्स, यूट्रस, ओवरीज एक कॉमन ऑर्गन्स है जिसमें कैंसर हो सकता है। ब्रेस्ट सबसे कॉमन होता है, जिसका तो हम लोग बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने होना चाहिए, साल में एक बार डॉक्टर के थ्रू होना चाहिए, एक एज के बाद चाहे मैमोग्राम हो या MRI कराना चाहिए, स्पेशली जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो।
0: नारी ईश्वर की एक विशिष्ट रचना है और खुद को स्वस्थ रखना उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो चलते चलते आप हमारी नारी जगत की बहनों को क्या बताना चाहेंगी, किस तरह से वो अपने प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सचेत रहें और अपनी जीवन शैली किस तरह से रखें?
1: तो इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगी, वो

0: अपनी हेल्थ न्यूट्रिशन द्वारा, रेगुलर एक्सरसाइज द्वारा, उसको तो भूलना नहीं है, वो पार्ट ऑफ द हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी आएगा। और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस फॉलो करें। कभी भी कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं जैसे अब नॉर्मल ब्लीडिंग हो या डिस्चार्ज हो, तो उसका डॉक्टर से जाके उसकी सलाह लें, उसका उपचार कराएं, और उसके अलावा भी समय समय पे डॉक्टर से मिले ताकि कुछ स्क्रीनिंग हो सके और कोई बड़ी बीमारी होने से पहले ही उसका पता चल सके जो कि ट्रीटेबल हो।
1: जी, डॉक्टर मीना सामंत, आकाशवाणी पटना के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी वार्ता जिसका विषय था प्रजनन स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति जागरूकता। वार्ताकार थी डॉक्टर मीना सामंत और भेंटकर्ता थी अलका प्रियदर्शनी। बहनों, अब मैं एक ऐसे महान सपूत, दूरदर्शी राजनेता और सच्चे राष्ट्रभक्त के बारे में चर्चा करने जा रही हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जी हाँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा का लोहा हर कोई मानता था। मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बनकर उन्होंने शिक्षा के विस्तार में ऐतिहासिक कार्य किए। 21 अक्टूबर 1951 को उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की जो कि आज की भारतीय जनता पार्टी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सबसे बड़ा योगदान कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना था। उनका मानना था कि एक देश में दो विधान, दो निशान और दो प्रधान नहीं हो सकते। डॉक्टर मुखर्जी का एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने राष्ट्र की संप्रभुता के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। 23 जून 1953 को उनका निधन हो गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका सपना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा। देश के महान सपूत और देशभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हमारा शत शत नमन है। बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन में राष्ट्र की एकता और सामंजस्य को सर्वोच्च महत्व दिया। यही एकता और सामंजस्य का भाव हमारे परिवारों में भी उतना ही आवश्यक है। जब परिवार के युवा, वयस्क और बुजुर्ग एक दूसरे को समझते हैं, सम्मान देते हैं और साथ मिलकर चलते हैं, तभी एक सशक्त और सुखी परिवार का निर्माण होता है। और इसके लिए बेहद जरूरी है युवा और बुजुर्ग के बीच तालमेल। परिवार केवल रिश्तों का समूह नहीं है बहनों, बल्कि अनुभव, संस्कार और ऊर्जा का सुंदर संगम है। परिवार में युवा और बुजुर्ग दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके बीच अच्छा तालमेल परिवार की खुशहाली का आधार बनता है। आज की तेज भागती दुनिया में पीढ़ियों के बीच विचारों का अंतर स्वाभाविक है, लेकिन ये अंतर दूरी का कारण नहीं बल्कि सीखने का अवसर बनना चाहिए। युवाओं को बुजुर्गों के अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, वहीं बुजुर्गों को भी युवाओं की नई सोच को समझने और स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। संवाद, सम्मान और सहयोग, ये तीन बातें पीढ़ियों के बीच मजबूत तालमेल की नींव है। इसलिए तो कहते हैं बहनों कि वक्त की धूप में जो छांव बनकर खड़े होते हैं, दर्द के सफर में हम सफर बने होते हैं। वक्त की धूप में जो छांव बनकर खड़े होते हैं, दर्द के सफर में हम सफर बने होते हैं। बिना स्वार्थ के साथ निभाते रहें जो, आखिर अपने तो अपने होते हैं।

0: तो बहनों, इसी प्यारे से गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम होता है समाप्त। अब अपनी रेडियो साथी सुरभि को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: महिलाओं का कार्यक्रम नारी जगत, श्रोता सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर श्रोता सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के कार्यक्रम। हम आपको बता दें कि इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे। हिंदी में समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

0: समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ निफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निफेड किसानों की सेवा कर रहा है।
1: नाफेड ने एक प्रकार से नाफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74,00,000 किसानों की सेवा कर रहा है।
0: इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों तथा कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजित डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गैर पारंपरिक खतरे अब राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल गए हैं।
2: We need to be cognizant of the new security threats and challenges.
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी अपने विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी मिल रही है। ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनीनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक में कई राज्यों के कृषि मंत्रियों, सचिवों, जिला कलेक्टरों और अधिकारियों ने भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनीनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अयोध्या में राम मंदिर में प्राप्त दान के गबन के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी। अधिकारियों ने बताया कि जांच अभी जारी है। अयोध्या राम मंदिर में प्राप्त दान के दुरुपयोग के आरोपों के सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस महीने की 13 तारीख को एसआईटी का गठन किया था। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रालाइट होविजर तोपों के रखरखाव के लिए 23 करोड़ डॉलर के पैकेज की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा साझेदारी लगातार बढ़ रही है और वो प्रस्तावित बिक्री को अंतिम रूप देने के लिए तैयार है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 525 अंक गिरकर 76,570 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आकाश

0: वाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 6 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 1:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम अक्षय वट के अंतर्गत सुनिए वार्ता। विषय है योग और अध्यात्म से दूर हो सुनापन। वार्ताकार है वकील सिंह।
1: सुनेपन का शाब्दिक अर्थ होता है खालीपन। कहा गया है खाली मन अशांति का घर होता है। ऐसे तो मानव मन अत्यंत चंचल होता है, खाली होता रहता है, तरह तरह की भावनाओं से भरता रहता है। कभी कभी चंचलता की अनियंत्रित गति के कारण जीवन की गाड़ी गलत दिशा की ओर भटक जाती है। अतः इसको नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है। मानव जीवन की 4 अवस्थाएं हैं, इनको 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गारहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य की अवस्था, 25 से 50 तक गारहस्थ की अवस्था, 50 से 75 तक वानप्रस्थ की अवस्था और 75 से ऊपर की के लिए वानप्रस्थ संन्यास की अवस्था है। होता यह है कि मानव वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश के बाद धीरे धीरे शारीरिक क्षीणता की ओर बढ़ने लगता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां लगभग पूरी हो जाती हैं। वानप्रस्थ में प्रवेश के बाद उसका मन सूनेपन की ओर जाने लगता है और मन भटकने और खाली रहने लगता है। ऐसी अवस्था में शेष जीवन को चलाने के लिए एक आलंबन की आवश्यकता होती है। ऐसी ही अवस्था में योग और अध्यात्म इसको सहारा देता है, आगे बढ़ाता है और आगे के जीवन को पूर्णतः आध्यात्मिक बना बोझिल होने से बचाता है, उसका वृद्धावस्था संवर जाता है। योग का अर्थ है जुड़ना, आत्मा से को परमात्मा से जुड़ना। योग के ऐसे 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी जान लें। यम का मतलब है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। ये 5 यम कहलाते हैं। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट न देना। सत्य, जैसा देखा सुना तथा जाना वैसा ही शुद्ध भाव से, मन से, वाणी से तथा उसी के अनुरूप कार्य हो ऐसा करना। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, दूसरे की वस्तु पर बिना पूछे अधिकार न करना, शास्त्र विरुद्ध ढंग से वस्तुओं का ग्रहण न करना, ये अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य, इसका मतलब है काम वासना को उत्तेजित करने वाले भोजन, दृश्य, श्रव्य एवं श्रृंगार आदि का परित्याग करना। उसके बाद आता है अपरिग्रह, इसका अर्थ है चारों ओर से संग्रह न करना, इकट्ठा न करना। ये पहला हो गया यम। अब हम लोग समझें नियम। नियम इसको कहते हैं शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम हैं। शौच का मतलब है शुद्धि, पवित्रता। संतोष, इसका मतलब है पुरुषार्थ से प्राप्त फल में संतुष्ट होना। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है प्रणव ओंकार का जप तथा मोक्ष की ओर ले जाने वाले ग्रंथों का अध्ययन, मनन करना और आचरण करना। ईश्वर प्रणिधान, इसका मतलब है परम गुरु परमात्मा में अपने समस्त कार्यों का अर्पण कर देना। इसके बाद तीसरा खंड आता है योग का, उसको कहते हैं आसन। आसन के लिए आदमी को नीचे दरी या कंबल कोई बिछा करके और आसन करना पड़ता है। यह आसन मुख्यतः 12 आसन हैं जो पर्याप्त हैं। ऐसे तो 84 आसन बताए गए हैं, लेकिन पतंजलि योगपीठ के द्वारा अनुमोदित ये 12 आसन है जिससे पर्याप्त सब कुछ आसन का काम पूरा हो जाता है। उसके बाद नंबर आता है चौथा प्राणायाम। प्राणायाम यानी प्राण को आयाम देना। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम से 8 तरीके होते हैं। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, कपाल भाति। उसके बाद बाह्य प्राणायाम उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणाम है। ये 8 प्राणायाम करने से ही पूरा प्राणायाम का उद्देश्य सिद्ध हो जाता है। उसके बाद 5वां होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है मनोजय अथवा विषयों से विमुख होकर मन तथा इंद्रियों को अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। उसके बाद 6ठा है धारणा। देश मन को किसी स्थान विशेष पर स्थिर करने का

0: नाम ही धारणा है। धारणा ध्यान की नींव है। जो जो धारणा का अभ्यास सुदृढ़ होगा ध्यान भी साथ साथ होने लगेगा। ध्यान अब सातवां है। ध्यान के समय सच्चिदानंद परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी विषय का स्मरण नहीं करना, बल्कि अंतर्यामी ब्रह्म के आनंदमय ज्योतिर्मय एवं शांतिमय स्वरूप में मग्न हो जाना ही ध्यान है। जीवन के किसी भी कार्य को करने के लिए ध्यान की सीख दी जाती है और ध्यान से किया गया कार्य सफल भी होता है। आठवां है समाधि। ध्यान में जब केवल ध्येय मात्र मतलब ईश्वर के स्वरूप या स्वभाव को प्रकाशित करने वाला अपने स्वरूप में शून्य जैसा भाव हो जाता है, जो आदमी उसमें खो जाता है, तब उसे समाधि कहते हैं। समाधि द्वारा ज्ञान के उच्चतम स्थिति की प्राप्ति होने पर मोक्ष अवश्यम भावी है। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, योगी भव अर्जुन, योगी बने, कर्म योगी बने, उपयोगी बने और सहयोगी बने। हमारे सभी देवता योगी थे, हमें उन्हीं का अनुसरण कर आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति सबसे सदा प्रेम करता है, बगैर सेवा भाव रखते हुए, बगैर किसी स्वार्थ के सेवा भाव रखते हुए अपना जीवन सरस तौर पर व्यतीत करता है। वह सदा सकारात्मक सोच रखता है और जीवन में आशावादी दृष्टिकोण अपनाता है। वह सबको अपना समझता है। कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। वर्तमान में आध्यात्मिक शिक्षा के ह्रास के कारण आदमी निराशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है, अतः इसकी तरफ ध्यान जाना आवश्यक। योग और अध्यात्म के अतिरिक्त समाज सुधार का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। वर्तमान में समाज और परिवार में अलगाववादी दृष्टिकोण बढ़ता जा रहा है। यह सब कुछ आध्यात्मिक ह्रास का ही परिणाम है। वर्तमान में धार्मिक कार्यों में भीड़ तो हो रही है, लेकिन आध्यात्मिकता के अभाव के कारण वह आयोजन शोभायमान नहीं हो रहा है। कभी कभी तो ऐसे आयोजनों में अनैतिक कार्य भी हो रहे हैं। आध्यात्म के अभाव के कारण हम लोग सेवा भाव से दूर होते जा रहे हैं। अतः सरस जीवन जीने के लिए हर स्तर पर योग और अध्यात्म की आवश्यकता है। इसको अपने स्वभाव में समाहित करने की आवश्यकता है। मनुष्य आनंदित जीवन जिए, इसके लिए योग परमावश्यक है। आनंद से जुड़ जाना ही योग कहलाता है। मनुष्य के जीवन में पुष्प खिल जाएंगे यदि जीवन में अध्यात्म आएगा, योग भी आएगा। अतः हर दृष्टि से जीवन को अध्यात्म से जोड़ें। आध्यात्मिक व्यक्ति प्रेम और सेवा भाव से निस्वार्थ रूप से समाज से जुड़ा होता है और आनंदित रहता है। आनंद के सामने दुनिया की सारी दौलत तुच्छ है, ये भाव आदमी को रखना चाहिए और यह सब योग द्वारा और अध्यात्म द्वारा ही संभव है। योग जीवन में संतुलन लाता है। इसके अभाव में मानव जीवन सूना सूना सा हो गया है। आजकल अपनी वेदना में सभी रोते हैं, परंतु संवेदना के लिए बिरले रोते हैं। यह आध्यात्मिकता का ह्रास अभाव ही दर्शाता है। योग से मनुष्य का तन स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ तन में स्वतः अध्यात्म का भाव प्रविष्ट होगा और कभी भी जीवन में सूनेपन का एहसास नहीं होगा। आजकल हम किताबी ज्ञान अर्जित कर लेते हैं जो कि स्थूल ज्ञान है। हमें अंतर्ज्ञान यानी अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए। तन की आंखें खुलती हैं, परंतु अध्यात्म के अभाव में मन की आंखें नहीं खुलती, जो कि सरस जीवन जीने के लिए परमावश्यक है। योग करने वाला स्वतः आध्यात्मिक हो जाता है। इस प्रकार योग और अध्यात्म आदमी के जीवन के सुनेपन को लगाम देने के लिए अमोघ अस्त्र है।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। किशनपुर रटवारा पंचायत से ओम पूनम कुमारी बनी है यशस्वी मुखिया।
2: मैं पूनम कुमारी, ग्राम पंचायत किशनपुर रटवारा, प्रखंड आलमनगर, जिला मधेपुरा। जी मैंने काम करवाए है। अभी तो मेरा बाहरी इलाका है, कोसी कटाव से पीड़ित है। वहाँ तो रोड सालों आती है, सालों चली जाती है बह के, तो उसी को हम अभी तक में 25 से 30 हम मतलब कच्ची सड़क बनाए हैं, 10 से 15 पक्की सड़क। मैं दो बार मुखिया बनी हूँ।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से मोतीपुर पंचायत से ओम प्रेमी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
1: मैं प्रेमा देवी 10 ग्राम पंचायत राज मोतीपुर प्रखंड रोसरा जिला समस्तीपुर। हम सारा काज किए हैं अपना ग्राम सभा में लेकर अपना महिलाओं से और ग्राम से लेकर उसे पंचायत को शुरू किए हैं। हमारे आने से बहुत सारे महिलाओं को रोजगार मिले। अभी लबेड़ी खोले हैं जिसका मिल रही है, अभी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से सिरी यानवा पंचायत से ओम राजेश कुमार रंजन है यशस्वी मुखिया।
2: मैं राजेश कुमार रंजन, ग्राम पंचायत सिरियामा। हमने RWD के प्रयास से ग्रामीण कार्य विभाग से मुख्य सड़क से पक्की रोड तक हमने जुड़वाए, कुछ ग्राम पंचायत से कार्य करवाए, अभी वो सब गांव खुशहाल है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया के तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
3: अंतराल से पूर्व श्रोता सुन रहे थे योग और अध्यात्म से दूर हो सुनापन विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे वकील सिंह। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी देर में।
4: एक जमाने से कहानी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: और इस गीत के बाद
3: छाया गीत।

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए देशभक्ति गीत।

0: देशभक्त गीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भदगाई पंचायत से ओम प्रकाश कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: मैं ओम प्रकाश कुमार, ग्राम पंचायत राज भटगाई, और अपने पंचायत के हर दुख सुख में रहे। हमारे पंचायत बहुत पिछड़ा हुआ पंचायत है, दलित बस्ती बहुत सारे हैं, जहां सड़क नहीं था वहां सड़क बनवाएं, स्कूल में चार दीवारी करवाएं। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। धन्यवाद।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। उमना पंचायत से धर्मेंद्र कुमार सिंह बने हैं यशस्वी मुखिया।
3: दिन है कि आज मैं उमना पंचायत को बिहार के पोर्टल पे एक नंबर स्थान पे रखने का काम किया। चाहे वो खेल मैदान हो, बाजार हाट हो, सामुदायिक भवन हो, छठी मैया घाट हो, रोड हो, नाली हो, तमाम कार्य हमने कराया है। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कुमना पंचायत की जनता।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोग करता हिंदुस्तान।
4: और इस गीत के बाद

किस कलर्स पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के समय 1:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। हीरालाल पन्नालाल फिल्म में सुनिए किशोर कुमार को, वर्मा मलिक के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

हीरालाल पन्नालाल फिल्म में अभी आपने किशोर कुमार को सुना। वर्मा मलिक की रचना थी, आर डी बर्मन का संगीत। इन्हीं के संगीत में अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में है। फिल्म है हम किसी से कम नहीं। सुनिए मजरू के बोल।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को आपने सुना फिल्म हम किसी से कम नहीं में। मजरू के बोल आर डी बर्मन का संगीत। और अब अगला गीत हम सुन पा रहे हैं जिसे लिया है फिल्म ढोंगी से। सुनिए आनंद बख्शी की रचना जिसकी तर्ज बनाई है आर डी बर्मन ने। आवाज़ किशोर कुमार और आशा भोसले।

आशा भोसले और किशोर कुमार का आपने सुना, और अब लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनिए। फिल्म है जेल यात्रा। मजरू के बोल, आड़ी बर्मन का संगीत।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आपने सुना फिल्म जेल यात्रा में, मजरू के बोल आर डी बर्मन का संगीत। और अब आशा भोसले और किशोर कुमार को सुनिए, इस गीत को हमने लिया है फिल्म बुलंदी से, मजरू की रचना है, आर डी बर्मन का संगीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नैफेड के नीलामी

0: पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों और कृषि संस्थाओं के हित में नैफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। सहकारिता मंत्रालय ने बताया है कि कार्यक्रम के दौरान श्री अमित शाह कई महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहल का भी शुभारंभ करेंगे। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। श्री कुरियन की राज्यसभा सदस्यता का कार्यकाल समाप्त हो गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरदर्शी विचारों और संकल्पों को साकार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पटना स्थित भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्री मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर एक भव्य पार्क बनाने की भी घोषणा की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने ऋण वितरण को लेकर बैंकों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ऋण वितरण में बैंकों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के मुकाबले अब तक बहुत कम ऋण वितरित किए गए हैं। उन्होंने बैंक अधिकारियों को प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी भी दी है। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बांका समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। नालंदा के गिरियक में सबसे अधिक 71.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में लू चलने की संभावना है। जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। अररिया जिले में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों में नशा मुक्ति को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनखर चौक के पास एक दोपहिया वाहन के शोरूम में आग लग गई। इस घटना में कई वाहन जलकर नष्ट हो गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
3: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़द होने वाले दूसरे शहरी अवार्ड तकरीब में पद्म अवार्ड पेश करेंगी। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री समेत

0: 65 पद्म अवार्ड दिए जाएंगे। मारूफ टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूटी, प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक और क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा पद्म अवार्ड पाने वालों में शामिल हैं। मरकजी वजीर बराए कोऑपरेटिव अमित शाह आज नई दिल्ली में इंडियन कौमी ज़रई बाहमी मार्केटिंग यूनियन नेफेड की नीलामी पोर्टल का आगाज करेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी के अमल में शफाफियत, महारत और रसाई के फ़रोग में अहम कदम है। इससे नीलामी से मुतालिक सरगर्मियों को आसान बनाने और किसानों और ज़रई इदारों के मफाद में नेफेड का काम में बेहतरी लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म दस्तयाब होगा। वज़ारत बाहमी इश्तराक ने बताया कि प्रोग्राम के दौरान जनाब अमित शाह कई अहम डिजिटल और किसान पर मरकूज पहल का भी आगाज करेंगे। अक़लियती उमूर और माही और मवेशी परवरी नीज डेरी के वज़ीर ममलिकत जॉर्ज कुरियन ने मरकजी वजारत को कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी असर से उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया है। जनाब कुरियन के राज्यसभा की रुकनियत की मुद्दत ख़त्म हो गई थी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरंदेश ख़यालात और अज़ायम को शर्मिंदा ताबीर किया जा रहा है। वज़ीर आला पटना वाक़े बीजेपी दफ्तर में जन संघ के बानी जनाब मुखर्जी के बलिदान दिवस पर मुनक़दा खराज अक़ीदत प्रोग्राम से ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि NDA हुकूमत एक भारत श्रेष्ठ भारत के तसव्वुर को मुस्तहकम करने के लिए लगातार काम कर रही है। वज़ीर आला ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर शानदार पार्क बनाने का भी ऐलान किया है। नायब वज़ीर आला और वज़ीर ख़जाना बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कर्ज़ों की तकसीम के हवाले से बैंकों की ख़राब कारकर्दगी पर नाराज़गी का इजहार किया है। पटना में रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी के इजलास से ख़िताब करते हुए मिस्टर यादव ने कहा कि कर्ज़ों की तकसीम में बैंकों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि हदफ के मुकाबले में अब तक बहुत कम कर्ज तकसीम किए गए हैं। उन्होंने बैंक हुक्काम को कारकर्दगी में सुधार लाने की वार्निंग भी दी है। रियासत के बेशतर हिस्सों में मानसून की सरगर्मी नज़र आ रही है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय और बांका समेत रियासत के जनूब वस्ती और जनूबी मशरक़ी हिस्सों में भी कई मकामात पर दरमियाने दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। नालंदा के गिरियक में सबसे ज़्यादा 71.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा ने अपने पेशगोई में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत रियासत के शुमाल वस्ती, शुमाल मशरक़ी और जनूब मशरक़ी हिस्सों में कई मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान है। इस दौरान कुछ मकामात पर बिजली गिरने का भी खदशा है। महकमा ने अपनी पेशगोई में यह भी कहा है कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद और पटना समेत रियासत के जनूब मगरबी हिस्सों में लू चलने का इम्कान है। जहानाबाद के SDO की सदारत में मुहर्रम के पेश नज़र टाउन थाना कैंपस में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक़द की गई। मीटिंग में त्यौहार के दौरान अमन व अमान बनाए रखने के लिए गौर व खौज किया गया। अररिया ज़िला में 17 जून से 26 जून तक नशा से पाक हफ्ता का इनाकात किया जा रहा है। इस दौरान मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों और दफातर में नशा से निजात के लिए हलफ लिया गया। मगरबी चंपारण के रामनगर थाना हल्का के तहत सोनखर चौक के करीब एक दोपहिया गाड़ी के शोरूम में आतिशबाजी के वाकया में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। उर्दू डायरेक्टरेट काबीना सेक्रेटरीट बिहार पटना के जेर एहतमाम आज वहाब अशरफी यादगारी तकरीबात का इनाकाद फनेश्वर नाथ रेणु हिंदी भवन में किया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर रईस अनवर ने की। इस मौके पर नदीम जाफरी की सदारत में महफिल सुखन का भी इनाकाद किया गया। महकमा के डायरेक्टर SM परवेज आलम ने कहा कि इस तरह की तकरीब के इनाकाद से नई नस्ल को पुराने लोगों से जोड़े जाने की कोशिश की जाती है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। कर्मचारी चयन आयोग SSC

0: 10+2 कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3522 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 18 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें, पता है www.ssc.gov.in। भारत संचार निगम लिमिटेड जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, कंप्यूटर, विद्युत, सूचना प्रौद्योगिकी में बीई या बीटेक होना चाहिए। न्यूनतम आयु का जिक्र नहीं है, परंतु अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में छूट प्राप्त है। आयु की गणना 5 जुलाई 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2026। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता है www.bsnl.co.in। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1500 पदों पर भर्ती के लिए योग्य इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 30 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं, पता नोट करें www.sbi.bank.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
1: और इस गीत के बाद

0: is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.
1: Namaskar. मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा, हुर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। लियोनेल मेस्सी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी

0: बने अर्जेंटीना की टीम नॉकआउट में पहुंची। और लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग के शुरुआती मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस दौरान 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण दिए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस वर्ष केंद्र सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 सम्मान मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। आज राष्ट्रपति 65 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। इनमें टेनिस के दिग्गज विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती, गायिका अलका याग्निक और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा जैसे प्रमुख हस्तियां शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित किए गए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, लोक प्रशासन तथा व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पद्म पुरस्कार विजेताओं पर आकाशवाणी पीपल्स पद्म और आकाशवाणी के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। इस श्रृंखला के माध्यम से श्रोताओं को पद्म पुरस्कार विजेताओं के जीवन और उनके योगदान की जानकारी दी जा रही है।
2: मैराब का काम सीखा, अंगूरी का काम सीखा है, मोटी चिकन मामूली का काम, तो इसमें सबसे बारीक काम एक मरूरी का ही होता है। तो मरूरी का काम जो है लगातार नहीं किया जाता है, ये बहुत ही फाइन वर्क होता है।
3: जब हमारे मेजॉरिटी कम्युनिटी का यूथ और माइनॉरिटी कम्युनिटी का यूथ एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, वो ये जाने कि कश्मीर का जो एक नॉर्मल सी के लिए वही गुलदस्ता जो कश्मीर जिसमें हमारे गांधी जी को किरण नजर आई थी या भारत का ताज के रूप में ये जो था उसी दस्ते को फिर से उजागर करने को बनाने के लिए हमने प्रयास कर।
0: ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित होगा। इन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हो गया है। श्री शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें देश के महानतम नेताओं में से एक बताया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के योगदान ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
4: श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, और उनकी बनाई पार्टी भारतीय जनसंघ, जो अब भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, गंगा से लेकर बंगाल के गंगा सागर तक भारतीय जनता पार्टी का साथ, और मूठ जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 60 साल के अंदर इनकी विचारधारा पर आगे बढ़ते बढ़ते आज देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है।
0: नई दिल्ली में नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुभारंभ पर श्री शाह ने कहा कि 23 जून भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसी दिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। विभाजन काल को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृहमंत्री ने अनुच्छेद 370 का भी जिक्र किया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
4: कश्मीर का राष्ट्र ध्वज होता था, कश्मीर का संविधान अलग होता था, कश्मीर में एक अलग प्रधानमंत्री बैठते थे, कश्मीर में एक राष्ट्रपति भी बैठते थे। ये संकल्पना भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन छेड़ा कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं रहे।
0: इस अवसर पर गृहमंत्री ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया।
4: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी NCCF और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है, और उसमें मैं

0: मानता हूं कि नाफेड और एनसीसी अपने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि 12 साल पहले गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा ये संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
0: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये चार पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले एक दशक में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और किसान हितैषी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करने हेतु नेफेड और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ की टीमों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल की सहायता से किसानों को 48 घंटे के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान प्राप्त हो जाता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य के खुलने से विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। श्री डोभाल ने आज सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक में श्री डोभाल ने इस विषय पर चिंता व्यक्त की।
2: वी नीड टू बी कॉग्निजेंट ऑफ द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड चैलेंजेस।
3: हमें सुरक्षा से जुड़े नए खतरों और चुनौतियों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। गैर पारंपरिक खतरे राष्ट्रीय सीमाओं से आगे निकल चुके हैं और पारंपरिक जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए उन्होंने अपने बचाव के तरीके भी विकसित कर लिए हैं। नई और क्रांतिकारी तकनीकें, आतंकवाद के छिपे हुए रूप और तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर खतरे, ये सभी हमारे लिए एक बड़ा खतरा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रिर और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि वे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर सार्थक चर्चा की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका मजबूत द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिससे दोनों देशों के लिए नए आर्थिक अवसर खुलेंगे और अमेरिका भारत आर्थिक साझेदारी में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरई में 18 परिसरों में तलाश अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि ये कार्रवाई केंद्रीय अपराध शाखा द्वारा वर्ष 2017 में दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में आरोप पत्र दाखिल किया था। लखनऊ आग की घटना में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उनमें से 4 को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। अलीगंज के एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में हुए इस हादसे में 15 विद्यार्थियों की मौत हो गई और 9 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, अग्निशमन विभाग और विद्युत विभाग के 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस बीच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के विशेषज्ञों और विशेष जांच दल के सदस्यों के एक संयुक्त दल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: घटनास्थल का मुआयना करने के बाद एसआईटी के सदस्य और एडीजी लखनऊ जोन प्रवीण कुमार ने कहा कि उनकी टीम सभी पहलुओं की गहन जांच करेगी और हर विभाग की जिम्मेदारियों का विस्तार से आकलन करेगी। दूसरी ओर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की 6 सदस्यीय टीम ने आग लगने के कारणों का पता लगाने और घटनाक्रम स्थापित करने के लिए सबूत इकट्ठा किए। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इमारत को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। 3 मंजिला इमारत के अनाधिकृत निर्माण को लेकर 2016 में भी इसे गिराने का आदेश जारी किया गया था, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में इसे रद्द कर दिया गया था। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अयोध्या में राम मंदिर में दान और चढ़ावे में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही 3 सदस्य

0: सदस्यीय विशेष जांच दल SIT ने आज अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। राज्य सरकार ने कथित वित्तीय अनियमितताओं और धन के दुरुपयोग की जांच के लिए इस उच्च स्तरीय पैनल का गठन किया था। SIT के सदस्यों ने पिछले सप्ताह कई संदिग्धों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों से पूछताछ की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में अलनेनो के मौसम पर पड़ने वाले प्रभाव और कृषि पर इसके असर की समीक्षा के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि अलनेनो की संभावित स्थितियों को देखते हुए सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और कृषि तथा खेती पर पड़ने वाले किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुंबई और आसपास के उपनगरों में आज लगातार तीसरे दिन भी बारिश हो रही है।
1: मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों और मध्य व पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। आज पुणे जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, रायगढ़ और रत्नागिरी के घाट इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बड़ी प्रतीक्षा के बाद आई इस बारिश से नागरिकों को राहत मिली है। अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में बारिश होने से किसान बुआई का काम शुरू कर सकेंगे। कृषि विभाग ने किसानों को जरूरी मात्रा में बारिश होने तक बुआई में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर और पश्चिम बंगाल के तराई वाले कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा और तेलंगाना में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड में आज गरज के साथ वर्षा और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शी नेता, प्रख्यात शिक्षाविद और देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने निडर होकर देश की एकता और अखंडता का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन देश के विकास के लिए समर्पित कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने ईरान पर अस्थायी रूप से बड़े प्रतिबंध हटा दिए हैं। इनमें ईरानी मूल के कच्चे तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन, वितरण और बिक्री को अधिकृत किया गया है। अमेरिका के राजकोष विभाग ने बताया कि 60 दिन के लिए जारी किया गया सामान्य लाइसेंस 21 अगस्त तक प्रभावी होगा। फीफा विश्व कप में आज अमेरिका के सांता क्लारा में ग्रुप जे मैच में अल्जीरिया ने पहली बार खेल रहे जॉर्डन को 2-1 से मात दे दी। लियोनेल मेसी फीफा विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। एक महत्वपूर्ण मुकाबले में अर्जेंटीना ने कल रात ग्रुप जे मैच में ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश किया। FIH प्रो लीग के शुरुआती मुकाबले में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजय डोभाल ने कहा, होर्मुज जलडमरु मध्य के खुलने से विश्वभर में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। प्रवर्तन निदेशालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में कथित धोखाधड़ी मामले में तमिलनाडु में 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:30 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।
3: सुर्खियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: तैयार
1: वो प्यार है शोरियों में भोला जाए फूलों का शबाब।
2: प्रेम पुजारी ऐसा फिल्म में भी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना, नीरज की रचना, एस डी बर्मन का संगीत, और अब किशोर कुमार और आशा भोसले को सुनिए फिल्म प्रेमनगर में। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत एस डी बर्मन का।

0: वाली उम्र है,
1: छोड़ो बहाना।
0: ना ना ना
2: जुगनू, इस फिल्म में भी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना, आनंद बख्शी की बोल, एस डी बर्मन का संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में एक अंतराल और उसके बाद सुनवाएंगे कुछ और गीत।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा

0: था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: जो इजाजत हो तो एक बात कहूँ, जो इजाजत

बात एक रात की, इस फिल्म में भी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी को सुना, मजरू के बोल और एसडी बर्मन का संगीत। इन्हीं के संगीत में अगला गीत हम आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल स्वर में सुन रहे हैं। फिल्म है अपना हाथ जगन्नाथ, कैफिया।

अभी आपने कैसे कहूँ फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को सुना, शकील की बोल और एस डी बर्मन का संगीत। अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की युगल स्वर में है। फिल्म गाइड से सुनिए, शैलेंद्र की रचना है, एस डी बर्मन का संगीत।

इस गाने के साथ फिल्म संगीत का हमारा आज का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बज रहे हैं, संपन्न होती है हमारी आज की ये सभा। हमारी अगली सभा शाम 4:30 पर आरंभ होगी, तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: हाँ, तो अब आज हमारे सामने बैठी हैं मंजरी जी। तो मंजरी जी, आपको मेरा नमस्कार और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
2: आरती, तुम्हें और सुनने वाली सभी सखियों और सगा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ आरती है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और देखो बहुत सारी बातें भी हैं। तो हमारी जो आज के विषय है वो पहले बता देते हैं आरती, की हल्की फुल्की बातें, घर में आंगन क्यों था जरूरी।
1: बिल्कुल, आज हम घर आंगन को लेकर आए हैं
2: जी, और सखी सहेली के आंगन में लेकर आए हैं। तो सब लोग, हमारे साथी लोग, सखिया लोग जुट गए हैं। तो अगला विषय क्या है आरती?
1: बिल्कुल, अगला विषय है हमारा सखी विशेष, के अंतर्गत हम लेकर आए हैं आज अश्विनी अशोकन जी को, जो कि सह संस्थापक हैं मैड स्ट्रीट डेन की जी। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की दुनिया में क्या होता है, वो जो बहुत ज्यादा गलत काम होता है जी, वो है आग में घी डालना।
2: घी डालना, तो इस पर सब लोग अपने अपने विचार डालें और कैसा अनुभव रहा है उसके बारे में बताएं,
1: और इस मुहावरे का उनके लिए क्या अर्थ है वो बताएं हमें, और साथ ही आंगन के विषय में बताएं उनका आंगन घर का कैसा था,
2: कैसा था,
1: कैसे खेलते थे वो अपने आंगन में।
2: और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरी एप्लीकेशन, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। यानी बड़े प्यारे से विषय है आरती लेकर आई हो तुम, तो हम लोग इन पर बात तो करेंगे, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती देखो कितना प्यारा सा गीत तुमने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। काली पलक पिया तोरी माला।
1: बिल्कुल, और चोरी ना हो और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो
0: जी
1: अच्छे
0: जी
1: तरीके से रह सकें, इसके लिए हम कुछ नया लेकर आए हैं।
0: हाँ
1: वो
0: बताइए।
1: लेकर आए हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशंस कौन सी हैं जिनके जरिए वो अपने आप को अच्छे से अपने सुरक्षा भी अपनी कर सकते हैं और अपनी बहुत सी जरूरतें भी पूरी कर सकते हैं।
0: तो बताइए।
1: तो आज के जो डिजिटल युग है उसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ जरूरी एप्लीकेशन उनके जीवन को और अधिक सुरक्षित बनाती हैं और सुविधाजनक बना सकती हैं, जैसे कि वो बैंकिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं से लेकर मनोरंजन तक हर सुविधा मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं, उपलब्ध करते हैं। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अगर कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग करना सीख लें तो उनका जीवन बहुत अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन सकता है। जैसे कि हम सभी लोग ये सब चीज़ें उपयोग करते ही हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है, जिसकी वेबसाइट है abha.abdm.gov.in। ये एक डिजिटल हेल्थ आईडी है जिसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जा सकते हैं। इसमें डॉक्टर की पर्चियां हैं, जांच रिपोर्ट है, इलाज का विवरण है, एक ही स्थान पर उपलब्ध रहता है, जिससे मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं और अस्पताल में बार बार कागजात ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और आपातकाल में डॉक्टर को स्वास्थ्य इतिहास बताने में आसानी होती है।
0: बिल्कुल आरती। और इसके अलावा ऑनलाइन SBI.SBI जो भारतीय स्टेट बैंक की डिजिटल बैंकिंग सेवा है, जहां हम बैलेंस चेक कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इसमें FD और अन्य बैंकिंग सेवाएं भी मिलती हैं। इसके साथ उमंग एप्लीकेशन जिसमें पेंशन संबंधी जानकारी रहती है, गैस बुकिंग जैसी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही जीवन जो कि भारत सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए लॉन्च किया गया एक विशेष एप्लीकेशन है, जहां वरिष्ठ नागरिकों को आपातकालीन सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पेंशन से जुड़ी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाती हैं, और मेडिसेफ जो एक बेहतरीन दवा रिमाइंडर ऐप है।
1: बिल्कुल, और जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं अक्सर समय पर दवा लेना जब हम भूल जाते हैं तो ऐसे में ये ऐप सही समय पर अलार्म बजाकर दवा की याद दिलाता है और परिजनों को भी सूचित कर सकता है कि आपको इस समय दवा देने का टाइम हो गया है। और वेल्दी और या फिर माय फिटनेस, वेल्दी यानी कि आपके वेलबींग या आप किस तरह से स्वस्थ हैं वो फिटनेस आपकी चेक करता है। तो ये फिटनेस पॉल, ये फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग का ऐप है जो वरिष्ठ नागरिकों को उनकी शारीरिक गतिविधि और खान पान का ध्यान रखने में मदद करता है। और साथ ही एक और है, वो है माई स्कीम, एक सरकारी पोर्टल है जहां बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही सभी पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया आसानी से मिल जाती है। और है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग DOSJE जो कि भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट है।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ ही scw.dosje.gov.in जो वरिष्ठ नागरिकों को आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन जैसी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा ऑडिबल एप्लीकेशन है, कई बुजुर्गों को पढ़ने में आंखों की कमजोरी के कारण परेशानी होती है तो उनके लिए ऑडियो बुक्स सबसे

0: है। यहाँ हजारों किताबों को सुनकर आनंद लिया जा सकता है। इसके साथ वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल, जो कि भारत सरकार का केंद्रीय पोर्टल है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल, बुजुर्गों को पेंशन, स्वास्थ्य और कल्याणकारी योजनाओं की सटीक जानकारी प्रदान करता है।
1: जी बिल्कुल। और एल्डरलाइन राष्ट्रीय हेल्पलाइन है, जो कि बुजुर्गों के लिए समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन सेवा है। इसका टोल फ्री नंबर है 14567, यानी 14567, और हम इसके माध्यम से गरिमापूर्ण वृद्धावस्था वेबसाइट पर जाकर आवास, भावनात्मक सहयोग और कानूनी विवाद समाधान से जुड़ी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जीवन प्रमाण पोर्टल भी है, और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो भी जीवन प्रमाण है, उसके जरिए पेंशनभोगी घर बैठे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पहले जाना पड़ता था और अपना जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था बैंक में।
0: बिल्कुल। और पेंशन भोगियों को पोर्टल पेंशनर पोर्टल विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों के लिए कर छूट, यात्रा रियायतों और कल्याणकारी योजनाओं का विस्तृत विवरण देता है। अब तो ऐसे फोन भी उपलब्ध हैं जो बुजुर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। इनमें बड़े बटन, फोटो स्पीड डायल और एक डेडिकेटेड SOS यानी आपातकालीन बटन होता है। इन फोन्स में तेज आवाज सुनने की मशीन के अनुकूल डिवाइस और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स मिलते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहिए कि बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अपना फायदा कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत अच्छी है आरती।
1: बिल्कुल। अगर इनकी जानकारी हो और इनको चलाना आता है आपको, तो आप इनके जरिए बहुत ऐसी चीजों को, अपनी जरूरतों को आप पूरा कर सकते हैं, जिनके लिए हमें पहले बाहर जाना पड़ता था, वो अब हम घर बैठे ही एक क्लिक पे कर सकते हैं अच्छे तरीके से।
0: और आरती देखो, हमारी एक साथी लिखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तकनीकी अब वरदान बन गई है। उनके दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और आनंददायक बनाने के लिए कई बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध हैं, जो स्वास्थ्य देखभाल, आपातकालीन सहायता, दैनिक सुविधाओं और मनोरंजन का ध्यान रखते हैं। उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब हमें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। घर परिवार में बुजुर्गों को ये सहारा सहज मिल जाता है, जिससे उनकी जिंदगी आसान हो जाती है। सरकार भी उनकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कई कोशिशें करती रहती है। कई योजनाओं और सरकारी सुविधाओं में उन्हें खास तवज्जो या छूट दी जाती है।
1: बिल्कुल। और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अपनाना भी चाहिए। जो नई तकनीक आ रही है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, और जो कि जैसे कि हमें पेंशन की जानकारी प्राप्त करनी है या हमें कोई दवा मंगानी है, तो उसके उसके लिए हम, अगर कोई घर में उस समय नहीं है, तो हम इस तरह से अपने वेब के साइट के जरिए या फिर किसी ऐप के जरिए इस तरह से हम वो ले सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं और वो दवा मंगा भी सकते हैं आराम से।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, नागरिकों को या फिर ऐसे सीनियर को मासिक पेंशन मुहैया कराती है जिसके पास आय का कोई साधन नहीं या जिनका हालचाल लेने वाला इस संसार में कोई नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में भी छूट मिलती है। साथ ही कई बीमा कंपनियां भी ऐसे लोगों के लिए विशेष मेडिकल प्लान लेकर आ रही हैं। कई बीमा कंपनियों ने भी जीवन बीमा की उम्र को बढ़ाकर 70 या 75 वर्ष कर दिया है, ताकि उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें वित्तीय असुरक्षा का आभास न हो सके।
1: बिल्कुल। बहुत जरूरी भी है इस चीज के लिए कि वो अपने अंदर सुरक्षित महसूस करें। तो इन बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं उन पे जाकर या बहुत सारी एप्लीकेशन है उनकी सहायता से, और या इस तरीके की अब फोन भी चल गए हैं जिनका उपयोग करके वो अच्छे तरीके से अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के सामान भी मंगा सकते हैं। और मंजी, इसी के साथ समय हो गया एक छोटे से अंतराल का।

0: हाँ सुमंजरी, इतना अच्छा प्यारा सा गाना सुनने के बाद अब हम कौन सी बात करने जा रहे
1: देखो आरती, ये बताओ ना कि तुमने
0: हैं?
1: कभी आग में घी डालने का काम किया है क्या?
0: मैंने कभी नहीं किया है आग में घी डालने का काम। हाँ, उस घी को निकालने का काम किया है, यानी कि लड़ाई जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको सुलझाने का काम किया है।
1: ये तो बहुत अच्छा तुमने
0: जी
1: काम किया, क्योंकि जब ऐसे समय में झगड़ा हो रहा है तो आप अगर उसमें सही बीच बचाव कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी हमें ध्यान से करना पड़ता है आरती। नहीं मालूम पड़ा हम
0: ये
1: बचाव
0: ना
1: में
0: हो,
1: कर रहे,
0: हाँ
1: खुद ही
0: बिल्कुल,
1: फंस गए उस चक्कर में।
0: ये ना हो कि बात

0: पहले झगड़े हो रही थी, आपस में बात चल रही थी, बात वाला झगड़ा हो रहा था, और हमारे जाने के बाद वो लात घूंसे पे आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
1: जी, और देखो एक साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना मुहावरा, पहले से भड़के हुए झगड़े या गुस्से को और भड़का देना, स्थिति को और खराब कर देना, इसका उन्होंने मतलब लिखा है।
0: जी
1: और मुहावरे की दुनिया में ले जा रहे हो, ये अच्छी बात है। एक लिखते हैं कि वैसे तो कोई भी शुभ कार्य के लिए किए जा रहे यज्ञ में आहुति देते हुए घी डालना जरूरी होता है, घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ इस मुहावरे के मुताबिक आग में घी डालना मतलब किसी के गुस्से या विवाद को और अधिक भड़काने, यानी किसी खराब परिस्थिति को और भी खराब यानी अशुभ करना होता है, बड़ी बुरी बात है। अंग्रेजी में से एड फ्यूल टू द फायर बोला जाता है। बहुत
0: जी,
1: अच्छी सी बात लिखी इन्होंने।
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात हुई नहीं, बस इसी तरह के आग में घी डालने शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना या फिर लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आग में घी डालना एक प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा है। इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और भी अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद तथा तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोग बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बातें कहे कि जिससे झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, ना कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और बढ़ा दे। इसीलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए, इन्होंने लिखा है आरती।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि इसका अर्थ है किसी पहले से बिगड़ी हुई स्थिति को और अधिक बिगाड़ देना या क्रोध, विवाद या तनाव को बढ़ावा देना। जब दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा हो और कोई तीसरा व्यक्ति ऐसी बात कहे कि झगड़ा और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। और ये मुहावरा हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में शांति और समझदारी से काम लेना चाहिए, न कि ऐसी बातें करनी चाहिए जो समस्या को और भी बढ़ा दें। इसलिए हमें हमेशा मेल मिलाप और सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
1: और आरती, कभी कई बार ऐसा होता है ना कि देखो भाई बहनों के बीच में छोटी छोटी सी बातों पर कहा सुनी हो गई, और उसको सुनकर के तू आपका दो एक तो भाई बहन में हो ही रहा है झगड़ा, लेकिन दूसरा आकर भाई आपके बीच में लग गया कि नहीं इसने तो ऐसा कहा था, ये गलत कह रही थी, तुम्हारे बारे में ऐसा कह रही थी। तो यानी आग में घी डालने का काम घर में भाई बहन के बीच में अक्सर झगड़ों में ऐसा देखा जाता है, और जब दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो तीसरा भी आकर उसमें आग में घी डालने का।
0: बिल्कुल, पड़ोसी हो चाहे भाई बहन हो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अक्सर ऐसा होता है कि झगड़ा किसी न किसी छोटी बात पर भी शुरू होता है, लेकिन अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है तो वो झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बढ़ के विकराल रूप धारण कर लेता है।
1: और आपस में जो इसके बाद झगड़े के बाद जो मन के भेद है वो दूरियां बढ़ जाती है, मतभेद हो जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाला होता है, क्योंकि बाद में जब हम सामने वालों को देखते हैं तो याद आता है ना कितने अच्छे संबंध थे हमारे, इसके साथ आज ऐसा हो गया, तो वो बड़ा दुख देने वाला है। और मान लीजिए कि दो मित्र किसी बात पर आपस में बहस कर रहे हैं, तभी एक तीसरा व्यक्ति आकर ऐसी बातें करने लगे जिससे दोनों का गुस्सा और बढ़ जाए, तो भाई ऐसी स्थिति में तो यही कहा जाएगा ना कि आग में घी डालने का काम
0: बिल्कुल,
1: कर रहे हो, है
0: बल्कि
1: ना?
0: हमें उस स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि उनको समझाना चाहिए कि भाई जब क्रोध आपका शांत हो जाए तब आप आपस में बात करिए, जब तक क्रोध में रहते हैं ना हम तब तक हमें समझ में नहीं आता हम क्या सही कर रहे हैं या गलत। तो अब इसी बात को थोड़ा सा यहाँ पे विराम देते हुए एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। अगर नजरों से नजर

0: तो देखो भाई, इतने गीत के बाद हम लोग फिर अपने उसी बात पर आ गए कि
1: हाँ
0: भाई आग में घी डालने
1: घी
0: वाली
1: डालना,
0: बात पे।
1: तो क्या कह रहे हैं श्वेता?
0: हमारे साथी कह रहे हैं कि जब आग में घी डाला जाता है तो आग और तेजी से धधक उठती है। इसी प्रकार जब दो लोगों के बीच बहस या लड़ाई चल रही हो और कोई तीसरा व्यक्ति बीच में ऐसी बातें या चुगली कर दे जिससे उनका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ जाए, तो उसे आग में घी डालना कहते हैं। अक्सर ये लड़ाई झगड़ा क्लेश बढ़ाने वाले शब्दों पर कहा जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ बात नहीं बस इसी तरह के आग में घी डालने की बात शुरू कर देते हैं, जो परिवार, समाज और देश सभी के लिए घातक होता है। बोलचाल में लोग कहते हैं लगाना बुझाना, लड़ाई को आगे बढ़ाना।
1: बिल्कुल, ये हमें आगे बढ़ाना नहीं चाहिए इस लड़ाई को, क्योंकि लड़ाई जितनी ज्यादा शांत रहे उतना ही अच्छा, चाहे वो देशों के बीच हो, चाहे वो लोगों के बीच हो, घरों के बीच हो, लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए, शांति से काम लेना चाहिए। क्योंकि जिस समय हमें गुस्सा है, बस थोड़ी देर हम शांत रहें, थोड़ी देर काउंट कर लें अपने मन में, 1 2 3 4, चाहे गुस्से में ही करें, वो धीरे धीरे वो गुस्सा शांत होने लगता है।
0: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं आरती, ये आग आज में आइए लिखते हैं कि आग में घी डालना इस मुहावरे का अर्थ है बिगड़ी हुई बात को बहुत ज्यादा बिगाड़ देना। ये हमारे जीवन में बहुत लोग करते हैं, तो कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा हमारे जीवन में सार्थक होती है। और मेरे जीवन में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, तो मेरा अनुभव इस मुहावरे के साथ बहुत ज्यादा है।
1: बिल्कुल, कभी कभी कोई छोटी सी बात होती है ना, लेकिन कोई आके जब वो चीज को भड़का देता है और हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास भी कर लेते हैं, है ना, और वो जो जो इंसान हमसे बात कह रहा है वही दूसरे से जाके कहता है, वो अलग तरीके से कहता है, नमक मिर्च लगा के, तो वो चीजें ना आग में घी डालने का काम करती हैं। और वो जो मन मुटाव है, जो मन भेद है ना, वो मतभेद, वो सारे के सारे मिलके उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं।
0: तो यानी कहना चाहिए कि आग में घी डालने का काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बस जब हम लोग जैसे पढ़ाई के समय ये मुहावरे हमारे पास बहुत सारे आते थे कक्षा में जब हम पढ़ते थे, तो वो उनका अर्थ वहां पर वहीं तक सीमित
1: रखे, समझाने जी
0: करें,
1: ये मुहावरे जो होते थे समझाने के लिए होते थे। तो चलिए अब हम एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।
0: समय हो चला है
1: एक अंतराल का।

0: हाँ तो मंजरी,
1: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी सखियों का और श्रोता भाइयों के साथ साथ आरती तुम्हारा भी स्वागत है
0: बिल्कुल
1: ना?
0: हम सुन रहे हैं क्या सखी सहेली
1: जी।

0: तो एक प्रोमो सुन लेते हैं।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे

0: मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाँ तो मंजरी, अब क्या करें?
3: अब बताओ तुम क्या करते?
2: एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

0: तो आरती सखी विशेष के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं अश्विनी अशोकन, सह संस्थापक मैड स्ट्रीट डेन की जो है। अश्विनी अशोकन भारतीय तकनीक जगत की प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है, जिन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उसे आम जीवन और व्यवसायों के लिए उपयोगी बनाने का बड़ा काम अपने हाथ में लिया।
1: जी बिल्कुल, और अश्विनी अशोकन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कला और विज्ञान जब एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं तब कुछ नया और बेहतर आविष्कार आकार लेता है। चेन्नई की रहने वाली अश्विनी अशोकन का जन्म प्रोफेसर और कंप्यूटर वैज्ञानिकों के परिवार में हुआ था।
0: 12वीं कक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने विजुअल कम्युनिकेशन में दाखिला लिया। उन्होंने दृश्य संचार और इंटरेक्शन डिजाइन का अध्ययन किया तथा बाद में अमेरिका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
1: बिल्कुल, और एक प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना और संगीतकार के रूप में उन्होंने 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच देश भर में प्रदर्शन किया। दिलचस्प बात यह है कि विश्वविद्यालय में उनका शोध प्रबंध गति व्याकरण पर था,
0: जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि नृत्य के सांस्कृतिक रूप में हमें ये सोचने में कैसे मदद कर सकते हैं कि हम अपने रोबोट और अन्य डिजिटल एजेंटों में गति को कैसे डिजाइन करें। उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने लगभग एक दशक तक एक प्रसिद्ध कंपनी में काम किया।
1: बिल्कुल, उन्होंने वहां पर मोबाइल नवाचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीकों पर काम किया। इसी दौरान उनके मन में ये विचार जन्मा कि AI को केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं बल्कि मानव जीवन को बेहतर बनाने का साधन बनना चाहिए।
0: जी, और अश्विनी कहती हैं, मैं समझती हूँ कि न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं। मैं मशीन लर्निंग के मूल सिद्धांतों को समझती हूँ। मुझे तकनीक के निर्माण की पर्याप्त जानकारी है और सबसे बढ़कर मैं अपने मूल कौशल की को भली भांति जानती हूँ, जो दुनिया भर के लोगों के लिए सार्थक तरीके से प्रौद्योगिकी को समझना और उसका उपयोग करना है।
1: बिल्कुल, वर्ष 2013 में उन्होंने अपने पति और न्यूरो साइंटिस्ट आनंद चंद्र शेखरन के साथ मैड स्ट्रीट डेन की स्थापना की। कंपनी का उद्देश्य ऐसी AI तकनीक विकसित करना था जो मशीनों को देखने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान करे। बाद में कंपनी ने VUE.AI जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए जिन्होंने खुदरा व्यापार, ई कॉमर्स, स्वास्थ्य और वित्त जैसे क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोली। अश्विनी केवल एक सफल उद्यमी ही नहीं बल्कि कार्यस्थलों पर लैंगिक समानता की प्रबल समर्थक भी हैं।
0: उन्होंने अपनी कंपनी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और तकनीकी क्षेत्र में उनके लिए अवसर सृजित करने पर विशेष ध्यान दिया। अपने दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार के कारण अश्विनी अशोकन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है। आरती, जब भी हम ऐसे सखी सहेली के में लेके आते हैं, ऐसे विषय सखी विशेष के बारे में बात करते हैं, तो उनकी जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने कार्य किया है, तो उसको सुनकर समझकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक लौ जगती है कि हम भी कुछ ऐसा करें कि एक हम ऐसी जगह पे अपनी पहचान बना सके।
1: बिल्कुल, और तकनीकी के क्षेत्र में उन्होंने इतना काम किया AI के लिए, जहां पर आजकल मतलब सभी कर रहे हैं, लेकिन पहले इतनी ज्यादा लड़कियां नहीं आगे आ रही थी, लेकिन अब बहुत संख्या में लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हुए तो बहुत समय हो गया, हम कुछ गीत सुन लें।
0: जी,

0: तो देखो भाई, हमारे गाने में भी अंगना शब्द आ गया, तो आज हम लोग इसी पर तो बातें करने वाली
1: बिल्कुल
0: है कि
1: आंगन की ही बातें करनी है हमको।
0: जी देखो, पुराने समय में घरों में जो आंगन, एक केवल खुली जगह नहीं होते थे आरती, बल्कि वो घर की धड़कन हुआ करते थे। आंगन में ही सब कुछ काम हम लोग किया करते थे। घर में दादी नानी मौसी चाची सभी लोग आंगन में बैठ कर ही, चारपैया होती थी, नहीं तो पीढ़े पर बैठते थे, नहीं तो चटाई डाल के बैठते थे, और वहीं पे सब्जी काटने से लेकर धोना सुखाना पछोरना गेहूं चकिया धरना, ये सारे जो काम
1: कुछ
0: होते थे सब वहीं होते थे। और जैसे ही सीजन आता था होली आने वाली, तो उसके पहले जो दिन महीने होते थे उसमें बड़ी, पापड़, कचरी, अचार, ये सब चीजें डाली जाती थी, और उसके लिए पूरा घर जुट जाता था।
1: बिल्कुल,
0: यानी
1: हर मौसम समझ लीजिए
0: जी,
1: हमारे आंगन में उतरता था।
0: यानी कि आंगन में हम बहुत सारी जिंदगी एक साथ जीते थे। और जो उत्सव त्योहार होते थे, यो याद होगा शादी के पहले जब मंडप वगैरह लगता है, तो
1: सब
0: पंगत में
1: आंगन
0: जो खाना खाया
1: बिल्कुल।
0: जाता था वो भी चटाई डाल करके, बड़ी लंबी सी पत्ती सी होती थी, उसकी उस पर बैठकर लोग खाना खाते थे, तो उसका भी एक आंगन का एक अलग
1: बिल्कुल।
0: मजा है। और
1: और जी
0: गर्मियों के दिन में, हाँ तुम क्या
1: हाँ, मैं
0: कहने
1: ही कह रही थी कि जैसे अभी बारिश के दिन चल
0: वाली
1: रहे हैं, अब शुरू कहीं कहीं तो हो गई है और कहीं कहीं धीरे धीरे चल रही है बारिश, तो बारिशों का जो जो असली मजा होता था ना, वो आंगन में आता था। क्योंकि आंगन में जब पानी भर जाता था, बूंदे गिरती थी, छप छप छप
0: क्या
1: छप,
0: बात
1: इतना
0: है।
1: मजे आते थे कि
0: और तुम्हें
1: मतलब।
0: याद है ना, वो जो नाव कागज की बना के हम लोग आंगन में जो पानी भरता था,
1: जी
0: और जब निकासी की जो जगह होती ना, उस जगह भी हम लोग कपड़ा ठूस दिया करते थे
1: बिल्कुल।
0: कि पानी भर
1: ये
0: जाए।
1: मुझे मुझे लगता है कि ना ये जो यादें हैं वो सिर्फ हम लोग की नहीं, सभी की होंगी।
0: सभी की
1: सभी
0: है
1: के घर आंगन, जिनके जिनके घरों में आंगन, बल्कि अधिकतर लोगों के आंगन ही होता था घर में जो भी थे, तो वो आंगन का अपना अच्छे तरीके से उसका उपयोग भी करते थे। वहाँ पे सब काम किस तरह से कैसे क्या करना है वो चीज़ें भी करना, वहाँ पे इंजॉय किस तरह से हमें अपने आनंद उठाना है उस चीज़ का,
0: बिल्कुल।
1: वो भी करते थे।
0: और देखो ना, हमारे साथी क्या लिखते हैं कि हमारे पुराने घर में लखनऊ में एक आंगन हुआ करता था, उसके ऊपर लोहे का जाल होता था, और उस पर हम लोग झूला डलवा लेते थे अपने पापा लोग से, और सब भाई बहन मिलकर झूला झूलते थे। आसपास की सहेलियां भी इकट्ठी होकर झूलते थे, बड़ा मजा आता था। उसी में छोटे बच्चे वही नहाते धोते, नहाना धोना, कपड़े धोना, मम्मी लोग का पकवान बनाना, दादी माँ के साथ, सब कुछ इस आंगन में ही हुआ करता था। और
1: बिल्कुल।
0: आंगन में याद है जब कपड़े में, साड़ियों में मार देने का एक था, तो चावल के पानी से मार दिया, मार निकाल करके उसको साड़ियों पे मार देते, तो जो खींचना है सुखाना है साड़ी को, वो उसी आंगन में लंबी दूरी तक खड़े होकर
1: बिल्कुल।
0: के करते थे, तो बहुत मजा आता था
1: और
0: उनकी
1: रात
0: यादों में।
1: में जब सोने के लिए लोग जैसे कि अपनी देते अपनी यादें जब करते हैं, साझा करते हैं, तो लिखते हैं कि हम भाई रात में ऐसे सोते थे कि सब पूरा आंगन में पूरी चारपाइयां बिछा लेते थे, तो बहुत से लोगों की यादें जुड़ी होती हैं आंगन से।
0: बिल्कुल। और

0: मच्छरदानी लगा के और पंखा लगा करके सोया जाता था, और जब पंखा नहीं था तो हाथ वाले पंखे से बैना जिसे कहते हैं वो डुला करके एक दूसरे को करते थे हवा, वो भी बहुत यादगार है।
1: बिल्कुल,
0: और हमारे साथी क्या
1: बिल्कुल, हमारे एक साथी लिखते हैं कि बच्चे बड़ों की नजर में सुरक्षित बचपन होता था आंगन में, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छुपन छुपाई खेलते थे, और आज के फ्लैट्स की तरह बच्चे कमरों में कैद नहीं थे बल्कि खुले आसमान के नीचे दौड़ते थे। प्राकृतिक एयर कंडीशनर था वो, समझ लीजिए, रोशनी थी, हवा थी, आंगन पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा का सबसे बड़ा जरिया था। और गर्मियों की रातों में आंगन में पानी का छिड़काव करके चारपाई बिछा दी जाती थी जो प्राकृतिक ठंडक देती थी।
0: क्या बात है। और हमारे साथी देखो और बढ़िया सी यादें इन्होंने साझा करी है कि आंगन हर घर का सिर्फ खाली हिस्सा नहीं होता था, वो उस घर की सांस है, धड़कन है। आंगन वो जगह होता है जहां बचपन में दादी नानी से कहानियां सुनी जाती थी, जहां माँ ने लकड़ी के चूल्हे पर दाल में बघार लगाया तो उसकी खुशबू पूरे घर में महक जाया करती थी, जहां बाबूजी खाट पर बैठकर अखबार पढ़ते रेडियो सुनते थे। आंगन मतलब बिना किराए का अपना आसमान, जहां सुबह की पहली किरण, बारिश की पहली बूंद और चांद की चांदनी पर अपनी ही लगती थी। मतलब सोच लो कितना सुंदर था वो समय, और आज भी जिनके आंगन वो इसका मजा लेते हैं। सुबह तुलसी पर जल अर्पण से लेकर संध्या आरती तक घर की स्त्रियों की दिनचर्या होती थी, इसी आंगन में गिरे और संभले भी, यहीं से पारिवारिक रिश्तों की पहचान हुई। घर के आंगन ऐसी बहुत सी स्मृतियां होती है जो जीवन भर साथ रहती है। उनमें सौभाग्यशाली में से मैं हूँ कि मेरे घर में तीन आंगन शुरू से ही, और उन्हीं में मेरा जन्म से लेकर बचपन बड़ा हुआ, हमारी चार बहनों और मेरा और मेरे बेटे का के विवाह मंडप भी बने, और आज भी उन्हीं आंगनों में शेष जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है। बहुत सारी यादें साझा करिए। और आंगन में जब ये मांगलिक उत्सव होते थे, जो ढोलक पर जो गाने बजते थे, सारे मिलकर गाती थी, नाचते थे, बच्चे भी नाचते थे, तो बहू बेटे सब क्या है, मतलब एक समा बन जाता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी और अपने सुख दुख की बातें कहती थी, यहीं बैठकर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी, और अचार डालना, पापड़ सुखाना और गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं पर हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। मतलब काम कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, पता ही नहीं चलता था इतने सारे लोगों के बीच में।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे, आंगन में बैठकर महिलाएं घर के काम करती थी, बुजुर्ग आराम करते और बच्चे खेलते थे, ये परिवार को एकजुट रखने का मुख्य स्थान था। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व, पूजा पाठ, त्योहारों के आयोजन, शादियों की रस्में और मेहमानों का स्वागत अक्सर आंगन में ही किया जाता था। घर के बीच में तुलसी का चौरा और छोटे पौधे आंगन की शोभा बढ़ाते थे, और जब दिवाली का उत्सव आता था तो इसी तुलसी के चौवारे के चारों ओर बहुत सारी रंगोली बनाई जाती थी, दिए जलाए जाते थे मिट्टी के, और घर भी वहीं पे हम लोग बनाया करते थे, याद होगा तुम्हें, कि ईंटों से घर बनाते थे, खेलने के लिए गुड्डे गुड़िया भी रखे जाते थे। यानी आंगन हम लोगों का मनोरंजन का एक बहुत बड़ा स्थल होता था, हमें कहीं ग्राउंड पे जाने की जरूरत नहीं, बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर में आंगन है तो बहू बेटियां सब वहीं पर अपने दिन अच्छे से बिता लेती थी।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि हमारे घर में आंगन है, इस आंगन में हमारे बच्चे खेलकर बड़े हुए हैं, अब बच्चों के बच्चे खेल रहे हैं, झूला है, पेड़ पौधे के कारण तितलियां आती हैं और बच्चे उन तितलियों को देखते हैं और पीछे पीछे जाते हैं, छुई मुई का पौधा है, उसके साथ बच्चे अपना प्यारा सा वक्त गुजारते हैं, आंगन में नीम का और बेल के बड़े पेड़ हैं, घर में ताजी हवा और प्राकृतिक रोशनी आती है जिससे वातावरण स्वच्छ और स्वस्थ रहता है। ये परिवार के सदस्यों के मिलने जुलने, बच्चों के खेलने और त्योहारों और पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन का मुख्य स्थान है। आंगन में पेड़ पौधे लगाने से घर का तापमान भी संतुलित रहता था। आंगन घर की सुंदरता, स्वास्थ्य और पारिवारिक एकता का महत्वपूर्ण केंद्र है।
0: क्या बात है, कितनी सारी यादें सबकी ताजा हो गई है। और आंगन में झूला भी तो होता ना आरती, जिसमें गर्मियों में अपना सारा दोपहर उसी में पेड़ के नीचे झूला करते थे। और देखो एक हमारे साथी संदेश लिखते हैं कि आजकल वो घर कहाँ जहाँ आंगन हुआ करते थे, अब तो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टावर बन रहे हैं, वो भी बिना आंगन के। पुराने समय में यानी हमारे जमाने में भी हर घर में आंगन हुआ करते थे, इसमें कुदरती वेंटिलेशन नियम लागू पड़ता है, जैसे कि घर में हवा, प्राकृतिक रोशनी के साथ शुद्ध हवा का संचार होता रहता था, साथ साथ में परिवार जुड़ाव भी बढ़ता है जो अति आवश्यक है। परिवार के साथ साथ बाहरी वातावरण को भीतरी कमरों से जोड़ता है, जिससे घर एक मंदिर जैसा और शांत और ऊर्जावान और आरामदायक बना रहता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि घर में आंगन का होना सिर्फ जगह की उपलब्धता नहीं है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव है, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी का मुख्य माध्यम है। ये घर का खुला केंद्र बिंदु होता था जहां धूप सेकने, गर्मियों में सोने, बच्चों के खेलने और महिलाओं के साथ मिलकर खाना पकाने जैसी गतिविधियां आसानी से होती थी।

0: और देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि पड़ोसियों का मिलन स्थल, दोपहर ढलते ही आस पड़ोस की महिलाएं आंगन में जुट जाती थी, सुख दुख की बातें यहीं बैठ कर सुख दुख बांटे जाते थे और गपशप होती थी। सामूहिक काम, अचार डालना, पापड़ सुखाना, गेहूं साफ करना जैसे काम यहीं हंसते खेलते पूरे हो जाते थे। और आंगन में कहीं कहीं पर हमने देखा है कि वो लोग चूल्हा भी बना लेते थे
1: बिल्कुल
0: और शाम का खाना तो वहीं पर बनता था, किसी किसी किसी के यहाँ के दिन में भी बनता था। और बहुत मतलब अच्छा समय वहीं पर अच्छा समय बीतता था। और वहीं पर हम लोग पढ़ाई भी तो कितनी किया करते थे,
1: बिल्कुल,
0: शाम को बैठकर लिखाई
1: लोगों
0: पढ़ाई
1: के
0: कर रहे
1: समझ
0: हैं।
1: लीजिए हर काम का केंद्र बिंदु जो था वो आंगन ही था,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि वो प्राकृतिक, एक तो हवा उसमें आती है आपको, है ना, और दूसरी चीज़ है वहां पे आप बैठ के अपना कोई भी, जब पूरा परिवार एक साथ बैठता है ना तो आपको कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे से अपना समय बिताते
0: और वो
1: हैं।
0: याद है जब चावल बीनते थे तो गोरैया आ गई तो उनको चावल उसी थाली में से निकाल के दाने डाल दिए, वो
1: बिल्कुल
0: चुग रही है तो उनको भी फुदकता हुआ चूचू करता हुआ देख रहे हैं तो बड़ा मजा आता था। यानी आंगन में कई बार बहुत सारे ऐसे पक्षी भी आ जाते थे, उतर आते थे तो उनको दाना डालने में बहुत मजा आता था।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि आंगन के बीचों बीच तुलसी का पौधा होता था जहाँ सुबह शाम दिया जलाया जाता था, और घर के बुजुर्ग दिन भर आंगन में बैठकर अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाते थे, और आंगन में बैठकर वो घर के मुख्य दरवाजे और आने जाने वाले लोगों पर आसानी से नजर भी रख पाते थे।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि सुरक्षित बचपन, बच्चे बड़ों की नजरों के सामने आंगन में कंचे गिट्टे या छप्पन छपाई खेलते थे और इस तरह के बहुत सारे गेम भी हुआ करते थे। आइस पाइस कह लो या पकड़म पकड़ाई कह लो या रस्सी कूदना है, कबड्डी है, ये सब भी आंगन में खूब हुआ करते थे। तो उसका
1: बिल्कुल।
0: भी एक अपना मजा है जो आज भी
1: और
0: यादों में बना हुआ है,
1: हर मौसम
0: हर
1: का, चाहे
0: मौसम
1: गर्मी
0: का।
1: हो उसमें अलग तरीके से रहना, मजे करना, और चाहे बरसात हो, है ना, सर्दी के मौसम में धूप जो सेकते थे ना,
0: अरे वाह
1: वो जो
0: क्या
1: सूरज की
0: बात है।
1: रोशनी आती थी ना, सबसे पहले आंगन में जो धूप उतरती थी तो सबका यह होता था कि जल्दी जल्दी काम कर लो, बस आंगन में धूप सेकनी है।
0: और जहां जहां धूप जा रही है ना
1: जी
0: वहां वहां पे कुर्सियां भी जा रही, चारपाई भी
1: बिल्कुल
0: जा रही है और मूंगफली भी खाते थे वहां पर बैठ कर आंगन में। ये बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: टाइम पास था कि
1: बिल्कुल
0: उसके साथ जो तो नमक की पुड़िया याद है ना,
1: जी।
0: यानी पूरा मजा आता था। अमरूद भी आ गए सीजन में तो वो भी काट के, सब मतलब
1: तो
0: खान पान से
1: मतलब
0: लेकर
1: जो
0: हर
1: भी
0: काम
1: चीजें
0: आंगन
1: आपको,
0: में।
1: जो भी काम करना है ना, सब लोग जुट के बस चलो आंगन में बैठे करना है ना, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खाना पीना हो, चाहे आनंद उठाना हो किसी चीज
0: तो फिर
1: का।
0: आनंद उठाते हैं गीत का।
1: बिल्कुल, एक गीत का आनंद उठाते हैं।

0: तो भाई देखो हम लोगों ने कितना सारा वक्त इस आंगन में गुजार लिया,
1: सागर में हमारा पूरा वक्त पूरा हुआ अभी।
0: अब हमें चलना चाहिए, तो सभी को मंजरी वर्मा
1: और आतिश श्रीवास्तव का
0: नमस्कार।

0: एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से न बहाया कर। शकील आजमी जो कहते हैं, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15।
1: आना आ भी जाना इंतजार है तेरी।
0: फिल्म मुल्क।
2: सब सखियों का पिया प्यारा, सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़।
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर अंदर हम सा।
0: जाने माने शायर

0: वकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का पहला भाग।
1: बेखबर दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है, उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है, घटाएं उठती हैं बरसात होने लगती है, जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
1: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो शायरी हमने श्रोताओं को सुनाई आपकी ही कलम से निकली थी, तो ये शायरी की लौ कैसे जली आपके भीतर, कब जली?
2: उसके बड़े कारण, बड़े असबाब हैं उसके। असल में क्या होता है कि शायर पैदा होता है
1: जी,
2: बनता नहीं है, बनाया नहीं जाता, सिखाया नहीं जाता, इसीलिए शायर को गॉड गिफ्टेड कहते हैं
1: जी।
2: खुदादाद सलाहियत का नाम है शायरी। तो जब खुदा किसी को शायर बनाना चाहता है और बड़ा शायर बनाना चाहता है तो उसको बहुत सारे प्रोसेस से गुजारता है। किसी की माँ छीन लेता है,
1: ओहो,
2: किसी से बाप छीन लेता है, किसी से महबूबा छीन लेता है, किसी को बेघर करा देता है, लेकिन बहुत कुछ लेके उससे बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। मेरे साथ भी इस तरह के हादसात हुए, घटनाएं हुई। बहुत छोटा था, बचपन में मेरी माँ का इंतकाल हो गया, बाप ने दूसरी शादी कर ली और फिर मेरी परवरिश मेरी नानी ने की, मेरे मामू ने, मेरे नाना ने की, खालाओं ने, मामी ने, मामानी ने, तो मैं ननिहाल में परवरिश पाया। मैं ननिहाली गांव और ददियाली गांव दोनों जगह पे हमारे हम जमींदार थे, खेती बाड़ी का काम था। तो ये सब जो घटनाएं हुई ये सब मेरे अंदर कहीं ना कहीं ये जमा होती गई
1: जी।
2: और फिर एक छोटी उम्र में इश्क भी हुआ, वो भी नाकाम हुआ। तो ये सारे जो सदमात थे, ये जो सारे दुख थे, जो सारे गम थे, महसूसात थे, है ना
1: जी,
2: ये सब जो एहसास थे ये सब जमा होते गए और एक दिन इन्हीं दुखों की कोख से मेरे अंदर शायर पैदा हुआ
1: जी।
2: ये 1984 का जमाना था।
1: कितने बड़े थे आप?
2: मैं 71 में पैदा हुआ।
1: ओह, तब तो बहुत छोटा।
2: हाँ हाँ, छोटा ही था, कच्ची उम्र थी। तो मैं उस जमाने में गुजरात के शहर बड़ौदा में था, 1984 लास्ट या 85 शुरू का जमाना था। तो हम काम करते थे, कई कारीगर मिलके काम करते थे, तो उस दिन भी काम कर रहा था मैं, और मुझे लगा कि मैं जैसे बीमार हूँ, बुखार है, तो मैंने काम बंद किया और रूम पे चला गया। लेकिन मैं बीमार नहीं था, मुझे बुखार भी नहीं था, बस अंदर से ऐसा फील हो रहा था, वो अंदर शायर पैदा हो रहा था।
1: काम क्या कर रहे थे?
2: मैं सुपारी काटने का काम कर रहा था उस जमाने में।
1: अच्छा।
2: जो पान में सुपारी खाई
1: जी,
2: जाती
1: जी,
2: है
1: जी।
2: वो बड़े पैमाने पे बड़े सरोते से वो काटी जाती है और कारखाने होते हैं बड़े, और गुजरात में इसका बहुत काम है। सबसे ज़्यादा सुपारी मैं समझता हूँ गुजरात में ही खाई जाती है। तो मैं रूम पे गया और लेट गया, और मेरी आदत है चादर गर्मी में भी
1: जी, जी।
2: थोड़ा सा ऊपर डाल लेता हूँ, तो चादर डाल ली मैंने और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, और आज मैं रेडियो स्टेशन पे हूँ, और समझिए कि इस रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में
1: जी, जी, जी।
2: या उसको समझने में या उसके महसूस करने में।
1: हाँ।
2: तो हुआ ये कि मैं ऐसे ही

0: कैजुअली मतलब बस
1: रेडियो का स्विच ऑन कर
0: हाँ
1: दिया।
0: कर दिया ऑन, और जहाँ पे वो जिस स्टेशन पे काटा था मैंने उसको कुछ घुमाया वुमाया भी नहीं, सरकाया भी नहीं, वहीं से एक गजल
1: बज रही
0: बज
1: थी,
0: रही थी, और वो गजल थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती हैं,
1: क्या बात।
0: क्यों हुआ मैं दीवाना बेड़ियां समझती हैं, बाम से उतरती हैं जब हसीन दोशीजा, जिस्म की नज़ाकत को सीढ़ियां समझती हैं। ये गजल कोई गा रहा था, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हो गई,
1: ओ
0: और सेम मीटर में, है ना। अब वो गजल तो मैंने जाये कर दी, मुझे याद नहीं है, उसका एक शेर जिसमें तखल्लुस होता है जिसे मकता कहते हैं,
1: शुरू हो गई, मतलब आप कहने लगे।
0: मैं हाँ
1: अच्छा, उस गजल के साथ साथ आप कहने
0: मेरे
1: लगे।
0: अंदर का शायर जो
1: जी
0: है
1: जी
0: मुतहर्रिक हो गया,
1: हाँ
0: एक्टिव हो गया उसी गजल के साथ।
1: जी। और ये हो सकता है कि उस समय आप विविध भारती सुन रहे हो, विविध भारती से रंग तरंग प्रोग्राम होता था,
0: अच्छा
1: तो वहां पर गजलों का प्रोग्राम हुआ करता
0: हाँ
1: था।
0: तो वो गजल का ही था। अब मुझे नहीं मालूम कि वो कौन सा स्टेशन था, मैं बड़ौदा शहर में था गुजरात में, और वो गजल शुरू हो गई जो मैंने अभी बताई, और उसी के साथ साथ मेरी गजल की तख्लीक शुरू हुई। पहली गजल मैंने उसी दिन कही, और उसके बाद से फिर गजलें कहने लगा। मेरे जो दोस्त थे उन सबको लगता था ये तो पागल हो जाएगा, तो मेरी डायरी में बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई होती थी
1: जी।
0: उनको वो चुरा लेते थे, हटा देते थे, लेकिन आशिकी और शायरी इस
1: जी
0: तरह से जो है वो मिटाई नहीं जाती, ख़त्म नहीं होती, वो एक जुनून होता है और जो चलता रहता है। तो
1: तो वो गजल याद है? हाँ
0: गज़ल तो याद नहीं है क्योंकि मैंने वो ज़ाये कर दी थी। उसका एक शेर याद है मुझे जिसमें
1: जी।
0: तखल्लुस होता है, शायर का नाम होता है, गज़ल का आखिरी शेर होता है, वो एक शेर याद है। खून से है क्यों भीगा
1: खून
0: जिस्म
1: से
0: ये शकील अपना।
1: क्या बात है।
0: अच्छा मीटर सेम है, जो उस गज़ल का मीटर था वही इसका भी मीटर है, बहर वही है। खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूं पत्थरों को है मालूम।
1: क्या बात है,
0: था
1: वाह वाह, क्या बात है। तो
0: बिल्कुल
1: मतलब रेडियो ने आपकी गजलों की दुनिया की शुरुआत की, तो मतलब कह सकते हैं कि पहली तालीम रेडियो से ली आपने शायरी की।
0: हाँ, शुरुआत तो वहीं से हुई, बल्कि वो रेडियो स्टेशन गवाह है, उस मेरी शायरी के पहले दिन का गवाह है।
1: क्या बात
0: जी हाँ
1: है शकील साहब, जब रेडियो की बात चलती है तो बगैर गीतों के रेडियो की बात अधूरी सी लगती है, तो यहाँ पर कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं, आपकी पसंद का कोई गाना, आपका लिखा हुआ या फिर कोई और गाना भी सुन सकते हैं। वैसे आपकी लंबी फेहरिस्त है
0: जी
1: गानों
0: हाँ
1: की,
0: जी हाँ जी
1: उसकी
0: हाँ
1: चर्चा भी हम आगे करेंगे।
0: हाँ वो सुना दें आप। मदहोशी का गीत है, अय खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है,
1: क्या बात है,
0: गर बनाई तो मोहब्बत में जुदाई क्यों है।
1: वाह वाह वाह। तो सुनते हैं मदहोशी फिल्म का ये गाना।

0: शकील साहब, इस गाने के बाद यूं तो हम फिल्मों में आपकी एंट्री के बारे में आगे बात करेंगे, यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि ये दिल टूटने की बात भी है गाने में, और ये अमूमन कहा जाता है कि दिल टूटने पर शायरी की शुरुआत होती है, और आपने जिक्र भी किया कि माँ नहीं रही, अम्मी नहीं रही, और इश्क का भी जिक्र किया, तो वो कहानी बताइए हमें कि वो इश्क क्या था, दिल टूटना कैसे हुआ।
1: असल में दिल टूटना एक आम जुमला हो गया है, जो मतलब कहा जाता है कि भाई शायरी करने के लिए दिल का टूटना ज़रूरी है। दरअसल एक बुनियादी दुख चाहिए,
0: जी
1: बुनियादी दर्द। ऐसा नहीं कि आप ज़ख्मी हो गए और वो ज़ख्म का एक दर्द है, वो भर जाता है, वो मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है ज़ख्म भरते ही।
0: जी
1: बुनियादी जो दुख है, बुनियादी जो दर्द है, जो आपको अपने किसी करीबी से मिलता है, माँ से मिले, बाप से मिले, या ननिहाल से मिले, या महबूबा से मिले, महबूब से मिले, तो ये बुनियादी दुख जो होता है वो आपके अंदर से नहीं निकलता है, और वो आपको लगातार सेंसेटिव बनाता रहता है।
0: जी
1: और शायर होने के लिए सेंसेटिव होना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: तो मैं समझता हूँ कि शायर जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा सेंसेटिव प्राणी है।
0: जी
1: हाँ, तो वो बुनियादी दुख एक नहीं था मेरे यहाँ, बहुत थे। एक तो सबसे पहला जो दुख था वो माँ की डेथ का था, फिर बाप ने दूसरी शादी कर ली तो हम वहाँ रहे नहीं बाप के पास, और ननिहाल में हमारी परवरिश हुई। तो ननिहाल भी दूसरा घर होता है, माँ का मायका होता है, तो वो भी घर ही होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क होता है। ठीक है,
0: बिल्कुल
1: जो आपको बाप के यहाँ जो अधिकार आपका होता है वो नानी नाना के यहाँ, मामू और मामानी के यहाँ इतना अधिकार नहीं होता
0: बिल्कुल सही बात,
1: जितना अधिकार आपका आपके बाप
0: मां से
1: के।
0: मिलता है,
1: हाँ,
0: बिल्कुल
1: तो जब आप सेंसेटिव होते हैं, कैजुअली तो बहुत सारे बच्चे ननिहाल में परवरिश पाते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हम बहुत अच्छे से वहाँ पले। लेकिन चूंकि मैं बड़ा सेंसेटिव था बचपन से ही, शायद खुदा ने तय कर दिया था कि मुझे क्या करना है, मुझे शायर होना है, तब मैं शायर नहीं था लेकिन सेंसेटिव मैं शुरू से था, तो ये प्रोसेस
0: चल रही थी
1: था।
0: बचपन
1: हाँ, जो मुझे नहीं मालूम था लेकिन वो कहीं लिखा जा रहा था।
0: जी
1: तो ये बहुत सारे जो दुख थे ये सब इकट्ठा हो गए, और मैंने कहीं लिखा है कि मेरे दिल में एक संदूक था नासूर नाम का,
0: जी
1: जिसमें सारे दुख जमा हो रहे
0: जमा
1: थे,
0: हो रहे थे,
1: और
0: क्या
1: एक दिन
0: बात
1: वो
0: है,
1: फट गया
0: ओहो
1: और वो शायर पैदा हुआ, उन दुखों की कोख से शायर पैदा हुआ।
0: जी
1: तो एक बुनियादी दुख चाहिए, ये बुनियादी दुख आपको जावेद अख्तर साहब के यहाँ भी मिलेगा, ये बुनियादी दुख आपको गालिब के यहाँ भी मिलेगा,
0: जी
1: निदा फाजली साहब के यहाँ भी मिलेगा, मीर के यहाँ भी मिलेगा। मीर का तो मामला ऐसा है, मीर तकी मीर हमारे बड़े शायर थे, उन्होंने एक ख्याली महबूबा क्रिएट कर ली थी और उससे इश्क करते थे जो दुनिया में थी ही नहीं, लड़की।
0: जी जी जी
1: ठीक है, तो आप सोचिए कि उस इश्क में, उस तकलीफ में कितनी शिद्दत रही होगी कि एक ख्याली महबूबा का जन्म हो गया, है ना। वो बीमारी भी कहते हैं वो
0: जी
1: इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया, मदहोशी फिल्म में भी यही प्रॉब्लम थी बिपाशा के साथ,
0: जी
1: जो हमारी फिल्म थी, हमारी कहानी में। तो ये सारा मामला है उस बुनियादी दुख का,
0: जी
1: उसके बगैर मुमकिन नहीं है,
0: उस
1: क्योंकि वो जो बुनियादी दुख है ना वो आपको अंदर से नर्म करता है, मुलायम करता है, सेंसेटिव करता है, जिसकी वजह से आप जो हैं चीज़ों को

0: वो बहुत शिद्दत से कैच करते हैं,
1: महसूस करते हैं, वो जो
0: महसूस करते
1: खरोचे
0: हैं।
1: होती है वो खरोच आपको
0: हाँ
1: कहीं शब्दों में ढाल लेते हैं तो
0: जी
1: आपको सुकून मिलता है। तो
0: जी
1: हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ अल्फाज, कोई चंद शायरी अगर आप हमारे श्रोताओं को सुनाए तो
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर,
1: क्या बात है।
0: खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर।
1: क्या बात है।
0: शुक्रिया। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर।
1: वाह
0: अभी हम इसी दर्द की बात कर रहे थे।
1: वाह वाह वाह।
0: दर्द जो है वो बहुत कीमती चीज है,
1: जी
0: हम
1: जी
0: उसको बहुत आसानी से उस दर्द को फ्रस्ट्रेशन में,
1: हाँ
0: गुस्से में बाहर निकाल देते हैं उसको। नहीं, उसको जीना चाहिए उस दर्द को।
1: जी,
0: वही दर्द आपको बड़ा कलाकार, बड़ा फनकार बनाता है।
1: ऊंचाई तक ले जाता है कई
0: तो
1: बार।
0: दर्द हीरा है दर्द मोती है,
1: क्या बात है।
0: दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और दर्द में मुस्कुराना कितना मुश्किल होता है, लेकिन अपनी मुस्कुराहट से हम कई बार अपने दर्द को ढांक लिया करते हैं। और यहाँ पर हम चाहते हैं नानी की जो बातें हैं, आपने जिक्र किया नानी नाना के यहाँ पले, तो नानी की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, नानी की जबान से सुनी हुई वो कहानियाँ, नाना की बहुत सारी बातें, बहुत सारी हिदायत नसीहतें, कुछ याद है तो संक्षेप में बताइए।
0: नानी की मोहब्बत है
1: बताइए, कोई
0: यार।
1: किस्सा बताइए नानी
0: मैं
1: का।
0: आपको बताऊं कि दुनिया की पहली और आखिरी औरत है मेरी नानी, जिसने मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की।
1: क्या बात है। ओह
0: हाँ, बहुत बहुत प्यार किया मुझे मेरी नानी ने। माँ को तो देखा नहीं मैंने, मतलब चेहरा याद नहीं है। माँ के साथ एकाध वाकया जरूर याद है, लेकिन चेहरा नहीं याद है। मेरी माँ को टीबी था, उस
1: ओह
0: जमाने में टीबी लाइलाज था,
1: जी,
0: तो उसी में उनकी डेथ हुई। तो नानी ने बहुत प्यार किया, और नानी के साथ वाकया तो क्या है, वो मेरे लिए अपने बेटे से लड़ जाती थी, मामू से। अपने बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि अपने बेटे से ज़्यादा प्यार मुझसे करती थी वो। तो वो औरत तो मेरे लिए बहुत बड़ी, कोई दूसरी औरत मैंने बताया कि ऐसी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिली जो मेरी नानी की तरह मुझे प्यार किया हो जिसने। तो बहुत सारे वाकये हैं, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी वो, और कोई चीज़ जब उन्हें मिलती थी तो वो अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लेती थी
1: क्या बात है। बहुत
0: और
1: बढ़िया।
0: वो मुझे देती थी चोरी से, चुपके से, और मेरी पढ़ाई का ख्याल रखती थी
1: जी
0: बहुत।
1: जी
0: और मैं पढ़ने में तेज़ था शुरू से,
1: हाँ
0: एकाध दो सब्जेक्ट में कमज़ोर भी था,
1: हाँ
0: जैसे मैं गणित में कमज़ोर था, और जो धार्मिक पढ़ाई होती है, दीनियात कहते हैं, वो एक सब्जेक्ट होता था, उसमें कमज़ोर था। बाकी सब में, राइटिंग वगैरह में, आलेख में
1: तेज थे।
0: बहुत तेज़ था मैं। हाँ
1: तो यहाँ पर जब आप नानी की बातें कर रहे हैं तो मुझे जावेद साहब का एक शेर याद आ रहा है। मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी। और जावेद साहब के नाम से मुझे याद आ गया कि जावेद साहब ने आपकी शायरी की बड़ी सराहना की है। एक कोई मुशायरा था गुजरात में जहाँ पर निदा साहब, जावेद साहब और बड़े बड़े नामचीन शायर थे।
0: हाँ सूरत में
1: जी,
0: जी
1: सूरत में।
0: जी
1: तो वो क्या वाकया है, जरा उसका जिक्र कीजिए, वो घटना बताइए।
0: मुशायरों में तब मैं आया नहीं था, और मैं सूरत में ही रहता था,
1: जी
0: और गुजरात उर्दू एकेडमी की तरफ से सरकारी मुशायरा था वो, बहुत ही बड़ा मुशायरा था। और ये बात है 1994 की,
1: जी शीन
0: है ना।
1: काफ निजाम भी आए
0: हाँ
1: थे
0: हाँ
1: इसमें।
0: शीन काफ निज़ाम साहब ने उसकी निज़ामत की थी, वो उसका संचालन किया था।
1: जी
0: अच्छा, आपको इतना डिटेल में
1: बिल्कुल, कुंडली
0: पता
1: आपकी पता है। लेकिन हमें श्रोताओं तक पहुंचाना है सारी बातें।
0: तो उसमें सारे बड़े शायर, मतलब निदा फाजली,
1: जी
0: जावेद अख्तर, मोहम्मद अलवी, और शीन काफ निज़ाम, और इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, और मंजर भोपाली वगैरह जैसे जो मुशायरे के टॉप के शायर थे, ये इस तरह के शायर भी उसमें शामिल थे। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये अदबी और लिटरेरी पोएट थे।

0: जी
1: सब। और जावेद अख्तर साहब का तो मतलब आप यूं समझिए कि बॉर्डर रिलीज हो गई थी या होने वाली थी, और उनके गीतों ने मतलब आग लगा रखी थी पूरे
0: जी
1: मुल्क
0: जी
1: में।
0: जी हिट
1: संदेशे आते हैं, है
0: गाने
1: ना,
0: होते रहे थे,
1: आए
0: बिल्कुल
1: जाते हुए लम्हों, वो गाने मतलब ये वही जमाना था।
0: हाँ
1: और प्रोफेसर वारिस अलवी साहब थे जो गुजरात उर्दू एकेडमी के चेयरमैन थे, और उर्दू साहित्य के बहुत बड़े क्रिटिक, बहुत बड़े नक्काद थे वो प्रोफेसर वारिस अलवी साहब। तो उनके फोन पर जावेद अख्तर साहब आए थे, वरना वो आते भी नहीं।
0: जी जी जी
1: हाँ, तो वो बहुत बड़ा मुशायरा था, और उसमें एक अलमिया ये हुआ, एक विडंबना हुई कि उसमें कई शायर मकामी थे, मतलब सूरत के लोकल शायर थे कई। तो लोकल शायर हर जगह पे यही दस्तूर है कि उसको पहले पढ़ा दिया जाता है,
0: जी
1: बाद में फिर जो मेहमान शायर हैं
0: हाँ
1: दूसरे शहरों
0: उनको
1: से आए
0: बाद में
1: हैं
0: रख
1: और जो नामचीन हैं बड़े शायर हैं, फिर धीरे धीरे उनका नंबर आता है। जैसे जैसे मुशायरा ख़त्म होता जाता है तो वो जितने बड़े शायर हैं वो बाद में पढ़ते हैं। अब जो लोकल शायर थे मकामी, उनको पढ़ाना शुरू किया शीनकाफ निज़ाम साहब ने। अच्छा, उसमें कुछ अहमदाबाद के भी थे, मतलब गुजरात के दूसरे शहरों से भी
0: जी
1: थे,
0: जी जी
1: तो उन्हें भी ठीक से कोई सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि स्टेज पर इतने बड़े बड़े शायर बैठे हुए थे। अब सूरत के शायरों को पढ़ाना शुरू किया, और दो या तीन शायर पढ़े होंगे कि हूटिंग शुरू होने लगी कि भाई मकामी शायरों को नहीं सुनना है, पब्लिक जो है, सामईन जो है, वो सुनने को तैयार नहीं। अब ये तय किया गया कि भाई मकामी शायरों को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब मेरा तो वो पहला बड़ा मुशायरा था, और उसके लिए हमने बड़े जतन किए थे, बड़ी मेहनत की थी, और ये जो बाहर से सब शायर आए
0: जी
1: थे
0: जी
1: इनकी देखभाल में भी हम
0: जी
1: थे,
0: हाँ
1: जावेद साहब के और मोहम्मद अलवी साहब और निदा फाजली साहब, और इन सब से मेरी पहली मुलाकात हुई थी
0: और उसमें खुद को
1: जावेद।
0: प्रूव करने का सभी समय
1: हाँ
0: था
1: हाँ
0: जी
1: जावेद साहब से भी, निदा साहब से भी, मोहम्मद अलवी साहब से भी, इन सब से मेरी पहली मुलाकात थी। इफ्तिखार इमाम सिद्दीकी, इन सब से मेरी पहली
0: जी
1: मुलाकात थी। शीनकाफ निज़ाम साहब से शायद पहले मिला हूँगा। तो हुआ क्या था कि सर्किट हाउस में ये सारे शायर ठहरे थे, तो मेरी मुलाकात, चूंकि मैं वहाँ पे मेहमान नवाजी में और देखभाल में था मैं, तो मेरी सबसे मुलाकात पहले ही हो चुकी थी, और निदा फाजली से मेरी अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी। और वो क्यों हो गई थी कि निदा फाजली साहब को तो मैं यूं भी पसंद करता था, लेकिन उनकी एक किताब जो नसरी है, मतलब उनका सवान ही नावल है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर एक नावल लिखा
0: जी
1: है जो
0: जी
1: दो
0: जी
1: जिल्दों में है, दो वॉल्यूम में है, तो ये पहली जिल्द थी, तब तक दूसरी नहीं छपी थी।
0: जी
1: दीवारों के बीच, वो हमारे यहाँ सूरत में एक लाइब्रेरी में थी, और मैंने वो पढ़ रखी थी,
0: जी
1: और उससे मैं इतना इम्प्रेस हुआ था, उसको पढ़ के रोता था मैं। निदा
0: ओ
1: फाजली का जो कैरेक्टर है वो लगता था मैं हूँ,
0: क्या बात
1: है
0: है जी,
1: ना।
0: काफी कुछ दुख उनके भीतर भी जमा
1: हाँ,
0: था
1: तो हमारी ज़िंदगी बड़ी मिलती जुलती थी,
0: जी
1: तो मुझे लगता था कि निदा फाजली मैं हूँ, तो मैं उसको पढ़ के रोता था मैं। तो निदा फाजली साहब के साथ मैंने उस किताब पर डिस्कस की, तो वही वजह बनी, कारण बनी हमारे नज़दीक आने की। और निदा फाजली साहब का उस ज़माने में मुशायरों में तूती बोलता था,
0: बिल्कुल
1: और ख़ास तौर से सूरत में बड़े मकबूल थे वो, सूरत में बहुत अच्छा सुना जाता था
0: जी
1: उनको।
0: जी
1: तो अब जब ये तय हो गया, ऐलान कर दिया कि भाई अब मकामी शायर नहीं पढ़ेंगे, तो मुझे अफसोस हो रहा था कि यार मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा, और ये मेरा पहला इतना बड़ा मुशायरा। तो निदा फाजली साहब ने एक कासिम हकीम साहब थे जो एडवोकेट थे और गुजरात उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, नायब, तो उनसे मेरे अच्छे रिश्ते थे, उन्होंने मेरे लिए मतलब एकेडमी और किताब छपवाना ये सब में बड़ी मदद की थी उन्होंने भी। तो लोकल पैमाने पर उन्होंने मुझे स्टेज भी दिलवाया। तो निदा फाजली साहब ने उनसे कहा कि अगर शकील को नहीं पढ़ाओगे तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा।
0: ओहो क्या बात
1: ठीक है। और उस मुशायरे में वो अपनी वाइफ को भी लाए थे, तो हम लोग जानते भी नहीं थे, और उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरी वाइफ है। उन्होंने फोन पे बताया कि भाई वो एक शायरा है मालती जोशी सनम, वो भी आएंगी। तो अब वो चूंकि निदा साहब ने कहा था तो कोई उनको मना नहीं कर सकता था, हाँ भाई ठीक है उनको भी ले आइए। तो मालती जी उस जमाने में मतलब यंग थी, और
0: विविध भारती में आ चुकी हैं।
1: अच्छा, और बड़ी खूबसूरत लगती थी, मतलब उनकी जो
0: अभी भी लगती है
1: तो उनका जो चेहरा है वो सायरा बानो जी से

0: थोड़ा मिलता जुलता है,
1: जी जी
0: है ना। और वो मुझे याद है काली साड़ी पहन रखी थी उन्होंने। तो एक और भी शायरा थी, रफिया शबनम आबिदी साहिबा भी थी, वो बॉम्बे से, वो प्रोफेसर हैं, काफी पढ़ी लिखी नक्काद हैं, क्रिटिक भी हैं और शायरा भी है, और यहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, शायद अब रिटायर हो गई हैं, प्रोफेसर भी थी वो। तो वो भी थी उस मुशायरे में, रफिया शबनम आबिदी साहिबा। लेकिन सामेईन की जो नजर थी वो मालती जी पे।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो घड़ी में संध्या के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। राज भासर मच्छा पंचायत से अजीत कुमार बने हैं अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया।
1: अल्ट्राटेक तो बहुत अच्छी सीमेंट है, उससे मैंने अपना घर भी बनवाया है और योजना में भी मैक्सिमम टाइम हम लोग वही यूज करते हैं और हिंदुस्तान अखबार तो बचपन से जब से पढ़ने आया तब से पढ़ते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो हम लोगों के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ला करके और बिहार पे हमें अपने पंचायत का नाम रोशन करने का मौका मिला है, जिसके लिए अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान दोनों को बहुत बहुत बधाई। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा। सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। छतरहार पंचायत से अनीता मिश्र बनी है यशस्वी मुखिया।
2: अल्ट्राटेक का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि गांव बनेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो गांव बनाने की जो अहम भूमिका है वो अल्ट्राटेक सीमेंट का है, चाहे मेरे यहाँ पंचायत सरकार भवन

0: घाट बने या स्कूल बने, बिल्डिंग बने, अल्ट्राटेक सीमेंट हमेशा आगे बढ़े, क्योंकि गांव के निर्माण में उसका बहुत योगदान है कि वो लोग सहयोगी बन करके सुचारू रूप से सफल बनाया।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। अंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
2: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
1: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोगकर्ता हिंदुस्तान।

0: के उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से पंदिल पंचायत से बबलू कुमार बने हैं यशस्वी मुखिया।
1: हम अपने पंचायत में नौका विहार, ओपन जिम, पार्क, सरकार भवन, तीन तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुपालन अस्पताल, फिर चिल्ड्रेन पार्क, स्टेडियम, बहुत पशुओं को पानी पीने के लिए व्यवस्था, काफी तरह का बेहतर कार्य किया है। इसको लेकर के काफी गर्व महसूस हुआ है और हम बधाई देते हैं अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान के सभी टीमों को, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
0: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।
2: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब आप थोड़ा रिलैक्स होकर हमारे साथ जुड़े होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या।
3: और मैं हूं निशा। आज हम फिर से लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम युवानी। दोस्तों, कभी कभी दिन कैसा भी गया हो, कुछ अच्छी बातें, कुछ नई जानकारियां और थोड़ी सी मुस्कान ना पूरा मूड बदल देती है। तो आज का ये समय रखिए सिर्फ और सिर्फ अपने लिए।
2: बिल्कुल निशा, और आज के कार्यक्रम में हम शुरुआत करेंगे एक ऐसी छोटी सी बात से जो शायद आपके मन में बड़ा हौसला जगा दे। हमारा सेगमेंट है प्रेरक पंक्ति का।
3: और फिर आज की बात में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस की। आखिर वे लोग जो समाज की जरूरतों को समझकर दूसरों के लिए काम करते हैं, हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाते हैं, इस पर भी होगी एक दिलचस्प चर्चा।
2: तो इसी के साथ दोस्तों, कहीं मत जाइए और हमारे साथ सुनते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गाने से जिसे गाया है रवि ने और फिल्म है जब तक है जान।

0: दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मन में बहुत सारे सवाल हो, हौसला थोड़ा कम पड़ रहा हो और तभी किसी की एक कही छोटी सी बात आपको फिर से संभाल दे?
1: बिल्कुल, क्योंकि शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। कभी वही शब्द हमें रुकने से बचाते हैं तो कभी आगे बढ़ने की नई वजह दे जाते हैं। निशा, आज सुबह किसी ने मुझसे पूछा कि यार लाइफ में ना बहुत प्रेशर है, क्या करें।
0: अच्छा,
1: तो आज के हमारे जितने भी यंग और एनर्जेटिक दोस्त इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए बस इतनी छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि उम्र छोटी है तो क्या, हौसले आसमान से ऊंचे होने चाहिए। मुश्किलें चाहे जितनी हो, कदम हमेशा आगे बढ़ने चाहिए। क्यों नहीं, क्योंकि आप यूथ है, बस आपके खून में वो उबाल है जो ठंडे पड़े इरादों को भी जिंदा कर दे। तो सुस्ती छोड़ो, उठो और अपनी मंजिल की तरफ एक नया कदम बढ़ाओ। और इसी के साथ कार्यक्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म धुरंधर से, जिसे गाया है खान साहब और शाश्वत सचदेव ने।

0: दोस्तों, आज तारीख है 23 जून। कैलेंडर पर तो यह बस एक तारीख है, लेकिन आज का दिन बहुत बहुत स्पेशल है। आज है यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे, यानी लोक सेवा दिवस।
1: अब आप सोच रहे होंगे, हम तो यंगस्टर्स हैं, हमारा इस पब्लिक सर्विस डे से क्या लेना देना, ये तो सरकारी अफसरों और फाइलों का काम है ना।
0: तो मेरे युवा दोस्तों, आज इसी सोच को बदलने का दिन है।
1: संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन की शुरुआत साल 2002 में की थी। इसका सबसे बड़ा मकसद जानते हैं क्या है? समाज में बदलाव लाने वाले उन हीरोज को सलाम करना जो दिन रात हमारे देश और दुनिया को बेहतर बनाने में जुटे हैं।
0: चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, पुलिस हो, सफाई कर्मचारी हो, या फिर वो इनोवेटर्स जो डिजिटल गवर्नेंस पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज 2026 में इस दिन का सबसे बड़ा लक्ष्य है युवाओं को पब्लिक सर्विस से जोड़ना।
1: सोचिए, हम हर दिन चाय की टपरी पर या सोशल मीडिया के रील्स पे कमेंट्स में सिस्टम को कोसते हैं, यार ट्रैफिक कितना खराब है, यार सरकारी काम कितना स्लो होता है, प्रदूषण देखो कितना बढ़ गया है। लेकिन महात्मा गांधी ने एक बात कही थी, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी वो बदलाव खुद बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। अगर सिस्टम को बेहतर बनाना है तो सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा।
0: क्या बात कही है आपने दिव्या। दोस्तों, आज पब्लिक सर्विस का मतलब सिर्फ एक डेस्क पर बैठकर फाइलें साइन करना नहीं है। आज पब्लिक सर्विस का मतलब है इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और पैशन।
1: क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी गरीबी मिटाना, सबको अच्छी शिक्षा देना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना, ये सब पब्लिक सर्विस के बिना मुमकिन ही नहीं है।
0: आज सरकार को ऐसे युवाओं की जरूरत है जो AI, डेटा साइंस और नए आइडियाज से देश की समस्याओं को सुलझा सके।
1: अगर आपके पास कोडिंग की स्किल है तो आप देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं।
0: अगर आप में लीडरशिप है तो आप सिविल सर्विसेज के जरिए जमीनी स्तर पर लाखों जिंदगियों को बदल सकते हैं।
1: पब्लिक सर्विस आपको वो ताकत देती है जो

0: दुनिया का कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट पैकेज नहीं दे सकता है और वो है संतुष्टि। जब आपकी वजह से किसी गरीब के घर में बिजली पहुंचती है, किसी बच्ची को स्कूल में एडमिशन मिलता है या किसी गांव को साफ पानी मिलता है, तो उस खुशी की कोई कीमत नहीं होती।
1: दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवाओं की ऊर्जा ही देश की असली ताकत है। देश को सिर्फ नौकरी करने वाले नहीं, देश को लीडर चाहिए, और लीडरशिप की शुरुआत होती है जिम्मेदारी लेने से।
0: आज के दिन खुद से एक वादा कीजिए। जरूरी नहीं कि आप सीधे आईएएस आईपीएस ही बने। आप अपने स्तर पर सोशल वर्क कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, या बस एक जागरूक नागरिक बनकर भी पब्लिक सर्विस का हिस्सा बन सकते हैं।
1: पब्लिक सर्विस कोई जॉब नहीं है, यह एक जज्बा है। यह देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है। उठिए, आगे आइए और इस देश के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि जब युवा बदलेगा तभी तो भारत बदलेगा।
0: चलिए, आज यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे पर उन सभी कर्मयोगियों को हम सलाम करते हैं जो देश की सेवा में लगे हैं।
1: दोस्तों, आगे भी प्रोग्राम चलता रहेगा, फिलहाल आइए आपको सुनवाते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।
2: देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। पनियरपुर पंचायत से बेबी देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
3: जैसे कि हमने जब चुनाव मैंने जीती थी उसके बाद हम अपने पंचायत में बहुत सारे काम किए थे, जैसे स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, लेकिन सबसे अधिक प्रेरणादायक मेरा जो काम है वो है बालिका वाटिका जो हम बनवाए अपने पंचायत में, और छठ घाट का निर्माण करवाए थे। जो नई पीढ़ी आने वाली है उनके लिए जो भी संभव हो सके मैं उसे पूरा करूं, और पिछले जो समय जो उन लोगों के साथ जो बीता है वो आगे ना बीते, उसे आगे उनका भविष्य सफल रहे।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गांव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान। देश के नंबर एक सीमेंट अल्ट्राटेक की अनोखी पहल, अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया। प्रदेश भर से 20 मुखियाओं को उनके उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए राज्य स्तर पर किया गया सम्मानित हिंदुस्तान के सहयोग से। बनी वैसी पंचायत से गुड़िया देवी बनी है यशस्वी मुखिया।
4: कार्य किए हैं, बच्चा का खेल मैदान वाला बनवाए, उसके बाद गली बनवाए, नाली, उसके बाद सरकार भवन बनवाए, उसके बाद रोड बनवाए, उसके बाद कचरा वाला, तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमको भागलपुर में मिला था, फिर हम गया गए थे, हैदराबाद गए थे, वहाँ भी हमको सम्मान मिला। अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा।
2: अल्ट्राटेक यशस्वी मुखिया, गाँव बनेगा देश बढ़ेगा, सहयोग करता हिंदुस्तान।

है चंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम हार दो प्रचंड बोल मस्तकों

करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही

0: आकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
1: आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन पान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
2: अभी आपने सुना ये बेहतरीन सा गाना फिल्म गुलाल से, जिसे गाया था पीयूष मिश्रा ने।
3: दोस्तों, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको एक कविता जिसे लिखा है सत्यप्रकाश ध्रुव ने। आइए सुनते हैं उनकी कविताएं।
4: मेरी पहली कविता का जो शीर्षक है, शेष रह गई तुम। तुम्हें भूलने के भरसक प्रयास में मैंने बहुत सी चीजें हटा दी, पुराने कागज, कुछ तस्वीरें, कुछ ख्वाब। धीरे धीरे फिर एक दिन तुम्हारा नाम हटाया, एक दिन तुम्हारी आवाज, एक दिन वह रास्ता भी जिस पर चलते हुए तुम याद आ जाती थी। लेकिन जैसे बरसात के बाद कुएं की भीत पर एक पतली सी काई रह जाती है, वैसे ही धीरे धीरे फैलती रहती है। मैं रोटी के सामने बैठता हूँ और सोचता हूँ, मनुष्य को सिर्फ रोटी ही जीवित नहीं रखती, कुछ आवाजें भी रखती है। स्मृतियाँ पक्षियों की तरह होती है, उन्हें रास्ते याद रहते हैं। और तुम्हें भूल जाने की सारी हदें पार कर लेने के बाद भी किसी पुराने घर की दीवार पर उगी हुई चकतेदार की काई की तरह। मेरे अगली कविता का जो शीर्षक है, अंतिम स्पर्श की इच्छा। मैं जब जाऊंगा तो यह जाना यूं ही नहीं होगा, या एक लंबी प्रतीक्षा का अपने ही भीतर थककर बैठ जाना होगा। मेरी सांसें धीमी पड़ जाएगी, जैसे कोई पुराना गीत अचानक बीच सुर में रुक जाए और उसकी अधूरी धुन कमरे में देर तक भटकती रहे। मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा आखिरी बार नहीं, पर हर चुप्पी में तुम्हारा नाम धड़कता रहेगा, इतना स्पष्ट कि सुनाई न देने पर भी अनसुना नहीं किया जा सकेगा। मेरे हाथ हवा में कुछ यूं ठहर जाएंगे, जैसे कोई अधूरी प्रार्थना आसमान तक पहुंचने से पहले थककर जम गई हो। मैं तुम्हें छू नहीं पाऊंगा, पर उस असफल स्पर्श की स्मृति मेरी उंगलियों में अंतिम कंपन बनकर रह जाएगी। धीरे धीरे पत्थर होती हुई उस क्षण कोई रोना नहीं होगा, कोई आहट भी नहीं, बस भीतर कहीं एक दरवाजा बंद होगा जिसकी आवाज सिर्फ मुझे सुनाई देगी। और जब सब थम जाएगा तो जो शांति बचेगी वह सच्ची शांति नहीं होगी, उसमें तुम्हारा ना होना एक अस्थाई दरार की तरह हर सन्नाटे में दिखेगा। लोग कहेंगे सब खत्म हो गया, पर उन्हें क्या मालूम कि अंत से ठीक पहले मैंने तुम्हें कितनी बार जिया है। हर याद में, हर अधूरे ख्याल में, हर उस खामोशी में जहां तुम भी नहीं फिर भी थी। मैं जब जाऊंगा तो जीवन यूं ही खत्म नहीं होगा, वह बस बदल जाएगा तुम्हारे नाम के एक अधूरे कांपते हुए उच्चारण में। मेरी अगली कविता का जो शीर्षक है, अधूरी दीवारों का समय। यह समय दीवारों पर लिखे गए नारों का नहीं, दीवारों के भीतर उगती दरारों का है, जहां शब्द धीरे धीरे अपना अर्थ खोते हैं और खामोशी एक नई भाषा गढ़ती है। तुमने देखा है कैसे एक साधारण आदमी अपनी जेब में रखे सपनों को हर रोज थोड़ा थोड़ा गिरवी रखता है, सिर्फ इतना बचाने के लिए कि वह जीवित दिख सके। खेतों में झुकी हुई पीठें अब सिर्फ अनाज नहीं उगाती, वही उगाती है प्रश्न जो हर शहर की चौखट पर आकर अस्वीकार कर दिए जाते हैं। सड़कों पर बिछी धूल कदमों की गिनती नहीं करती, वह पहचानती है किस कदम में प्रतिरोध है और किस में समझौता। यह वही दौर है जहां सच बोलना धीरे धीरे एक आदत नहीं, एक जोखिम बनता जा रहा है, और झूठ इतना सहज कि वह दिनचर्या में शामिल होकर अपना चेहरा भी छिपा लेता है। लेकिन याद रखो, हर दीवार जिसे तुम अंतिम मान लेते हो वह भीतर से पहले ही टूट चुकी होती है, बस एक हल्की सी दस्तक चाहिए और इतिहास

0: आस फिर से सांस लेने लगता है।
1: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रोग्राम युवानी, और अभी आप सुन रहे थे सत्य प्रकाश ध्रुव की कविताएं। दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की घड़ी भी इशारा कर रही है कि अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का।
2: जी हाँ दोस्तों, और जाना भी जरूरी है ताकि हम फिर से इसी ऊर्जा उत्साह के साथ लौट सकें और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी को लेकर।
1: साथियों, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा, या कोई भी अन्य सुझाव हो जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे मेल आईडी feedback@patna@gmail.com। दोस्तों, वैसे तो हमारे लिस्ट में कई सारे गाने हैं जो हम समय समय पर बजाते रहते हैं। अगर आपको भी कोई फरमाइश हो आपकी गाने के लेकर, तो आप हमें मेल के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अन्य किसी प्रोग्राम में उसे ज़रूर शामिल करें।
2: और हमारा पता, हमारी मेल आईडी फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं, feedback@patna@gmail.com। दोस्तों, आपके फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, और आकाशवाणी पटना आप ऐसे ही सुनते रहिए हमारे साथ युवाणी कार्यक्रम। आगे भी मिलेंगे हम एक नई कड़ी के साथ, क्योंकि युवाओं का जोश लेकर हर शाम हम आते हैं शाम 4:30 बजे।
1: फिलहाल अपने दोस्त निशा और दिव्या को दीजिए इजाजत।
2: फिर से होगी आपसे मुलाकात।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म पुरस्कार 2026 सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी द्वितीय राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से जीवंत प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: राष्ट्रपति भवन चले।
2: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कुछ ही क्षणों में भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से विभूषित होने वाली विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित करेंगी। मैं शालिनी मित्तल अपने साथी अंग्रेजी कमेंटेटर नितेश अरोड़ा के साथ आकाशवाणी की ओर से इस गरिमामय समारोह का सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाने के लिए राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में मौजूद हैं। ये अवसर केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान देने वाले उन व्यक्तित्वों के प्रति भारत की सामूहिक कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है जिन्होंने अपने कार्य, समर्पण और उत्कृष्ट उपलब्धियों से देश का गौरव बढ़ाया है। 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। प्रथम नागरिक समारोह जो 25 मई को आयोजित किया गया था, आज इसका दूसरा समारोह है जिसमें 67 विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा जिसमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 19 महिलाएं हैं और सूची में विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी शामिल हैं। श्रोताओं, राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप आज अपनी पूरी भव्यता के साथ सुसज्जित है। भारतीय कला, स्थापत्य और लोकतांत्रिक परंपराओं का अद्भुत संगम इस मंडप में दिखाई देता है। भव्य झूमर, आकर्षक सज्जा, गरिमामय वातावरण और राष्ट्र की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति समारोह की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही है। बहुत से गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं, अपना अपना स्थान ले चुके हैं जिसमें हम देख पा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, साथ ही साथ और मंत्रिपरिषद के सदस्य, संसद सदस्य, न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारी, सशस्त्र बलों के प्रमुख तथा विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां और गणमान्य अतिथि यहाँ उपस्थित हैं। और साथ ही गौरव के साथ उपस्थित है वो पद्म पुरस्कार विजेता और उनके परिवार के सदस्य जिन्हें आज देश के माननीय राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और अब हम देख रहे हैं

0: मंदिर मंडप में आगमन हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और अपने स्थान की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री सबको अभिवादन स्वीकार करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए और अपनी जगह पर बैठते हुए, सभी लोग उनके साथ खड़े हो चुके थे और अब सब अपने स्थान पर वापस बैठ चुके हैं। नितिश,
1: A warm welcome to all the listeners of Akashvani from Ganatantra Mandap, Rashtrapati Bhavan. In a short while from now, Honorable President Draupadi Murmu will confer the Padma Awards 2026 at the second civil investiture ceremony of this year. The President will confer 65 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 7 Padma Bhushan and 56 Padma Shri. Instituted in 1954, these awards are announced on the occasion of the Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinguished and is of work of distinction, and it is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science, and engineering, public affairs, and ट्रेड एंड इंडस्ट्री।
0: और नितिश, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ गए हैं क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति का आगमन हो रहा है। सीपी राधाकृष्णन अभी यहाँ आगमन हुआ है उनका गणतंत्र मंडप में। सभी को नमस्कार करते हुए,
1: Well, the first citizen of the nation, Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, will be honoring the most distinguished Indians for their exemplary work in various fields. What a proud woman, Shalini, for any citizen when his or her work is recognized by the nation. Proud are the family members of the recipients who are seated here to cheer their family members when the nation is giving to reward their dear ones. A day like this comes once in lifetime.
0: Indeed, बिल्कुल सही कहा नितिश। यही वो क्षण होता है जब वर्षों की साधना, सेवा और उपलब्धियों को राष्ट्र की सर्वोच्च मान्यता प्राप्त होती है। ये सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि का प्रतीक है बल्कि उस क्षेत्र विशेष के महत्व और उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता को भी का भी परिचायक है। श्रोताओं, पद्म पुरस्कारों की विशेषता ये है कि इनमें भारत के महानगरों से लेकर दूरस्थ गांवों तक के वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने बिना किसी प्रचार प्रसार के समाज सेवा, लोक कला, जनजातीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और मानवीय कल्याण के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए हैं। यही कारण है कि पद्म पुरस्कार भारत की विविधता और समावेशी विकास की भावना का जीवंत प्रतिबिंब माने जाते हैं। हर पुरस्कार के साथ एक प्रेरक जीवन यात्रा जुड़ी होती है नितिश। इन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अथक परिश्रम, नवाचार, सेवा और प्रतिबद्धता से देश को नई ऊर्जा प्रदान की है। आज का ये समारोह भारत की उस भावना का उत्सव है जिसमें उत्कृष्टता को पहचान और सम्मान दिया जाता है।
1: Well, Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. The awards are given in various disciplines and the fields of activities that include art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, Padma Bhushan for distinguished service of high order, and Padma Shri for distinguished service in any field. The awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The regulars announced the arrival of Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: राष्ट्र गीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद महार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत किया गया, बैंड मास्टर सूबेदार बीपी गुरुंग के नेतृत्व में।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए। धन्यवाद।
0: और अब औपचारिक रूप से एक स्वीकृति ले गई माननीय राष्ट्रपति से कि आज के दिवस
1: पद्म विभूषण
0: की शुरुआत की जा रही है।
1: श्री पी नारायणन, साहित्य एवं शिक्षा।
0: नारायण जी के नाम से लोकप्रिय श्री पी नारायण राष्ट्रवादी पत्रकारिता के दिग्गज और एक महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक आयोजक हैं, जिन्होंने केरल में कभी हाशिए पर रहने वाली विचारधारा को व्यक्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
2: Beyond journalism, Sri Narayanan made significant contributions as a scholarly author and a prolific translator. His work as a translator includes the works of V.D. Savarkar, M.S. Galwalkar and Deen Dayal Upadhyay from English and Hindi into Malayalam.
0: बहुत ही गौरव का क्षण।

0: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी थॉमस लोक कार्य।
1: न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के टी थॉमस भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। आपको आपराधिक कानून, पुलिस सुधार और निजी व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में योगदान के लिए काफी जाना जाता है। न्यायमूर्ति थॉमस को वर्ष 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें अन्य पुरस्कारों में भी सम्मानित किया जा चुका है और बहुत सारे उनको पुरस्कार दिए मिल चुके हैं।
2: थॉमस इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनल लॉ, पुलिस रिफॉर्म्स एंड फाइट अगेंस्ट करप्शन इन प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशन फील्ड्स। ही इज रिसीविंग द पद्म विभूषण फ्रॉम ऑनरेबल President of India, Shrimati Draupadi Murmu.

0: पद्म भूषण डॉक्टर विजय अमृतराज खेल टेनिस।
1: डॉक्टर विजय अमृतराज भारत के महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 14 साल की उम्र से जूनियर स्पर्धाओं में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना शुरू किया और फिर ओपन इवेंट्स में गए। लगातार 20 वर्षों तक डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान मिला है, जिसने टीम को 2 बार फाइनल में पहुंचाया है। एक ऐसी उपलब्धि जो भारत के ओपन युग में इतिहास में एक बेजोड़ एग्जाम्पल मानी जाती है। अपना पुरस्कार लेते हुए
0: डॉक्टर SKM महिला नंदन समाज सेवा।
1: SKM कंपनी समूह के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर SKM मलियानंदन एक प्रसिद्ध उद्यमी होने के साथ विभिन्न सामाजिक कल्याण ट्रस्टों के संस्थापक और एक उपभोक्ता कार्यकर्ता भी हैं।
2: Dr. Melanandan has received several awards and honors, Padma Shri Award for Social Work in 2013, National Productivity Awards, he got it for 8 times, and National Safety Awards 2 times, Agriculture and Processed Food Products Export Promotion Awards 5 times.
0: Shri Mammootty, Kala, Film, Abhinay.
1: मम्मूटी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्माता है जो दक्षिण भारतीय भाषा के सिनेमा में है, लेकिन मुख्य रूप से मलयालम फिल्म उद्योग में काम करते हैं। 5 दशकों के करियर में श्री मम्मूटी ने 400 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है, जिनमें मुख्य रूप से मलयालम के साथ साथ कई तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी और अंग्रेजी के कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है।
2: Ambassador for numerous social causes and the patron for several
0: social initiatives. Shri Vellapalli Natation, Lok Karya.
1: Shri Vellapalli Natation, Kerala ke pramukh rajneetik neta aur pratishthit vyakti hain. Shri Natation ne के मार्गदर्शन में शिक्षा योगों का सबसे स्थायी योगदान रहा है। श्री नारायण ट्रस्ट के माध्यम से इस नेटवर्क में स्कूल, कॉलेज और तकनीकी केंद्रों सहित संस्थानों की संख्या 40 से बढ़कर 130 हो गई है।
2: श्री नटेशन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड फैमिली यूनिट्स एट द शाखा लेवल, एक्सटेंडिंग द ऑर्गेनाइजेशंस रीच इनटू हाउसहोल्ड्स एंड प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म फॉर वीमेन्स लीडरशिप, एजुकेशनल सपोर्ट, सेविंग्स प्रमोशन, सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी कोहिजन बियॉन्ड केरला। SNDP units were established in Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Delhi and Bihar. Receiving the Padma Bhushan from Honorable President.
0: Dr. Datta Treyodu Nori, Chikitsa Oncology.
1: आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रशस्त ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, अग्रणी चिकित्सक और महत्वपूर्ण तिथि अभिनेता हैं। 4 दशकों से अधिक के अपने करियर के दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध कॉर्नल मेडिकल सेंटर और में ऑन्कोलॉजी के प्रोफेसर और अध्यक्ष के साथ ही कैंसर केंद्र के निदेशक के पद पर कार्य किया है।
2: Dr. Nori has extended his expertise and experience to various governments and private organizations to establish comprehensive cancer centers in nearly 2000. In early 2000, he helped the government of Andhra Pradesh.
0: Shri Shibu Soren, Marnopranth, Lok Karya, unki patni, Shrimati Rupi Soren.
1: Shibu Soren, Marnopranth, ye award diya ja raha hai, jo unki patni lengi aur maane Rashtrapati niche utarte hue, unko ye मदद प्रदान करने के लिए पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। श्री सोरेन का 4 अगस्त 2025 में निधन हो गया।

0: श्रद्धापूर्वक विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रमुख आदिवासी जननेता, सामाजिक सुधारक तथा झारखंड आंदोलन के मुख्य शिल्पकारों में से वो एक थे।
1: William J. Soren was more than a political leader. He was a custodian of memory, resistance,
2: Shrimati and hope. Alka Yaznik, Kala, Parsh Gayan.
0: और अब नाम बुलाया गया है अलका याग्निक का, जो भारत की एक प्रख्यात पार्श्व गायिका है और कला के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कलाकार है। माननीय प्रधानमंत्री को नमस्कार करते हुए झुककर प्रणाम कर रही हैं। हम देख पा रहे हैं चार दशक से अधिक की उल्लेखनीय गायन यात्रा में उनका मधुर स्वर, कलात्मक उत्कृष्टता और निरंतर समर्पण ने भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक विरासत को अत्यधिक समृद्ध किया है।
1: Born on 20th of March 1916 in Kolkata, West Bengal, Shrimati Yaznik embarked upon her musical journey with a strong classical foundation that shaped her distinctive artistic sensibility and vocal identity. Her most famous song was Ek Do Teen.
0: बहुत सारे उनके गाने हैं जो अति लोकप्रिय रहे हैं।
2: श्री नूरुद्दीन अहमद, कला निर्देशन।
1: Now we move on to Padmashree awarding. And Shri Nuruddin Ahmed is a visionary art director, sculptor and set designer who has defined the visual landscape of Ahamiya art and culture through his pioneering work in mobile theater, films and television.
0: आप एक दूरदर्शी कला निर्देशक, मूर्तिकार और सेट डिजाइनर हैं जिन्होंने मोबाइल थिएटर, फिल्म और टेलीविजन तथा स्मारकीय सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी अग्रणी कार्य के माध्यम से असमिया कला और संस्कृति के परिदृश्य को पुनः परिभाषित किया है। पुरस्कार ग्रहण करते हैं
2: श्री तिरुवरूर भक्तवत्सलम, कला मृदंगम।
0: श्री तिरुवरूर भक्तवत्सलम प्रतिष्ठित मृदंगम कलाकार हैं। कर्नाटक संगीत की ताल वाद्य परंपरा के सबसे विशिष्ट कलाकार हैं। श्री भक्तवत्सलम ने 9 वर्ष की आयु से ही अपनी माता के साथ संगीत समारोह में जाना प्रारंभ कर दिया था। और इनके साथ एक खास बात जो मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि इनके असाधारण संगीत प्रतिभा के कारण आकाशवाणी ने उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ और विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। उन्हें बीच की बी हाई श्रेणी को पार करते हुए बी ग्रेड से सीधे ए ग्रेड में पदोन्नत कर दिया गया, जो उस समय अत्यंत असामान्य उपलब्धि मानी जाती थी। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें प्रतिष्ठित ए टॉप ग्रेड भी प्राप्त हुआ। अपना सम्मान
2: डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालसुब्रमण्यम, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: अब नाम पुकारा गया है डॉक्टर कृष्णमूर्ति बालसुब्रमण्यम का, जो एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं और एक संस्था निर्माता भी हैं। आपने IIT कानपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित होने पर सीधे PhD करने के लिए मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा में स्कूल ऑफ मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग।
2: श्री ब्रिज लाल भट्ट, समाज सेवा।
1: श्री ब्रिजलाल भट्ट इज नोन फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सोशल सर्विस प्रमोटिंग पीस एंड हार्मनी आफ्टर हिज एग्जेम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग एक्टिव सर्विस इन जम्मू एंड कश्मीर। Under his payback stage of life now, Shri Bhatt is now working as Chairman Administrative Committee, Shri Ramakrishna Mahasammelan Ashram Vivekanand Kendra, Lord Dandi, Anantnag, Kashmir. Clad in Kudumbala, two feet suit, receiving the Padma Shri from the President.
2: तरुण भट्टाचार्य, कला संतूर।
0: श्री तरुण भट्टाचार्य जी का, जो प्रख्यात संतूर वादक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को नई पहचान दी है और शब्द तंत्री वीणा वादन शैली में नए परिवर्तन की आधार शिक्षा रखी है। उनकी नई तकनीकों और तरीकों ने शब्द तंत्री वीणा को एक व्यापक रूप से सीखा और प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र बना दिया है।
1: And credited for having created new Hindustani classical ragas, Rag Ganga, based on Swachh Ganga Abhiyan, and also having created
2: Shri Jyotish Devnath, Kala, Hatkargha Bunai.
0: और अगला नाम श्री ज्योतिष देवनाथ का, जो पारंपरिक हथकरघा बुनाई और मलमल और चांदनी साड़ियों में विशेषज्ञता प्राप्त एक प्रतिष्ठित प्रतिपादक हैं। ये बंगाल के समृद्ध वस्त्र परंपराओं के प्रमुख शिल्पकार हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की सबसे

0: तारीख और ऐतिहासिक रूप में महत्वपूर्ण बुनाई विरासतों में से एक को संरक्षित करने और पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित किया है।
1: Beyond his personal artistry, Shri Devnath has made significant contribution as a mentor and
2: Dr. Jogesh Deori, Krishi.
0: एक प्रसिद्ध रेशम उत्पादन विशेषज्ञ है जिन्हें रेशम उद्योग विशेष रूप से एरी रेशम में अपने अग्रणी योगदान के लिए व्यावसायिक रूप से जाना जाता है।
1: एब्सोल्युटली डॉक्टर देओरी इज एरी सिल्क पायनियर क्रेडिटेड विद मॉडर्नाइजिंग ट्रेडिशनल एरी सिल्क रेयरिंग मेथड्स। He is a strong advocate for Airy Silk Ahimsa, a non-violent silk viewing it as a sustainable future for Assam's economy and rural youth. I think he is wearing the Airy Silk one.
2: Shri Bhiklaya Ladkaya Dinda Kala Lok Sangeet.
0: Agla naam Shri Dinda, aap ek pratishthit adivasi lok sangeetkar hain aur वालवंडा गांव तालुका जवार के प्रतिष्ठित तरपा कलाकार हैं। उन्होंने 7 दशकों से अधिक समय से अपना जीवन आदिवासी सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न और पवित्र अंग तरपा संगीत को प्रशिक्षित करने में संरक्षित करने में
1: बिताया। In addition to being a master performer, Shri Dhinda has served the tribal community as a bhagat, that is a traditional
2: Dr. Amida Fernandez, Chikitsa, Neonatology.
0: प्रसिद्ध न्यूनेटोलॉजी उनके एक डॉक्टर अर्मिता फर्नांडिस को भारत में न्यूनेटोलॉजी मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य पोषण और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है।
1: डॉक्टर फर्नांडिस वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन मार्केटली रिड्यूसिंग द हाई मोर्टेलिटी रेट अमंग प्री टर्म एंड सिक न्यूनेटल्स एट LTMG हॉस्पिटल थ्रू लो कॉस्ट सस्टेनेबल इनोवेशन। Clad in a green saree, she is proudly receiving this award from Honorable President
2: of India. Dr. Chandramouli Gaddumunugu, Vigyan Evam Engineering.
0: आप एक भूतपूर्व उत्कृष्ट वैज्ञानिक परियोजना निदेशक आकाश रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद DRDO के कार्यक्रम निदेशक हैं।
1: Despite numerous hurdles over a demanding journey spanning more than 3 decades, Dr. Chandramouli remains steadfast in his focus, inspiring teams across diverse organizations, resolving complex technical challenges for surface-to-air missile technology.
2: Dr. Prem Lal Gautam, Vigyan Evam Engineering.
0: डॉक्टर प्रेमलाल गौतम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार के कुल अधिपति हैं। एक प्रख्यात पादप प्रजनक शिक्षक मार्गदर्शक अनुसंधान के प्रमुख संस्था निर्माता है।
1: डॉक्टर गौतम वॉज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ 12 इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज पायनियर्ड नेशनल सिस्टम ऑफ प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन एक्सेलरेटेड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्लांट वेराइटीज।
2: डॉक्टर राजा स्थापति कलियप्पा गौंडर कला कांस्य शिल्प।
0: अगला नाम कांस्य कला के प्रसिद्ध शिल्पकार हैं जिन्हें पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। अपने कौशल को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गौंडर ने अपने संस्थान में युवा पीढ़ी के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं शुरू की हैं।
1: And due to Dr. Gonder's avid interest in arts, he also started focusing on preserving the old temples, which was struggling due to financial stress and left without maintenance. He renovated more than 100 temples which were left to perish and rebuilt them, and finally conducted Kumbh Abhishekam. What a great achievement.
2: Dr. Padma Gurmed, Chikitsa, Sowa Rigpa.
0: डॉक्टर पद्मा गुरमेद राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान ले के संस्थापक निदेशक और लद्दाख अमची सभा ले लद्दाख के अध्यक्ष हैं। वे आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति को औपचारिक मान्यता दिलाने तथा लद्दाख एवं अन्य हिमालयी क्षेत्रों में इसके व्यवस्थित विकास के अग्रदूत में से एक माने जाते हैं। राष्ट्रपति महोदय से पद्मश्री ग्रहण करते हैं। अत्यंत गौरव का पल।
2: श्री अशोक कुमार हल्दर, साहित्य एवं शिक्षा।
1: श्री अशोक कुमार हल्दर इज ए नोटेड इंडियन राइटर एंड सोशल थिंकर फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। In addition to books, Shri Haldar

0: authored approximately 3,000 articles published in leading newspapers of West Bengal and Tripura. He first walked up to the Prime Minister Shri Narendra Modi and is now walking slowly to receive his Padma Shri award.
1: उन्होंने अपना जीवन साहित्य और सामाजिक चेतना तथा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित किया। पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति जी कार्यक्रम द्वारा लेते हुए श्री अशोक कुमार हल्दार।
2: डॉक्टर सुरेश हनगवाड़ी, चिकित्सा हीमोफीलिया।
0: Dr. Suresh Hanagwadi, founder and president of Karnataka Hemophilia Society, Devangiri, KHS, is a distinguished medical professional, visionary institution builder, and a tireless advocate for persons with hemophilia and rare bleeding disorders in India. Being suffering from severe hemophilia B, he transformed personal adversity into a lifelong mission of service, dedicating over 4 decades in improving diagnosis, treatment, rehabilitation and dignity for thousands of affected
1: communities.
0: A proud moment for his family members who are all standing up and cheering.
2: Dr. Charan Hembram, Sahitya Evam Shiksha, संथाली।
1: श्री चरण हेम्ब्रम एक संथाली शिक्षाविद और सांस्कृतिक कार्यकर्ता है जिन्होंने उड़ीसा में संथाली भाषा साहित्य संस्कृति के प्रचार पर प्रसार और संस्थागत विकास में असाधारण योगदान दिया है। कई सरकारी और साहित्यिक पत्रिकाओं में उनके लेख भी प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने संथाली ऑडियो एल्बम के लिए गीत भी रचे और आज भी संथाली साहित्य और संगीत विरासत में योगदान दे रहे हैं।
0: श्री हेम्ब्रम प्लेड अ ट्रांसफॉर्मेटिव रोल इन संथाली एजुकेशन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द टेन्योर एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ संथाली एजुकेशन ओडिशा अंडर ASECE. Rai Rangpur from 1992 to 2004.
2: Dr. Shubha Venkatesh Iyengar, Vigyan Evam Engineering.
1: Dr. Shubha Venkatesh Iyengar is a प्रख्यात वैज्ञानिक है जिनके काम ने भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी परिदृश्य को बदल दिया है। उनका करियर स्वदेशी नवाचार की शक्ति का प्रमाण है जो राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है।
0: Receiving the Padma Shri, Dr. Iyengar's most significant innovations are Drishti, visibility imaging system, and aviation weather observation system, which have enhanced the safety of all Indian international airports as they are mandatory
2: Shri
0: equipments.
2: Shri T. T. Jagannathan, Marnoprant, Vyapar Evam Udyog, unke putra, Shri Mukund Thatte.
1: Shri Jagannathan ko Marnoprant पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है जो उनके पुत्र रिसीव करेंगे। 9 अक्टूबर 2025 को श्री जगन्नाथन का निधन हो गया था। आप भारत की सबसे बड़ी रसोई उपकरण और कुकवेयर कंपनी टीटी के प्रेस्टीज लिमिटेड को 5 दशकों से अधिक समय तक निर्णय किया था।
0: चेयरमैन ऑफ द टीटी के ग्रुप श्री जगन्नाथ बिल्ट ए रेपुटेशन फॉर क्वालिटी इनोवेशन।
2: संत निरंजन दास जी आध्यात्म।
1: और अगला नाम पुकारा गया है पद्मश्री के लिए संत निरंजन दास जी जो विश्व प्रसिद्ध 13 सचखंड बल्लान के वर्तमान आध्यात्मिक प्रमुख हैं और उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में श्री गोविंद रविदास जन्मस्थान मंदिर सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
0: Since August 9, 1994, संत निरंजन दास जी हैज बीन लीडिंग डेरा सचखंड बल्लान। हिज टेन्योर हैज बीन मार्क्ड बाय अनपैरेलल्ड कंट्रीब्यूशंस टू सोशल वेलफेयर। He oversees the Sant Sarvandas Charitable Hospital in Jalandhar, a 150-bed multi-speciality facility providing affordable care.
2: Professor Vijayanathan Kamakoti, Vigyan Evam Engineering.
1: आईआईटी मद्रास चेन्नई के निदेशक प्रोफेसर विजयनाथन कामकोटी सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को मुख्य उत्पादों में बदलने हेतु अपने करियर को समर्पित करने के लिए जाने जाते हैं जो आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
0: एकेडमिक रेल में श्री कामकोटी हैज गाइडेड अराउंड 20 पीएचडी एंड 30 एमएस फॉर रिसर्च पर्पस। He has published over 200 extensively cited papers in
2: Professor Mangla

0: and research. She is the author of the 5 books on music, including her autobiography, Seerat.
1: Professor Mangala Kapoor, माननीय राष्ट्रपति से पद्मश्री ग्रहण करते हैं।
2: डॉक्टर अशोक खाड़े, व्यापार एवं उद्योग।
1: अगला नाम डॉक्टर अशोक खाड़े का। आप डीएलएस ऑफशोर लिमिटेड के अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, जो व्यापक रूप से एक अग्रणी टेक्नोक्रेट उद्यमी के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारत के स्वदेशी अपत्तीय इंजीनियरिंग क्षमताओं को सुदृढ़ करने और विदेशी संविदाकारों पर निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
0: डॉक्टर खाड़े बिगन हिज प्रोफेशनल करियर इन 1975 मुंबई,
2: साहित्य एवं शिक्षा,
0: ही वर्क्ड इन स्ट्रक्चर डिजाइन एंड क्वालिटी कंट्रोल।
1: और अगला नाम खोकलोवा। डॉक्टर खोकलोवा को भारतीय भाषा शास्त्र विभाग, एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन संस्थान, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी रूस में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे इंडोलॉजिकल अध्ययन में उनको उनके योगदान के लिए दुनिया भर में वो प्रसिद्ध हैं।
0: At present, Dr. Khokhilova is teaching different linguistic courses at Moscow State University, which are very popular among students, Hindi at BA and MA in Punjabi.
1: आप एक दूरदर्शी नेता, एक विख्यात शिक्षाविद और ग्रामीण उत्थान के लिए एक अथक योद्धा हैं। डॉक्टर कोरे का जीवन देश की स्वावलंबन और शैक्षिक उत्कृष्टता की यात्रा का दर्पण है।
0: Among his most significant achievements is the establishment and development of 2 universities, KLE Academy and Higher Education and Research, KHER, and KLE Technological University.
2: श्रीमती पखिला लेक्थेपी, कला करबी गीत।
1: श्रीमती पखिला लेक्थेपी असम की करबी गीतों के प्रसिद्ध गायिका हैं। वर्ष 1978 में उन्हें आकाशवाणी गुवाहाटी में गाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने करबी आधुनिक और लोकगीत प्रस्तुत किए। उन्होंने दूरदर्शन गुवाहाटी में भी करबी आधुनिक गीत प्रस्तुत किए।
0: श्रीमती लेक्थेपी स्टार्टेड कंपोजिंग ओन सॉन्ग एंड लिरिक्स ऑन करबी मॉडर्न सॉन्ग इन द ईयर 1975 फॉर करबी यूथ फेस्टिवल्स। She got first prize for her own composition lyric song in Karbi Youth Festival in 1976. In a traditional
1: पारंपरिक परिधान में, असम के परिधान में, माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार ग्रहण करते हुए और उनके परिजन उनके लिए ताली बजाते हुए।
2: श्री रामा रेड्डी मामिदी, मरणोपरांत सहकारिता, उनकी पत्नी श्रीमती श्यामला रेड्डी।
1: श्री रामा रेड्डी मामिदी को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है, जो उनकी पत्नी माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे। आप भारत में व्यापक रूप से आधुनिक सहकारी कानून के मुख्य निर्माता के रूप में जाने जाते थे।
0: श्री मामिदी's achievements have transformed rural livelihoods, established 585 thrift and credit cooperatives benefiting over 2.69 lakh members in Telangana with an annual turnover of 570 crore. Shri Mamidi passed away on 26th October 2025 and the award is
2: Shri
0: received by her.
2: Shri Ra Vesu Mani, Civil Seva.
1: Shri RVS Mani, a super parichit civil sevak hain. Shri Mani ne Bharat Sarkar ke Grih Mantralay mein apar सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही उन्हें चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं का सामना करना पड़ा। श्री मणि एक निष्ठावान सरकारी सेवक के रूप में पूरी तरह से राजनीति निरपेक्ष रहकर कार्य किया।
0: श्री मणि हैज रिटन 5 बुक्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड हैज वर्कड एज अ सिंसियर गवर्नमेंट सर्वेंट इन एन एपॉलिटिकल मैनर। क्रेडिट्स वर गिवन टू हिम फॉर हैंडलिंग सेवरल सेंसिटिव केसेस।
2: श्रीमती कला मंडलम विमला मेनन, कला मोहिनी अट्टम।
1: आप वर्तमान मोहिनी अट्टम शैली के पीछे की दृष्टि और प्रेरणा है, चाहे वो उसकी सुंदरता, वेशभूषा, केशभूषा, वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि प्रस्तुति पैटर्न का तरीका हो, जो आज मोहिनी अट्टम की पहचान बन चुका है।
0: श्रीमती मेनन from the young age recognized the power of art as a nation's vital soft power and developed her journey to using classical dance as a medium for peace, unity, inclusion and human development.

0: श्री व्लादिमिर मिस्ती वरिशवली मरणोपरांत खेल कुश्ती कोच, उनकी पत्नी श्रीमती मरीन सारिया।
1: 23 जून 2025 को इनका निधन हो गया था और मरणोपरांत व्लादिमिर मिस्ती वरिशवली को ये पद्मश्री सम्मानित किया जा रहा है, जो एक फ्री स्टाइल कुश्ती कोच थे। उनकी पत्नी ये सम्मान ग्रहण करते हुए माननीय राष्ट्रपति के कार्यक्रम द्वारा।
2: He's remembered as one of the greatest coaches in the world of freestyle wrestling, having trained numerous Olympic medals.
0: श्री मागंटी मुरली मोहन, कला फिल्म अभिनय।
1: श्री मुरली मोहन एक बहुआयामी व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है और 85 वर्ष की उम्र में भी बहुत सक्रिय रहते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सदस्य रहे और आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी आपने कार्य किया।
2: In 1973, श्री मुरली मोहन entered the film industry and recently completed golden jubilee of his film career. He received numerous honors and played lead roles in over 350 films.
0: श्री मोहन नागर, समाज सेवा।
1: मध्य प्रदेश के जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष और भारत भारती शिक्षा समिति बैतूल के सचिव श्री मोहन नागर को मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और शैक्षिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से पहचाना जाता है।
2: श्री नागर has had led several landmark campaigns. In 2006, he undertook a padyatra to advance education and environmental protection, mobilizing local communities to institutionalize Jal Mahotsav, a river festival in the Mata River catchment area.
0: Dr. Punyamurti Nateshan, Pashu Chikitsa.
1: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन एक प्रतिष्ठित पशु औषध विज्ञानी, शिक्षाविद और ट्रांसलेशन वैज्ञानिक है। उन्होंने 4 दशकों से अधिक के शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार कार्य के माध्यम से भारत में एथनो वेटरनरी चिकित्सा को उन्नत किया है।
2: Nationally and internationally acknowledged expert, Dr. Nateshan has served as a trainer and consultant to organizations such as Department of Animal Husbandry and Dairying.
0: कला इकत बुनाई।
1: और अगला नाम पुकारा गया है श्री शरत कुमार पात्र का। आप एक प्रसिद्ध हर कलाकार शिल्पकार हैं जो इकत बुनाई में अपने योगदान के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। श्री पात्र द्वारा अतिरिक्त पाना तकनीक से बुने हुए कोणार्क वस्त्र एक उल्लेखनीय कृति है।
2: कोणार्क टेक्सटाइल यूजिंग एक्स्ट्रा वेफ्ट टेक्निक इज अनदर रिमार्केबल वर्क। ही सक्सेसफुली डेवलप्ड नियरली 50 शेड्स यूजिंग नेचुरल डाइज। His efforts in creating human figures and calligraphic art based on some famous literary arts. Eminent handloom craftsman who is widely known for his contribution in ikat weaving.
0: Shri Simanchal Patra, Kala Lok Rangmanch.
1: Shri Simanchal Patra, Lok Rangmanch ki duniya ke ek prasiddh hasti hain. उन्हें कला जगत में भारत के एक प्रसिद्ध लोक रंगमंच प्रहलाद नाटक की भीष्म पितामह के रूप में जाना और सम्मानित किया जाता है। ये नाटक अपने जीवंत संगीत नाटकीय कथ्यों और सशक्त पात्रों के लिए जाना जाता है।
2: Born on 7th July 1927, श्री पात्रा hails from a poor rural family and as per family tradition and culture he is inclined to Vaishnavism. श्री पात्रा from the age of 7 learnt Sakhi Nata, said to be precursor of classical Odissi dance, where male boys act as female sati, from Guru Shri Narsingh Pradhan.
0: Guru Sangyu Sang Ponganar, Kala Lok Kala.
1: Guru पोंगनर नागा वादी वेलफेयर कल्चरल क्लब के सह संस्थापक हैं। वो इसकी स्थापना के बाद से लोक नृत्य, संगीत और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। और आप सुन पा रहे हैं वो क्योंकि अपने पारंपरिक परिधान में यहाँ पधारे हैं तो सभी लोग तालियां बजाकर बहुत खूबसूरत सा परिधान है। नितिश, पारंपरिक परिधान है

0: और इन्हें इनकी असाधारण उपलब्धियों और एओ नागा लोक कलाओं के अभिनव योगदान के फलस्वरूप
1: श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद कला अभिनय।
2: श्री गद्दे बाबू राजेंद्र प्रसाद इज ए फेमस तेलुगु फिल्म एक्टर For over four decades, starting with his debut in 1977, Shri Gadde Babu graced more than 286 films across six languages, even stepping into international waters. His genius lies in his special touch, versatile roles in family stories, social messages, and comedy.
0: सभी को घूम के उन्होंने घूम घूम के नमस्कार किया और अब माननीय राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं मुस्कुराते हुए और पर्दे के पीछे नम्र मेहनती और बिना किसी फिल्मी गॉडफादर के अपने मध्य वर्गीय संस्कारों से जुड़े हुए श्री गद्दे बाबू
1: सुश्री सविता पूनिया खेल हॉकी।
2: Ms. Savita Punia, the former captain and the current goalkeeper of the Indian women's national field hockey team, is one of India's most acclaimed sports personalities. With an unprecedented 308 international caps, she is the first Indian woman goalkeeper to achieve this extraordinary milestone, exemplifying enduring resilience, skill and commitment. Truly the wall.
0: भारतीय महिला राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम की पूर्व कप्तान और वर्तमान गोलकीपर सुश्री सविता पूनिया
1: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री कनद पुरकायस्थ
0: अगला नाम श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ जिनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है 7 जनवरी 2026 को आपका निधन हो गया था आप असम के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व थे
2: श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ ब्रीथ हिज लास्ट ऑन 7 जनवरी 2026 And his son is receiving the Padma Shri on behalf of his father.
1: Shri Bhagwan Das Raikwar, Marnoparant, Khel, Bundeli Martial Art, Unki Putra, Shri Rajkumar Raikwar.
0: Adla Puraskar bhi Marnoparant, Shri Bhagwan Das Raikwar ko diya ja raha hai, jo unke putra. माननीय राष्ट्रपति से ग्रहण करेंगे श्री भगवान दास रायकवार पारंपरिक बुंदेली मार्शल आर्ट्स और लोक कलाओं के संरक्षक तथा गुरु के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित हैं।
2: श्री भगवान दास रायकवार इज वाइडली रिस्पेक्टेड एज ए पेट्रन एंड टीचर ऑफ ट्रेडिशनल बुंदेली मार्शल आर्ट्स एंड फोक आर्ट्स इंक्लूडिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेपन ट्रेनिंग एंड मूवमेंट प्रैक्टिसेस
1: प्रोफेसर के रामस्वामी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग
0: प्रोफेसर के रामस्वामी सर्वप्रथम अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि एक मानित विश्वविद्यालय है के कुलपति कुल अधिपति चांसलर हैं वो कृषि जैव द्रव्य के रूपांतरण भारत में एनरोबिक माइक्रोबायोलॉजी के संस्थापक तथा प्राकृतिक खेती की दिशा में मृदा जैविकी के पुनरुद्धार के लिए कार्यरत हैं
2: As a member of planning commission, Professor Ramaswamy pioneered the traditional agriculture
1: through
0: Shri Madhavan Ranganathan Kala Abhinay. And now the name is Shri Madhavan Ranganathan. You will hear the sound of the tales of the tales. And Madhavan, first of all, has reached the Pradhanmantri. He has talked to them and accepted their support in the Namaskar. अब माननीय राष्ट्रपति की ओर कदम बढ़ाए हैं अपने पद्मश्री को ग्रहण करने के लिए माननीय प्रधान राष्ट्रपति उनको ये सम्मान दे रही हैं उनको मैडी के नाम से जाना जाता है सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता निर्माता निर्देशक और लोकप्रिय व्यक्ति हैं
1: श्रीमती रंजनी एवं श्रीमती गायत्री कला कर्नाटक संगीत
2: Shrimati Ranjani and Shrimati Gayatri are eminent Carnatic musicians recognized for their sustained contribution to Indian classical music
1: Ranjani.
2: As a performing duo for nearly four decades.
0: Shrimati Ranjani and Shrimati Gayatri ko Bharatiya Shastriya Sangeet mein unke yogdan ke liye Tamil Nadu sarkar ne Kalain Ma Mani Puraskar समाधान मंथर पुरस्कार बहुत सारे पुरस्कार उन्हें हासिल हो चुके हैं प्रतिष्ठित कर्नाटक संगीतकार हैं जिन्होंने लगभग 4 दशकों
1: श्रीमती गायत्री
0: गायन का कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रतिष्ठित है इस क्षेत्र में
2: श्रीमती गायत्री अलोंग विद श्रीमती रंजनी हैव रिसीव्ड न्यूमरस ऑनर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इंक्लूडिंग द कलाई ममामी अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु

0: डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी, कला नाट्य कला।
1: डॉक्टर अनिल कुमार रस्तोगी एक कलाकार, एक वैज्ञानिक और एक परोपकारी का अनूठा मिश्रण है। डॉक्टर रस्तोगी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से जैव रसायन में एमएससी की डिग्री प्राप्त की और बाद में सूक्ष्म जीव विज्ञान में पीएचडी की।
2: डॉक्टर रस्तोगी हैज बीन वर्किंग इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री फॉर 64 इयर्स, हैविंग स्टेज अराउंड 1000 शोज ऑफ 100 प्लेज ऑल ओवर द कंट्री। He staged his 100th play, Beyond the Curtain, in December 2025.
0: Professor Dr. Mahendra Nath Roy, Vigyan Evam Engineering.
1: प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र नाथ राय रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में विज्ञान और कला संकायों में पूर्व डीन और अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति हैं।
2: Beyond academia, he is recognized as a social worker, particularly for the efforts in uplifting the common people. He has donated on several organizations and schools on behalf of his parents for the development of the society.

0: श्री सतीश शाह मरणोपरांत कला अभिनय, उनके भाई श्री अरविंद मामनी ने।
1: श्री सतीश शाह, उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। उनका निधन 25 अक्टूबर 2025 को हो गया था। सतीश शाह रंगमंच, टेलीविजन और सिनेमा में भारत के सबसे सम्मानित तो लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक थे, जो अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग, बहुमुखी प्रतिभा और गहरे मानवीय भावों के प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे।
2: His roles in the films like गाने भी दो यारो, मैं हूँ ना, ओम शांति ओम एंड numerous other mainstream and parallel films।
0: प्रोफेसर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
2: You'll be remembered by many. Next is Professor Pratik Sharma. He's a professor of medicine at the University of Kansas School of Medicine and holds the Ernest Blaylock Endowed Professorship at the Kansas University Cancer Center.
1: प्रोफेसर शर्मा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी, एंडोस्कोपी और जीआई कैंसर क्षेत्र में एक विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने गैस्ट्रो एंट्रोलाइटल रोगों के और
0: रोहित गुरुनाथ शर्मा के लिए अपना खेल क्रिकेट।
2: The man in blue and also in white when he plays test cricket today can be seen wearing a formal black bandgala two-piece suit walking up to the president to receive Padma Shri.
1: बिल्कुल, और भारतीय खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए श्री शर्मा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार और भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी प्राप्त है।
2: As captain of the international team, Shri Sharma had led India to significant global triumphs, including ICC Men's T20 World Championship 2024.
1: अगला नाम सरदार इंद्रजीत सिंह सिद्धू। आप पंजाब पुलिस से उप महानिरीक्षक के रूप में सेवानिवृत्त एक प्रेरणादायक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें व्यापक रूप से झाड़ू योद्धा के रूप में जाना जाता है। उन्होंने स्वच्छता के प्रति अपनी मौन लेकिन शक्तिशाली प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रव्यापी प्रशंसा हासिल की है।
2: बोर्न ऑन 6 जून 1938 इन विलेज गग्गरपुर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब, श्री सिंधु स्टिल वॉकिंग टॉल टू रिसीव हिज अवार्ड। He joined the Punjab Police as an inspector in 1963. In 1981, he was promoted to the Indian Police Service IPS.

0: रघुपत सिंह मरणोपरांत कृषि, उनकी पत्नी श्रीमती प्रेमवती।
1: श्री रघुपत सिंह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। इनका निधन 1 जुलाई 2025 को हो गया था। आप एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे और पारंपरिक बीजों के संरक्षण और प्रचार के लिए आपको जाना जाता है। मुरादाबाद जिले के समथल गांव में आप जन्मे थे।
2: श्री सिंह पास्ड अवे ऑन 1 जुलाई 2025। ही वाज आल्सो एक्टिव इन सोशल लाइफ। ही कंटेस्टेड द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस फ्रॉम चंदौसी कॉन्स्टिट्यूएंसी एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इन 1980 एंड 1985 बट डिड नॉट विन। लेटर ही वॉन द इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ द ब्लॉक पंचायत बिलाड़ी इन 1990।

0: 2005 and again in 2020.
1: श्री रघुपत सिंह जी की धर्मपत्नी ये सम्मान ग्रहण करते
2: हैं। श्री खेमराज सुंदरियाल कला हथकरघा बुनाई
1: उत्तराखंड के सुमरी गांव के एक साधारण परिवार में जन्मे श्री सुंदरियाल ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीनगर उत्तराखंड से हथकरघा प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा हासिल किया। खेतों की जुताई से लेकर भारत में वस्त्र परिदृश्य को बदलने तक की उनकी यात्रा अद्वितीय दृढ़ता अनुशासन और उत्कृष्टता के प्रति समर्पण को दर्शाती है।
0: श्री सुंदरियाल आर्टिकुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड हट्टा टेक्निक इन पंज दरी लूम फॉर रिप्लेसिंग पंजा एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ वीवर्स Also in 1980, he introduced polyester yarn in hand loom under Petrofil project.
2: Dr. Budhari Tati, Samaj Seva.
1: माता शंखिनी महिला उत्थान केंद्र हिरनार के अध्यक्ष डॉक्टर पुत्री ताती आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित करने और उन्हें स्वरोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के अपने निरंतर प्रयासों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक सेवा गतिविधियों में भी भाग लिया है।
0: डॉक्टर बुदरी विद द हेल्प ऑफ सोशल सपोर्ट स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर वीमेन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए परमानेंट वीमेन्स ट्रेनिंग सेंटर बिल्डिंग इन बारसू By building the Hiranar Women's Upliftment Center, they are working to empower women with self-reliance.
2: Dr. Kumarasamy Thangaraj, Vigyan Evam Engineering.
1: Dr. Thangaraj ke anuvanshik adhyan. ने पहली बार यह स्थापित किया कि अंडमान जनजातियां प्रथम आधुनिक मानव हैं जो लगभग 65,000 साल पहले अफ्रीका से बाहर चले गए थे। यह प्रारंभिक मानव प्रवासन के स्पष्टीकरण में एक बड़ी सफलता है।
0: कुमारस्वामी थंगराज इज द सीएसआईआर भटनगर फेलो एट द सीएसआईआर सेंटर फॉर सेलुलर एंड बायोलॉजी हैदराबाद।
2: मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा उनकी पत्नी श्रीमती हीरामणि टूडू
1: श्री रविलाल टूडू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। आपका निधन 4 जून 2026 को हो गया। आप वर्धमान पश्चिम बंगाल से संथाली साहित्य के लेखक थे जिन्होंने संथाली नाटक और भाषा संरक्षण में बहुत योगदान दिया है। उनकी धर्मपत्नी पद्मश्री माननीय राष्ट्रपति से लेते हुए
0: श्री टूडू वॉज अवॉर्डेड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2015 फॉर हिज प्ले पारसी खाते इन द संथाली लैंग्वेज कैटेगरी इन एडिशन टू हिज नेशनल रिकॉग्निशन ही रिसीव्ड द बंग भूषण अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इन 2022 ऑनरिंग हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू संथाली लिटरेचर एंड कल्चर
2: श्री नरेश चंद्र देव वर्मा साहित्य एवं शिक्षा
1: और अब पद्मश्री में अगला नाम पुकारा गया है श्री नरेश चंद्र देव वर्मा का। आप त्रिपुरा राज्य में साहित्य भाषा संस्कृति और सामाजिक विषयों के क्षेत्र में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हैं जिनका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से व्याप्त है। इन क्षेत्रों में उनके योगदान ने संपूर्ण समुदाय पर एक गहरा और चिरस्थायी प्रभाव छोड़ा है।
0: प्रेजेंट श्री वर्मा सर्व्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ द Kokoborok Sahitya Parishad, a leading literary organization dedicated to the promotion and development of the Tripuri language.
2: Shri Shashi Shekhar Vempati, Sahitya Evam Shiksha.
1: श्री शशि शेखर वेम्पटी डीप टेक फॉर भारत फाउंडेशन के सह संस्थापक हैं। इससे पहले वो भारत के लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य कर चुके हैं। इन्हें दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण में इनके क्रांतिकारी नेतृत्व के लिए अपार प्रसिद्धि प्राप्त है।
0: एज द यंगेस्ट सीईओ ऑफ प्रसार भारती बिटवीन 2017 टू 2022 श्री वेम्पटी रोज टू द चैलेंज बाय लॉन्चिंग द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स
1: श्री चिरंजी लाल यादव उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के प्रसिद्ध

0: पीतल उत्कीर्णक हैं। आपने विदेशों में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया है। वर्ष 2010 में ढाका बांग्लादेश गए और 2015 में उन्होंने भारत सरकार के हस्तशिल्प निर्यात वर्धन परिषद के माध्यम से फ्रैंकफर्ट जर्मनी में अपनी कला का प्रदर्शन किया।
1: श्री यादव सर्व्ड एज मास्टर क्राफ्ट्समैन फ्रॉम 1980 टू 1982। ही हैज टॉट ब्रास एनग्रेविंग टू 30 चिल्ड्रन इन पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। ही आल्सो ट्रेन्ड 10 चिल्ड्रन इन कार्विंग वर्किंग इन 2011 थ्रू द ऑफिस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की धुन सभागार में मौजूद नमहार रेजिमेंट सेंटर के मिलिट्री बैंड द्वारा प्रस्तुत बैंड मास्टर सुबेदार बीपी गोरुंग के नेतृत्व में।
1: और व्हाट अ वंडरफुल इवनिंग फॉर द रिसिपिएंट्स व्हेन दे केम टू दिस हॉल दे वर स्टैंडिंग टॉल बट नाउ दे आर वेयरिंग दोस मेडल्स ऑन देयर चेस्ट व्हाट अ प्राउड मोमेंट।
0: गर्व के पल होते हैं नितिश ये और जिंदगी ये मेमोरीज रहती हैं। और अब माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गंतव्य मंडप से बाहर प्रस्थान करते हुए सभी को नमस्कार करते हुए
1: एंड ऑफ कोर्स द रिसिपिएंट्स विल नाउ स्टे पुट फॉर अ सेरेमोनियल फोटोग्राफ विद ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
0: इस समय हम देख रहे हैं सभी लोग अपने अपने स्थान पर पुनः बैठ गए हैं। सभागार का वातावरण कर प्रेरणा और सम्मान की भावना से ओतप्रोत है। आज सम्मानित सभी विभूतियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और इसी के साथ वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों के दूसरे नागरिक सम्मान समारोह का सफलतापूर्वक समापन हुआ। ये समारोह राष्ट्र की ओर से उन महान व्यक्तित्वों को नमन है जिन्होंने अपने कर्म और योगदान से भारत को समृद्ध बनाया है। आकाशवाणी की ओर से सभी सम्मानित विभूतियों को हार्दिक बधाई। आप सुन रहे थे राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से पद्म पुरस्कार समारोह 2026 का सीधा प्रसारण। तकनीकी प्रमुख श्री जितेंद्र भरूथी के साथ तकनीकी टीम के सदस्य थे शक्तिधर ध्यानी, अशोक कुमार मिश्रित, सुमित कटियार और हेमराज मीना। ओबी इंचार्ज थे मधुलिका श्रीवास्तव। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार। और अब अपने साथी कमेंटेटर नितिश अरोड़ा के साथ मैं शालिनी मित्तल आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।

प्रणाम। ई आकाशवाणी के पटना केंद्र है। अब रहुआ सूर्य प्रकाश उपाध्याय से भोजपुरी में समाचार सुनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरा नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान कैनी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिवु सोरेन के मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कल गई। पार्श्व गायिका अलका याग्निक, सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और अभिनेता ममूटी के पद्म भूषण से सम्मानित कल गई। उन्हें भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के पद्मश्री से विभूषित कल गई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल के शुरुआत कैले। यह पोर्टल के शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ावे में एक महत्वपूर्ण कदम बा। ऐसे नीलामी से जुड़ल काम काज के आसान बनावे या किसानन और कृषि संस्था सबके फायदा खातिर नेफेड की काज कुशलता बढ़ावे में डिजिटल प्लेटफॉर्म मिली। नेफेड के तरक्की के जिक्र करते श्री शाह कहले कि संगठन आज 74 लाख किसानन की सेवा करे वाला एगो मजबूत संस्थान बन के सोझा आयल बा। अल्पसंख्यक काज और मछली पशुपालन तथा डेयरी राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिले बाड़े। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर ले बाड़ी। श्री कुरियन के राज्यसभा सदस्यता के कार्यकाल खत्म हो गए रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़े कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरदर्शी विचारन और संकल्पन के पूरा कल जा रहा बा। मुख्यमंत्री पटना के भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्री मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के संबोधित करत रहले। वहां के कहले कि एनडीए सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के सोच के मजबूत बनावे खातिर लगातार काम कर रहा बिया। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ऋण बांटे के मामलन में बैंकन के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जतौले बाड़े। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी के बैठक के संबोधित कर श्री यादव कहले कि ऋण बांटे में बैंकन के लापरवाही सोझा आ रहा बा। वहां के कहले कि तय लक्ष्य के मुकाबलन अब तक बहुते कम ऋण बांटल गई बा। वहां के बैंक अधिकारियों के अपन प्रदर्शन में सुधार करके चेतावनी भी देले बाड़े। राज्यन के ज्यादातर हिस्सन में मानसून सक्रिय दिखाई दे रहा बा। मानसून विभाग अपन अनुमान में कहले कि 24 घंटा के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी,

0: सुपौल समेत राज्यन के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागन में कई एक जगह आनी पानी की आशंका बा। ये दौरान कुछ जगह पर वज्रपात भी हो सकत बा। विभाग अपन पूर्वानुमान में इहो कहले बा कि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, पटना समेत राज्यन के दक्षिण पश्चिम हिस्सन में लू चले के संभावना बा। भारतीय जनता पार्टी आपातकाल में बरसी के मौका पर 25 जून के पूरे राज्यन में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाई। भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन जायसवाल आज पटना में प्रेस वार्ता में बतौले कि यह मौका पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जेपी सनन्यन के सम्मानित कल जाये। वहां के बतौले कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल हुई है। जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुहर्रम के पर्व के लेकर नगर थाना परिषद में शांति समिति की बैठक कल गई। बैठक में पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखे के बारे में भी चर्चा कल गई। पश्चिम चंपारण जिला के रामगढ़ थाना इलाका के सोनखर चौक के लगे एक दुगो पहिया गाड़ी के शोरूम में आग लगी से कईयों को गाड़ी जर के राख हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बक्सर दौरा के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में नगर परिषद के कार्यपालिक पदाधिकारी कुमार ऋत्वी के सस्पेंड कर दिया गया बा। नगर विकास और आवास विभाग ई कार्रवाई कैले बा। बीरकुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के देखरेख में निजी चैनलों के होड़ के बीच लोक प्रसारक दूरदर्शन आकाशवाणी की प्रासंगिकता के लेके एगो सर्वे कल जाये। विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय अकादमिक टीम आ बोनाफाइड जर्नलिस्ट सोसाइटी अलग अलग चरणन में ई सर्वे करी। रोहतास जिला के आरा सासारा मुख्य सड़क पर सिकटी गांव के लगी एगो सड़क दुर्घटना में बिहार पुलिस के कई जवान घायल हो गए। एफसीआई के चाउर लादल एगो ट्रक पुलिसकर्मी सब लेके जात बस में पाछू से टक्कर मार देलस। ये दुर्घटना में 3 पुरुष और 9 महिला जवान घायल बाड़ी। सब घायलन के तुरंत नोखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करावल गई जहां उनका इलाज कल गई। घटना के खबर मिलते ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौका पर पहुंच लोगन राहत इलाज के काम का जायजा लिहलस। पुलिस मामला के जांच कर रहल बिया। एक साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एजे समाप्त भेल।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे खुद्दार फिल्म का कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार होंगे जमीर काजमी और संगीतकार अनु मल्लिक।
1: की शुरुआत की ये ग्रुप इंडियन पॉप और रॉक म्यूजिक के लिए।

0: चंपा बहन को नमस्कार।
1: हाँ नमस्कार सुमा।
0: और चंपा बहन, तबीयत आपकी कैसी है?
1: हाँ पहले से तो बेहतर
0: मौसम में
1: है।
0: इतना बदलाव हो रहा है, गर्मी इतनी पड़ रही है, ऐसे में जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, है ना
1: ध्यान
0: चंपा बहन? और वैसे
1: कखनो कखनो ध्यान राखब बिसर जाए छे, तकर परिणाम
0: हाँ,
1: भुगतो पड़ी है।
0: सही बात है।
1: तो
0: जो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देता है उसे बाद में भुगतना पड़ता ही है। लेकिन आज है 23 जून चंपा बहन,
1: हाँ
0: और आज हम प्रत्येक वर्ष आज ही के दिन प्रत्येक वर्ष को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र जनसेवा दिवस भी मनाता है, हम सभी
1: अच्छा
0: मनाते हैं।
1: हाँ
0: और इस दिवस का जो उद्देश्य है कि जन सेवा के क्षेत्र में जो हमारे कार्यरत कर्मचारी हैं, जो ऐसी संस्थाएं हैं जो अपना योगदान देती हैं, उनको सम्मानित करना तथा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सार्वजनिक सेवाओं की भूमिका को रेखांकित करना है।
1: हाँ सही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस से जुड़ल मुख्य बिंदु एना है। एहि दिवस के स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2002 के पारित संकल्प के माध्यम से कैल
0: जी
1: गेल छल।
0: हाँ हाँ
1: अकर बाद से प्रत्येक वर्ष 23 जून के अकरा वैश्विक स्तर पर मनाओल जाइत अछि।
0: जी जी
1: अकर मुख्य उद्देश्य लोक के सार्वजनिक सेवा के महत्व, जना कि अहाँ कहलहुँ, आ गुण के प्रति जागरूक करब अछि। ई दिन लोक प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही आ नवाचार के प्रोत्साहित करब अछि।
0: और चंपा बहन, ये दिवस जो है सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित प्रशासन को बढ़ावा देने का संदेश भी देता है।
1: हाँ
0: और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जैसा कि आपने कहा, कि वर्ष 2002 में एक प्रस्ताव पारित किया, और उसी प्रस्ताव के बाद से 23 जून को जन सेवा दिवस के रूप में इसे मनाने की घोषणा की। इसके बाद

0: से ही ये दिवस विश्व के विभिन्न देशों में सरकारी सेवाओं के महत्व और जनहितकारी कार्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हम सभी मनाते हैं।
1: हाँ, देखियो, विशेष अवसर पर प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र जन सेवा पुरस्कार प्रदान कर जाते
0: हैं। जी हाँ,
1: ये पुरस्कार सार्वजनिक क्षेत्र के उत्कृष्ट आ रचनात्मक काज के मान्यता दैत अछि जे विश्व भरि में अधिक प्रभावी आ उत्तरदायी प्रशासन के बढ़ावा दैत अछि।
0: बिल्कुल चंपा बहन, और जन सेवा के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो जन सेवा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला होती है और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सेवाएं जो हैं नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। और जन सेवक जो होते हैं समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी

0: स्वास्थ्य है, पेयजल, बिजली, सड़क, सामाजिक सुरक्षा और अन्य सेवाएं जो हैं नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाती है। और जन सेवक जो होते हैं समाज और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करते हैं।
1: हाँ, सही कहा जी। संयुक्त के चार आर उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाकर रखब, राष्ट्रक बीच मैत्रीपूर्ण संबंध के विकास करब, वैश्विक समस्या के हल करब और मानवाधिकार के बढ़ावा देव में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करब एवं यही सामान्य लक्ष्य पूरा करे के लिए राष्ट्र के गतिविधि में सामंजस्य स्थापित करे हेतु एक केंद्र के रूप में काज करब।
0: सही बात है। और ये जनसेवा का जो मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर हम लोग बात करें चंपा बहन, तो नागरिकों की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करना, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको सशक्त बनाना और विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, पारदर्शी एवं उत्तरदायी प्रशासन सुनिश्चित करना, साथ ही साथ सामाजिक न्याय और समान अवसर उपलब्ध कराना। लेकिन अभी के समय में अगर आधुनिक समय की बात करें चंपा बहन, तो अभी जो जनसेवा में आजकल सभी हम डिजिटल युग की बात करते हैं, तो डिजिटल युग में जनसेवा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। ई गवर्नेंस है, ऑनलाइन सेवाएं हैं, डिजिटल भुगतान विकास हो रहा है और जन शिकायत कारण पोर्टल है, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ये जो सरकारी सेवाएं हैं वो अधिक सरल हो गई है, सुलभ हो गई है और बहुत ही प्रभावी हो गई है और बहुत जल्दी, मतलब जो काम कागजी रूप में होता था, कागज के रूप में तो लंबा समय लगता था, लेकिन
1: दिन दो दिन समय लगे कि हाँ आई एप्लीकेशन लिखो, कल फाइल करो, अखन नहीं चाहिए, यहाँ सोचो मिनटों में।
0: तो कोई भी पुराना दस्तावेज है उसको भी एक साथ एक जगह उसको एकत्रित करके सुरक्षित रखने का ये जो डिजिटल है उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो भारत में जनसेवा की जो भूमिका है वो विभिन्न सरकारी विभाग, पंचायतें, नगर निकाय, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, पुलिसकर्मी तथा प्रशासनिक अधिकारी जनसेवा के माध्यम से देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की अनेक ऐसी योजनाएं हैं और जनसेवकों के अथक प्रयास से ही जनता तक पहुंच पाती है। तो आज ये जनसेवा दिवस है, तो इसमें जनसेवा से जुड़े सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं और उनके जो कार्य है उनके योगदान को हम सम्मान करते हैं। तो इसी बात पर क्यों ना एक गीत हो जाए।
1: हाँ,
0: चंपा बहन,
1: हाँ,
0: तो हम लोग अनिल कुमार अकेला से सुनते हैं ये लोक भजन।

0: वाह, अवध नगरिया से एकदम माँ सीता के जो मन भाव है उसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस लोक भजन में लिखा गया और इसे स्वरबद्ध किया हमारे अनिल कुमार अकेला जी ने उसी भाव
1: बहुत
0: से।
1: बढ़िया। तो लोकगीत के खासियत है जी कि अहाँ के जो भावना है जे व्यक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, वो गीत के माध्यम से व्यक्त कर सकै छी।
0: सही बात है। और शब्द तो भी ऐसे ही होते हैं कि जो बिल्कुल एकदम दिल को छू जाते
1: हाँ,
0: हैं
1: बहुत
0: कि
1: बहुत
0: जिस
1: बढ़िया।
0: तरह की स्थिति है या जो भी उस समय का क्षण है उस क्षण को किस तरह से लोग अपने शब्दों और गायकी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। सचमुच बहुत सुंदर ये लोक भजन अनिल कुमार अकेला की आवाज में सुन रहे थे। और
1: हाँ,
0: चंपा बहन, आगे भी समय मिलेगा तो हम इनसे और भी गीत सुनेंगे। हाँ,
1: निश्चित। हाँ,
0: और अभी जैसा कि मौसम में कभी कभी बदलाव हो रहा है कि कभी प्रचंड गर्मी और अचानक आप देख रही होंगी कि थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो जा रही है। हाँ, तो यही जो मौसम होता है ना बीमारी का जड़ भी होता है, कई तरह की बीमारियां लेकर आता है और ऐसे में हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो
1: निश्चित।
0: इसमें तो हमारा दायित्व तो बनता ही है कि हम अपने पर्यावरण का संरक्षण करें, पर्यावरण को बचा कर रखें, लेकिन हमारे जो जीव जंतु हैं वो भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं
1: हाँ,
0: पर्यावरण को बचाने में, उसके
1: बचावाना।
0: संरक्षण में। तो अभी हम एक वार्ता सुनवाने जा रहे हैं जिसका विषय है कि पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतुओं की भूमिका,
1: भूमिका।
0: और वार्ताकार हैं राकेश कुमार मिश्र। तो सुनते हैं ये वार्ता।

आज हम ऐसे विषय पर गहन चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध हमारे अस्तित्व से है, अर्थात जो संसार के अस्तित्व का आधार है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारा विषय है पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतुओं की भूमिका। पर्यावरण का तात्पर्य है परिजोर आवरण, अर्थात वैसा आवरण जो हमारे चारों ओर आवृत है। पर्यावरण के विषय में अनेक अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख है नियतिवादी अथवा निश्चयवादी अवधारणा डिटर्मिनिज्म। यह अवधारणा मानव को पर्यावरण का ही एक तत्व मानते हुए मानव जीवन को प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर मानता है। दूसरा है संभववादी अवधारणाएं पॉसिबलिज्म। यह अवधारणा मानव को पर्यावरण का एक सक्रिय तत्व मानते हुए कहता है कि मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर चुका है एवं प्रकृति के हर प्रकार का परिवर्तन मानव द्वारा किया जा सकता है। तीसरी अवधारणा है नव नियतिवादी अवधारणा नियो डिटर्मिनिज्म। यह अवधारणा उपर्युक्त दोनों ही अतिवादी अवधारणा का खंडन करते हुए मानता है कि प्रकृति का अत्यधिक दोहन विनाशकारी हो सकता है, इसलिए मानव को चाहिए कि मानव प्रकृति की सीमाओं को समझे और अपने विकास की नीतियों का निर्धारण करे। चौथी अवधारणा है कृतिवाद वोलेंटरिज्म। इस अवधारणा के अनुसार मानव पर्यावरण को एक सहनीय स्थिति तक अथवा संभाविता स्थिति तक परिवर्तित कर सकता है। पांचवी अवधारणा है मानकी दृष्टिकोण नॉर्मेटिव अप्रोच। इस अवधारणा के अनुसार मानव एवं पर्यावरण के अंतर संबंधों को सर्वोत्तम अथवा आदर्श स्थिति के रूप में प्रतिपादित किया गया है। छठी अवधारणा है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण इकोलॉजिकल अप्रोच। इस अवधारणा के अनुसार मानव को पारिस्थितिकी तंत्र का एक घटक मानते हुए पर्यावरण के साथ उसके संबंधों को पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के अंतर्गत समाहित करता है। तथ्यों और अवधारणाओं के आलोक में कहा जा सकता है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले तंत्रों से इसकी रचना होती है। ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबद्ध इंटरलिंक्ड होते हैं। भौतिक तत्व यथा स्थान स्वरूप जलीय भाग जलवायु मृदा शैल तथा खनिज एवं मानव निवास क्षेत्र की परिवर्तनशील विशेषताओं और उसके सु अवसरों तथा प्रतिबंधक अवस्थितियों को निश्चित करते हैं। भारतीय सनातन वांग्मय के अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त से इसे समझा जा सकता है माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह सूक्त हमारे धरती और पर्यावरण को परिभाषित करता है। वस्तुतः पर्यावरण भौतिक एवं जैविक संकल्पना है जिसमें पृथ्वी के अजीवित तथा जीवित दोनों संघटकों को सम्मिलित कर इसे दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया गया है। नंबर एक है भौतिक पर्यावरण और नंबर दो है जैविक पर्यावरण। पर्यावरण संरक्षण में जितना महत्वपूर्ण योगदान मानव का है उतना ही अत्यधिक योगदान जीव जंतुओं का भी है। प्रकृति का संतुलन जीवों के बिना असंभव है। प्रकृति का हर एक तंत्र चाहे वो जंगल हो नदियां हो महासागर हो हवा हो पानी हो वृक्ष हो कृषि हो जीव जंतु कीड़े मकोड़े अथवा मानव ही क्यों न हो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। या यूं समझे कि प्राणी मात्र के साथ जीव जंतु एक जाल की तरह बंधे हुए हैं। पर्यावरण की हरियाली और संतुलन दोनों को एक सूत्र में बांध कर बनाए रखने में उन छोटे छोटे जीवों कीटों सहित विशालकाय वन जीवों का अमूल्य योगदान है। एक सामान्य तितली से लेकर हाथी तक हर जीव इस पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जीव जंतु मानव और पर्यावरण ये तीनों ही संतुलन बनाकर इस सृष्टि को चलाते हैं। जीव जंतु मानव और पर्यावरण ये तीनों ही संतुलन बनाकर इस सृष्टि को चलाते हैं। जीव जंतु और मानव एक दूसरे के पूरक हैं। जीव जंतु हमारे लिए भोजन वस्त्र आवास स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे अनेक आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं। जीव जंतु हमारे कृषि में हमारी मदद करते हैं। जीव जंतु ही विभिन्न रूपों में हमारे परिवहन का साधन होते हैं और कई उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में वैज्ञानिक अनुसंधान में भी सहायक बनते हैं। साथ ही साथ मानसिक भावनात्मक

0: स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, गाय, मधुमक्खी, मछली, मुर्गा, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, सुअर, इन पालतू पशुओं द्वारा हमें दूध, अंडे, मांस सहित आवश्यक खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। साथ ही साथ वस्त्र हेतु कच्चा माल यथा ऊन, चमड़ा, रेशम जैसे उत्पाद सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। परिवहन और कृषि हेतु बैल, घोड़े, खच्चर, हाथी, ऊंट जैसे जानवर हमारे जीवन में महती भूमिका निभाते रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान तथा चिकित्सा अनुसंधान में चूहों और बंदरों जैसे जानवरों का उपयोग बीमारी को समझने और नई दवाइयों की खोज में सहायक होते रहे हैं। पर्यावरण संतुलन में मधुमक्खियां, तितलियां जैसे कीट परागण में हमारी मदद करते हैं, जो फलों, फूलों और सब्जियों के लिए अति आवश्यक है। जानवर सिर्फ जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी हमारे लिए, पर्यावरण के लिए, प्राणी मात्र के लिए उपयोगी होते हैं। किसी भी जानवर का शव न केवल अन्य मांसाहारी जीवों को भोजन प्रदान करता है बल्कि इसके साथ ही आसपास उगने वाले पौधे के विकास में भी योगदान करता है, जो कि अनेक शाकाहारी जीवों और उनके शिकारियों को भी आकर्षित करता है। मांसाहारी जीव यथा बाघ, शेर, भेड़िया आदि जानवर खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर होते हैं। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित रखते हैं। हाथी अपने रास्ते के पेड़ों को गिराकर छोटे छोटे पौधे को बढ़ने का मौका देते हैं। व्हेल, स्तनधारी जीव जो मछली की तरह दिखती है, अपने मल के माध्यम से समुद्र में फाइटोप्लांकटन के विकास में मदद करते हैं, जो वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। मेढक, छिपकली और पक्षी हानिकारक कीटों को खाकर प्राकृतिक तरीके से फसलों की रक्षा करते हैं। मेढक जैसे जीव वायु और जल प्रदूषण के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। इनकी आबादी में कमी प्रदूषण के उच्च स्तर का संकेत देती है। हमिंगबर्ड, सनबर्ड, मधुमक्खी, तितलियां जैसे जीव जंतु परागण, बीज फैलाव, पोषक तत्व चक्रण और खाद्य श्रृंखला को बनाए रखकर पर्यावरण में योगदान करते हैं। कौआ, मैना, बुलबुल, तोता, कबूतर जैसे अनेकानेक पक्षी तथा भालू, बंदर, हाथी जैसे जानवर फलों को खाते हैं और घूम घूम कर मल का त्याग करते हैं। इसी मल के माध्यम से बीज दूर दराज फैल जाता है, जिससे नए जंगल पैदा होते हैं। केचुए, चींटियां आदि जैसे जीव मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, जिस कारण इन्हें हलवाहा जीव भी कहा जाता है। ये जीव इस माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन की मात्रा को संतुलित करते हैं, जिस कारण पर्यावरण के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। गिद्ध, लकड़बग्घा और कुछ कीट मृत और सड़ते हुए जीवों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है। एक छोटी सी चिड़िया एक दिन में करीब 1000 कीट खा जाती है, जिस कारण फसलों का रक्षण होता है। एक दीमक के टीलों में सूक्ष्म जलवायु तैयार होता है, जो तापमान को नियंत्रित करता है। व्हेल, स्तनधारी जीव अपने शरीर में कई टन कार्बन संग्रहण करती है और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो समुद्र में डूब जाती है, जिस कारण कार्बन हजारों वर्षों तक महासागर में सील हो जाता है, जो व्हेल कार्बन सिंक कहलाता है। गाय, भैंस के गोबर से जैविक खाद तथा गोमूत्र से प्राकृतिक कीटनाशक बनता है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि जीव जंतु पर्यावरण के मौन प्रहरी हैं। यह केवल प्रकृति की शोभा ही नहीं बल्कि पृथ्वी की संतुलन प्रणाली के मूल आधार हैं। अगर ये जीव जंतु ना हो तो पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण संवर्धन जैसे अवधारणाओं का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए तो मगमिश्र ने कहा है कि पृथिव्याम यपि जीवा परस्परम पोषणाय भवन्ति, अर्थात पृथ्वी पर जो भी जीव हैं वो एक दूसरे के पोषण करता है। इसलिए तो पंचतंत्र में लिखा है कि वृक्षसम चित्वा पशून हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्दवेम गम्यते स्वर्गे नरक केन गम्यते, अर्थात पेड़ों को काटने वाले को, पशुओं की हत्या करने वाले को और मिट्टी में बेवजह रक्त को मिलाने वाले को स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सभी मिलकर पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतुओं, पारिस्थितिकीय तंत्रों और मानव मूल्यों को समझे और पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतु का संरक्षण करे।
1: वाह, कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें हमारे वार्ताकार राकेश कुमार मिश्र जी ने

0: दिया कि जो ये हमारे जीव जंतु है पर्यावरण संरक्षण के लिए मौन प्रहरी के रूप में काम करते हैं।
1: एकर जानकारी हमरा सबके कम छल,
0: हाँ,
1: लेकिन एतेक विधिवत जानकारी दिलन कि सब कीड़ा मकोड़ा सब अपन सभक अस्तित्व निक सब दूसरा के पूरा कह मनुख के जीवन असगरे नहीं जीव
0: सही
1: जीवन होते सब जीव के में समावेश सबके शामिल
0: एकदम
1: होए बहुत जरूरी।
0: हम लोग सिर्फ बात करते हैं कि मनुष्य ही काम करते हैं, लेकिन हमारे आसपास इतने छोटे बड़े जीव जंतु है जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं पर्यावरण संरक्षण।
1: हम सब नहीं देख पावे छी,
0: हाँ हाँ,
1: मुदा ओकरो सबके अस्तित्व महत्वपूर्ण
0: महत्वपूर्ण है। तो और साथ ही साथ कितने अच्छी तरह से उन्होंने कहा कि परागण में कृषि में ये सहायता करते हैं, मधुमक्खी तितलियां तथा अन्य कीट फूलों के परागण में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो जीव जंतु है पर्यावरण के लिए एक दूसरे के पूरक है, तो पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बनाए रखने में हमारे जीव जंतु की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अच्छी जानकारी के लिए हम राकेश कुमार मिश्र जी को धन्यवाद देते हैं। हम लोग सुन रहे थे वार्ता पर्यावरण संरक्षण में जीव जंतुओं की भूमिका। तो अब एक लोकगीत हो जाए,
1: हाँ।
0: तो हमारे कलाकार अनिल कुमार अकेला जी से सुनते हैं ये पूर्वी लोकगीत।

0: वाह, बहुत सुंदर। सिरवा मटुकिया धैलन, अनिल कुमार अकेला से हम लोग सुन रहे थे ये पूर्वी लोकगीत। और
1: हाँ।
0: इनको इस गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। और चंपा बहन, चौपाल कार्यक्रम का समय
1: संपन्न भ रहल अछि।
0: हाँ, और अब हम लोग थोड़ी देर में खेती गृहस्थी की बात करेंगे।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: तो चंपा बहन,
1: हाँ।
0: वैसे तो खेती बाड़ी में कई तरह के हम लोग खेती करते हैं। हमारे किसान भाई फसल उगाते हैं, आम उगाते हैं, बाग लगाते हैं, लेकिन साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए आजकल कई तरह के छोटे छोटे मतलब व्यवसाय भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं, जिसमें बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मधुमक्खी पालन है, साथ ही साथ मछली पालन।
1: देखियो, मछली पालन के यहाँ छोट व्यवसाय नहीं कहियो।
0: हाँ
1: हाँ, ये लाखों करोड़ों के का टर्नओवर है। आवश्यकता है कि किसान कते मेहनती छथि, उनका पास व्यवस्था कते के है, से है। तो मछली पालन माने एक कम लागत में कम समय,
0: समय में
1: शुरू कर सके छी, जेकर माने बहुत अधिक से अधिक एकर उत्पादन कर कर
0: बिल्कुल
1: एकर व्यवसाय बढ़िया आमदनी।
0: हाँ।
1: और सशक्त किसान है।
0: सही बात है, बिल्कुल सही बात कही चंपा बहन, कि ये ना केवल किसानों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि देश में पोषण और रोजगार के अवसर भी ये उपलब्ध कराता है।
1: माने जतेक हम सब छी समाज में, करीब 95% माछ मांस खाए वाला छी, तो माछ लोग किनबे करैया। तो किनबे जखन करैया तो देखिए कि कौन माछ बेहतर है, कौन नीक है। तो जे किसान लोकक स्वाद बुझ के माछ के पालन करै छथि,
0: सही बात है,
1: तो सही में हुनकर व्यवसाय के कोनो अंत नहीं छै। आ इहो नहीं छै कि अखन भेल 2 महीना तकरा बाद नहीं है,
0: नहीं तो सालों भर करने वाला।
1: हाँ,
0: व्यवसाय
1: एक बेर अहाँ जो ओकर बड़का माछ निकाल ली, फिर जीरा डाल दी, फिर अहाँ
0: दूसरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: आई यहाँ के एके टन हमरा बेच के, तो मैं एके टन निकालूँ।
0: सही बात है, जितना हाँ बेचना है। हाँ। जितना आपको चाहिए उतना
1: बाकी पानी में
0: छोड़ दे। बिल्कुल,
1: तो बहुत ही आसान और बहुत ही सशक्त एक व्यवसाय है।
0: और यदि हम लोग मछली पालन वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो कम लागत में अधिक लाभ भी प्राप्त होता है, लेकिन इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना जरूरी है। और इसके लिए कि हम जानते हैं कि हमारा जो भारत है जल संसाधनों से समृद्ध देश है, तालाब है, झील है, नदियां हैं, जलाशय है, जहां मछली पालन के लिए उपयुक्त वातावरण भी मिलता है। तो मछली खाने से इससे प्रोटीन, विटामिन और खनिज तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। तो मछली पालन में ध्यान देने योग्य अगर बात क्या होनी चाहिए इसकी अगर बात करें। हाँ। तो तालाब का चयन,
1: देखियो तालाब के चयन तो पहल, और तालाब के काते काते केरा के पौधा लगाव के चाहिए। तालाबक पानी के सफाईक लेल केरा के पात काट के पोखर में डाल देवा के चाहिए। किसान माछ पालन के दुगुना फायदा कमाब चाहे छी, तो तालाबक आसपास किछ तरह के गाछ वृक्ष लगाब के चाहिए।
0: अच्छा।
1: ऐसा माछ के भरपूर मात्रा में भोजन व अन्य किछ और सुविधा सेहो भेटे छै। पेड़ लगाब से माछ के प्राकृतिक भोजन भेटे छै, चाहे आम अमरूद, मान लीजिए कि 2-4 गो में खसि पड़ल तो माछक ओ आहार भ जाए छै, भोजन भ जाए छै, एक तरह से प्राकृतिक भोजन
0: हो जाता है।
1: आ केरा के गाछ ओकरा लेल बहुत उत्तम है छै, ओकर फले खसि पड़ल या ओकरा ओ जड़ के रस से सेहो अपन भोजन प्राप्त करे दे छी। आ ओकर पात से नदी के साफ सफाई से हो सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ई नव तरकीब नव वयस्क के माछक पालक द्वारा बेसी अपनायल जा रहा है।

0: रूपसँ ध्यान देबऽके जरूरत अछि कि पात जे होयबाके चाही ओ मुलायम होयबाके चाही, केराके पात जे आसानीसँ सड़ि गेल जाय।
1: अच्छा,
0: जनरली हमसब सहजनके बात करै छी वा जामुनके पौधा लगाबऽके, एकर अलावा कम पतझड़वला पौधा सेहो लगाओल जा सकैत अछि। रातिमे बीच तालाबमे बल्ब लगेलासँ कीड़ा आकर्षित भऽ कऽ बल्बके नजदीक अबैत अछि आ टकरा कऽ तालाबमे गिरैत अछि। ई आधुनिक तरीका अछि कम खर्चमे बेहतर माछक उत्पादन करब।
1: बहुत बढ़िया, सही बात है। और जब तालाब का चयन करते तो इसमें यह भी तो जरूरी होता है चंपा बहन कि उसके साफ सफाई का भी हम लोग ध्यान रखें। हाँ, समय समय
0: समय
1: पर। हाँ, कीचड़, अगर उसमें कीचड़ है तो कीचड़ को निकालना तालाब से, और चूना और जैविक खाद का प्रयोग आवश्यक है ताकि जल की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। हाँ, मलमूत्र नहीं फेंके तो साफ सफाई,
0: मवेशी के चाहे
1: वन, हाँ,
0: वो सबसे साफ सुथरा,
1: क्योंकि वही मछली वहां पल रहा है उसी मछली का सेवन हम लोग कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: तो साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
0: जरूरी।
1: और उपयुक्त मछली प्रजाति का चयन स्थानीय जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार भी करना चाहिए, ताकि जैसे रोहू हो गया, कतला हो गया, ग्रास कार्प हो गया, और साथ ही साथ सिल्वर कार्प, ये सभी प्रजातियां जो है सामान्यतः अधिक लाभदायक मानी जाती है। अगर हम स्वस्थ मत्स्य बीज का प्रयोग करेंगे तो मछली के बच्चे जो है स्वस्थ होंगे, रोग मुक्त होंगे। अच्छे बीज से मछलियों की वृद्धि तेज होगी और मृत्यु दर में भी कमी होगी। इसके साथ साथ चंपा बहन, जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन, उचित तापमान, संतुलित पीएच स्तर होना चाहिए, और दूषित पानी जो है मछलियों में रोग फैलाने का कारण भी बन सकता है। तो ये सब बातें हैं कि हम मछली पालन अगर कर रहे हैं तो ये इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग अनिल कुमार अकेला से सुनते हैं एक झूमर लोकगीत।
0: लोकगीत

0: वाह, बहुत सुंदर
1: हाँ
0: ये झूमर गीत हम लोग सुन रहे थे। और कुंदन बहन, अभी हम लोग सुनेंगे कृषि आधारित उद्योग करने हेतु सरकारी सुविधाएं, इस पर एक वार्ता। और हमारे वार्ताकार हैं पंकज
1: पंकज
0: कुमार।
1: कुमार।
2: भारत विश्व में आज सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत में कृषि आधारित उद्योगों को महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्रीय आय में लगभग 15% के साथ कृषि देश की 65% आबादी को रोजगार और आजीविका भी प्रदान करती है। कृषि आधारित उद्योग धंधों में कपास, गुड़, फल और सब्जी, तेलहन, सोयाबीन, जूट और अन्य प्रमुख उद्योग शामिल हैं। कृषि आधारित उद्योगों में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से सुधार हुआ है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई सरकारी योजनाओं में प्रमुख हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्टअप आदि। कृषि आधारित उद्योगों के लिए नई प्रौद्योगिकी, तकनीक एवं उन्नत मशीनों की सहायता ली जा रही है, जिनसे ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं एवं किसानों को स्वरोजगार के साथ आय बढ़ाने की और आर्थिक आजादी मिली है। कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ाने की दिशा में सरकार कृत संकल्प है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए सड़क, बिजली, पानी, आसान ऋण, सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा की व्यवस्था मजबूत की गई है। क्वालिटी टेस्टिंग लैब और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी बढ़ाई गई है। कृषि आधारित उद्योग कम निवेश में ग्रामीण क्षेत्रों में आय और रोजगार प्रदान करने वाले होते हैं। ये उद्योग कृषि आधारित कच्चे माल के प्रभावी और कुशल उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं। कृषि आधारित कुछ उद्योगों जैसे प्रसंस्कृत खाद्य और खाद्य पदार्थों में जबरदस्त निर्यात क्षमता है। सरकारी योजनाएं हैं कृषि आधारित उद्योग में पूंजी व्यवस्था एवं संसाधन जुटाने में सरकारी योजनाओं द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि आधारित उद्योगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लाभ और रोजगार कमाया जा सकता है। कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस योजना के द्वारा भारत सरकार कम पढ़े लिखे युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलाते हैं। देश के युवाओं को उद्योग से जुड़ा प्रशिक्षण देकर उनकी योग्यता अनुसार रोजगार के काबिल बनाते हैं, जिससे युवाओं की तरक्की हो सके। यह योजना कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से चलाई जाती है। इस योजना में 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है और कोर्स पूरा करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे पूरे देश में मान्यता प्राप्त है। इस योजना के लिए युवाओं को ऋण प्राप्त करने की भी सुविधा है। भारत सरकार ने नई कई टेलीकॉम कंपनियों के साथ जुड़कर मैसेज के द्वारा इस योजना को सभी लोगों तक पहुँचाने का कार्य किया है। मैसेज करके एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है, जिस पर आवेदक को मिस कॉल देना होता है। मिस कॉल के बाद IVR सुविधा से जुड़कर आवेदक को अपनी पूरी जानकारी निर्देशानुसार भेजनी होती है। आवेदक के द्वारा भेजी गई जानकारी कौशल विकास योजना सिस्टम में सुरक्षित रख ली जाती है और यह जानकारी मिलने के बाद आवेदनकर्ता को उसके निवास स्थान के आसपास प्रशिक्षण केंद्रों से जोड़ दिया जाता है। प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री किसान संप्रदाय योजना कृषि उपज की आबादी को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संप्रदाय योजना के तहत खेत

लेकर खुदरा बिक्री केंद्र तक दक्ष आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन किया जाता है। इसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण में वृद्धि करना, खाद्य प्रसंस्करण आधुनिकीकरण करना, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाना, डेयरी एवं मत्स्य आदि कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर का सृजन करना, उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसंस्कृत खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। सरकार प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत सरकारी अनुदान, नाबार्ड और मुद्रा योजना के तहत आसान किस्तों और सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यह एक स्वयं सहायता समूहों के द्वारा अत्यंत गरीब परिवार की महिलाओं को शामिल करते हुए गरीब परिवार की अधिकता वाले क्षेत्रों में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करती है। इनके अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवार की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में प्रशासनिक सहायता से संगठित किया जाता है और उन्हें किसी एक कार्य में कौशल प्रदान किया जाता है जिसमें आमदनी की पर्याप्त संभावना हो। कुशलता प्राप्त करने के बाद उनके लिए किसी बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्था से ऋण की व्यवस्था की जाती है। भारत सरकार ने कुशल और प्रशिक्षित युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत देश के हर जिले में स्थित किसान विज्ञान केंद्रों के द्वारा कृषि आधारित उद्योग धंधों के लिए लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। प्रशिक्षण के उपरांत ग्रामीण महिलाओं, युवाओं और किसानों को उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सहायता से अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर ग्रामीणों की समस्याओं और चुनौतियों का निदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत बदलावों के उद्देश्य के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है। आज कृषि, पशुपालन और खाद्य पदार्थों के व्यवसाय से जुड़े लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। वर्तमान समय में देश भर में कृषि आधारित उद्यमों स्टार्टअप की हर क्षेत्र में भरमार है जो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके पीछे दो बड़ी वजह है, एक तो युवा स्वरोजगार की ओर स्वयं आकर्षित हैं, दूसरा कुछ नया करने का जुनून जो है वो भी इसके पीछे काम करता है। इसके अलावा सरकार और सरकारी योजनाएं भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। वक्त की जरूरत को देखते हुए सरकार ने हर क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे देश में लागू किया गया है। यह योजना मेक इन इंडिया की मुख्य भागीदार है। समाज के वंचित समुदायों के साथ साथ दिव्यांगजन और महिलाओं को भी कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। यह एक ऐसी पहल है जिसमें ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है। इस तरह दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसर प्रदान कर रही है। इसके अंतर्गत सरकार ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करती है। इसके बाद संबंधित उद्योगों में उन्हें रोजगार दिलाने में भी सहायता करती है। यह एक व्यापक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आज देश भर में 1100 से ज्यादा प्रशिक्षण केंद्र काम कर रहे हैं। ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान देश भर में गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीणों को रोजगार और प्रशिक्षण देने हेतु ग्राम स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, जिनमें कृषि संबंधी कार्यों के अलावा ग्रामीण उद्यमिता के अन्य व्यवसायों में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनका संचालन बैंकों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकारें इसमें साझेदार हैं। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। इसके बाद ग्रामीण युवा प्रशिक्षु के रूप में उद्योगों में प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना रोजगार आरंभ कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण के दौरान भारत सरकार द्वारा युवाओं की वित्तीय मदद भी की जाती है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का पलायन रोकने में यह योजना कारगर और लाभदायक सिद्ध होगी। एस्पायर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 में इनोवेशन और स्वरोजगार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे हाल के दिनों में नए प्रावधानों के साथ और अधिक उपयोगी बना दिया गया है। आकांक्षी उद्यमियों
को कृषि आधारित उद्योगों में प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दुग्ध पदार्थ, पशु आहार, दूध के संग्रहण और विपणन जैसे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिल सके।

0: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। जल संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप किसान मछली पालन के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में इसे अपना लेते हैं। छोटे तालाब बनाकर या तालाब को किराए पर लेकर भी व्यवसायिक ढंग से मछली पालन किया जा सकता है। मछली उद्योग से जुड़े अन्य कार्यों जैसे कि मछलियों का श्रेणीकरण एवं पैकिंग करना, उन्हें सुखाना और उनका पाउडर बनाना तथा बिक्री करने आदि से काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकता है। इस संभावना को देखते हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की गई है, परंतु इसका फायदा केवल मछली उत्पादक तक सीमित न रहे, इसके लिए मत्स्य उद्योग को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मत्स्य उद्योग से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का विकास, उपलब्ध सुविधाओं का आधुनिकीकरण और सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। मेगा फूड पार्क योजना। इस देश के कई भागों में मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत मेगा फूड पार्कों की स्थापना की गई है। इससे वहां रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिली है। मेगा फूड पार्क योजना का मूल उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और रिटेल कारोबारियों को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए एक मशीनरी उपलब्ध कराना होता है, जिससे कृषि उत्पादकों की बर्बादी को न्यूनतम, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। इससे ग्रामीण युवाओं और किसानों को बहुत फायदा होता है। इस योजना का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन से युक्त आधुनिक आधारभूत संरचना का विकास होगा, जिससे खेत का उत्पाद सीधे रिटेल आउटलेट तक पहुंच सकेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या कम करने के अलावा देश और ग्रामीण क्षेत्र की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। एग्री बिजनेस। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नाबार्ड के सहयोग से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने और कृषि में आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए एग्री बिजनेस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा फसल उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं प्राप्त फसल का मूल्य संवर्धन करना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को कृषि तकनीक और मैनेजमेंट तकनीक के बारे में प्रशिक्षित करने के साथ साथ स्वयं को एग्री बिजनेस सेंटर स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है। इसके तहत कृषि स्नातकों को कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बागवानी, रेशम उद्योग, डेयरी उद्योग, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन इत्यादि कृषि संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: अखन अपने लोकन वार्ता सुनलहुँ, जकर विषय छल कृषि आधारित उद्योग कैसे हेतु करने हेतु सरकारी सुविधाएं। वार्ताकार छलथि सोमा पंकज कुमार
2: जी,
1: तो हिनका बहुत बहुत धन्यवाद सब गीत के लिए।
2: नहीं, अब तो एक और गीत सुनेंगे हम लोग अनिल कुमार अकेला से, ये झूमर गीत।

0: वाह, बहुत सुंदर ये झूमर
1: हाँ
0: नई की कन्हैया। और हम अनिल कुमार अकेला जी को सभी गीतों के लिए धन्यवाद देते हैं चंपा बहन। और अब
1: हाँ
0: चलने का समय हो चला है तो हम लोग
1: हाँ
0: चलते हैं। नमस्कार चंपा बहन।
1: नमस्कार सोमा।

0: ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी

0: का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 65 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, एनडीए सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों के अनुसार श्रेष्ठ भारत के लिए कर रही है कार्य। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल राज्य भर में सिपाही भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। रेलवे आज और कल 27 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का कर रहा है परिचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 56 पद्मश्री सहित कुल 65 पद्म अलंकरण प्रदान किए। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा और पूर्व न्यायाधीश केटी थॉमस को समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पार्श्व गायिका अलका याग्निक, सुविख्यात टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज और अभिनेता ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री से विभूषित किया गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल की शुरुआत नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम है। इससे नीलामी संबंधी गतिविधियों को सुगम बनाने और किसानों और कृषि संस्थाओं के हित में नेफेड की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने किसानों की सीधी भागीदारी को मजबूत करने के लिए खरीद कार्यों में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करने का आह्वान किया है।
2: आने वाले 2 सालों में सहकारिता मंत्रालय सुनिश्चित करेगा कि दलहन का एक दाना भी एनसीसीएफ और नाफेड में व्यापारियों के माध्यम से न आए, सीधा किसानों के माध्यम से आए, जिससे मुनाफा पूरा किसानों के पास। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर को नीचे तक पहुंचाना है और उसमें मैं मानता हूं कि नाफेड और एनसीसीएफ ने भी दृढ़ता के साथ शुद्ध तरीके से काम करने की शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी जाकर परिणाम मिलेंगे।
1: नेफेड की प्रगति का जिक्र करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह संगठन आज 74 लाख किसानों की सेवा करने वाला एक मजबूत संस्थान बनकर उभरा है।
2: नाफेड ने एक प्रकार से नेफिक्स.इन, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ, 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ

0: 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दूरदर्शी विचारों और संकल्पों को साकार किया जा रहा है। श्री चौधरी पटना स्थित भाजपा कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक श्री मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने उनकी स्मृति में पटना में एक भव्य पार्क बनाने की घोषणा भी की है।
2: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हम सभी लोगों को याद रखना होगा, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आपकी विचारधारा पार्टी की विचारधारा को मुख्य धारा में रखना है और आपको स्वस्थ करते हैं। अगले साल जब इसी दिन हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यक्रम को मनाएंगे, उस दिन

0: कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने उनकी स्मृति में पटना में एक भव्य पार्क बनाने की घोषणा भी की है।
1: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हम सभी लोगों को याद रखना होगा, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। आपकी विचारधारा, पार्टी की विचारधारा को मुख्य धारा में रखना है और आपको स्वस्थ करते हैं। अगले साल जब इसी दिन हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कार्यक्रम को मनाएंगे, उस दिन एक भव्य नया पार्क डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को होगा।
0: भारतीय जनता पार्टी आपातकाल की वर्षगांठ के अवसर पर 25 जून को राज्य भर में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता पवन जायसवाल ने आज पटना में प्रेस वार्ता में बताया कि इस अवसर पर पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जेपी सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा कल प्रदेश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसे लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इधर रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज और कल कुल 27 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि आज रात पटना, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया, भभुआ रोड और नवगछिया समेत विभिन्न स्टेशनों से सहरसा, सिवान, बेतिया, अररिया, पूर्णिया और मधुबनी के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वहीं कल बिहार शरीफ, राजगीर, क्यूल, नवादा, बक्सर, झाझा, गया, सुपौल, बेतिया, पूर्णिया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और कटिहार समेत विभिन्न स्टेशनों के बीच 18 परीक्षा विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने ऋण वितरण को लेकर बैंकों के खराब प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि ऋण वितरण में बैंकों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के मुकाबले अब तक बहुत कम ऋण वितरित किया जाना चिंता की बात है। श्री यादव ने बैंक अधिकारियों को प्रदर्शन सुधारने की चेतावनी भी दी है। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में लापरवाही किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। श्री कुमार आज पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग का उद्घाटन के बाद समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री कुमार ने बैठक में पीएमसीएच के किसी भी वरीय अधिकारी की मौजूदगी नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 5 चीनी मिलें खोलने का लक्ष्य रखा गया है। पटना में गन्ना नर्सरी योजना और डिजिटल गन्ना सर्वेक्षण अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि गन्ना आधारित उद्योगों के समग्र विकास के लिए विभाग ने कोयम्बटूर स्थित गन्ना प्रजनन संस्थान और IIT पटना के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचार

0: के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRNews_Patna को फॉलो कर सकते हैं। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में पिछले दिनों हुए पुलिस मुठभेड़ मामले में जगदीशपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और तत्कालीन शाहपुर थाना अध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुठभेड़ में मृत युवक भरत तिवारी की मां के बयान के आधार पर इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत सुजावलपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने फैक्ट्री के संचालक इम्तियाज अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक बेस मशीन, एक बैरल, 3 अर्धनिर्मित मैगजीन सहित हथियार बनाने के कई सामान बरामद किए गए हैं। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता दिख रही है। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार आज दोपहर बाद भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और आसपास के जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में अनेक स्थानों पर आंधी बारिश की आशंका है। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात भी हो सकता है।
1: दिनांक 24 जून राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, जहानाबाद, पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में लू की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर वज्रपात की घटना दर्ज की गई। हमारे बेगूसराय संवाददाता ने बताया है कि बलिया प्रखंड में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगामी मॉनसून के दौरान प्रदेश के विभिन्न भागों में संभावित बाढ़ की स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। सुपौल जिले में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा के क्रम में जिला आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता मोहम्मद तारिक और सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी चंद्रभूषण कुमार ने आज जिले के किशनपुर और सरायगढ़ अंचल का निरीक्षण किया। इधर किशनगंज के जिलाधिकारी नवीन कुमार ने जिले में संभावित बाढ़ और कटाव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। जिलाधिकारी ने बैठक में राहत और बचाव कार्य, आश्रय स्थलों, चिकित्सा सुविधाओं, पेयजल व्यवस्था तथा NDRF SDRF जवानों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त की है। रोहतास जिले में आरा सासाराम मुख्य मार्ग पर सिकटी गांव के पास एक सड़क दुर्घटना में बिहार पुलिस के कई जवान घायल हो गए। FCI के चावल लदे एक ट्रक ने पुलिसकर्मियों को लेकर जा रही बस में पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में 3 पुरुष और 9 महिला जवान घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल महिला पुलिसकर्मी नंदनी कुमारी को सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया है। विक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार ने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है।
2: ये जो कंपनी आ रही थी बेगूसराय से आ रही थी, बेगूसराय से यहाँ रोहतास मुख्यालय में, फिर मुख्यालय से इनका जगह जगह मुहर्रम के अवसर पर थाना में पोस्टिंग किया गया था। तो उसी के क्रम में बस से ट्रेवल कर रहे थे तो एक FCI का ट्रक इनको पीछे से ठोकर मार दिया है। तो जिसमें कुल 9 फीमेल कांस्टेबल और 1 मेल कांस्टेबल इंजर्ड हो गए हैं।
0: वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा के तत्वावधान में निजी चैनलों की प्रतिस्पर्धा के बीच लोक प्रसारक, दूरदर्शन और आकाशवाणी की प्रासंगिकता को लेकर एक सर्वेक्षण किया जाएगा। विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय अकादमिक टीम और बोनाफाइड जर्नलिस्ट सोसाइटी विभिन्न चरणों में ये सर्वेक्षण करेगी। जहानाबाद के अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को लेकर नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अररिया जिले में 17 जून से 26 जून तक नशा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों और कार्यालयों में नशा मुक्ति को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सोनखर चौक के पास एक दोपहिया वाहन के शोरूम में अगलगी की घटना में कई वाहन जलकर नष्ट हो गए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बक्सर दौरे के दौरान प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कुमार ऋतिक को निलंबित कर दिया गया। नगर विकास एवं आवास विभाग ने यह कार्रवाई की है। मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बनौधा के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक ट्रक से 800 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने

0: तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 65 विभूतियों को विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, एनडीए सरकार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों के अनुसार श्रेष्ठ भारत के लिए कर रही है कार्य। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल राज्य भर में सिपाही भर्ती परीक्षा का होगा आयोजन। रेलवे आज और कल 27 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का कर रहा है परिचालन। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भागों में कई स्थानों पर आंधी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: ऑल इंडिया रेडियो।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।
1: मधेपुरा जिले के NH 106 पर फुलौत स्थित निर्माणाधीन कोसी मेगा ब्रिज का कार्य तेजी से चल रहा है। बीते दिनों जिले की प्रभारी मंत्री शीला कुमारी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर निर्धारित समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। लगभग 7 किलोमीटर लंबे इस 4-लेन पुल के बन जाने से बीरपुर से बिहपुर तक सीधा संपर्क स्थापित होगा, जिससे क्षेत्र में व्यापार, कृषि और आवागमन को बढ़ावा मिलेगा। इधर जिला सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल में 20 बेड का हाईटेक पोषण पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है। यहां नवजात शिशुओं से 5 वर्ष तक के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों का इलाज और विशेष देखभाल की जा सकेगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार यह केंद्र बच्चों के स्वास्थ्य सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व प्रसिद्ध बाबा सिंहेश्वरनाथ धाम में लगने वाले श्रावणी मेला की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिलाधिकारी अभिषेक रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, पंडाल, राहत शिविर और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए। 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा में जिले के 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। सफल अभ्यर्थियों में अखिलेश कुमार, मनिका सिंह, शुभम कुमार, राहुल कुमार, मोहम्मद आदिल सहित कई उम्मीदवार शामिल हैं। उनकी इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है। सफल अभ्यर्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और नियमित अध्ययन को दिया है। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और सही रणनीति के साथ किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।
2: मेरा नाम राहुल कुमार है। मैंने 70th BPSC में 1192 रैंक मिला है और रेवेन्यू ऑफिसर का पोस्ट मिला है। पहला तो श्रेय तो सबसे पहले मेरे घर वालों को, माता पिता को जाता है। फिर उसके बाद जो भी टीचर्स जिन्होंने हमें गाइड किया, उसके बाद खुद के मेहनत को, क्योंकि 4 साल तक मोटिवेट खुद को रखना, तैयारी करना, लॉन्ग पीरियड।
1: बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल

0: के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छातापुर के विधायक नीरज कुमार बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जब से 14 से कार्यभार संभाले तब से हमारी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत हुई और आर्थिक नीति ये हमारा जो है ये काफी ठोस रहा है, जिसके वजह से आज हमारा देश काफी मजबूत हुआ है आर्थिक दृष्टिकोण से। दूसरा जो हमारा विश्व स्तर पर जो हमारा काम था, सम्मान था, हमारा मान था, उसमें काफी बड़ा बदलाव हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रभाव के वजह से जो हम लोगों का प्रभाव पूरी दुनिया में रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि हम लोग कहीं पीछे नहीं है। राम मंदिर बन रहा है जो लगभग 500 साल से अटका हुआ था, और आतंकवाद लगभग खत्म हो गया है, नक्सलवाद गृह मंत्री जी के प्रयास से पूरी तरह खत्म हो गया, देश हमारा लगभग नक्सल फ्री होते जा रहा है, ये तमाम काम पूरे देश में हो रहा है।
0: बीते दिनों आम नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिले के विभिन्न निकाय क्षेत्रों में नगर सहयोग शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान मधेपुरा में बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मंच के तत्वावधान में नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 101 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर बल दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत विश्व माहवारी स्वच्छता को लेकर जिले में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान महिलाओं और किशोरियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर जीविका दीदियों ने रेड डॉट चैलेंज के साथ अपने हाथों पर लाल बिंदु बनाकर माहवारी के प्रति जागरूकता का संदेश दिया और इससे जुड़े सामाजिक मिथकों को दूर करने पर विशेष जोर दिया। जिले में भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय में माई बर्थ माई अर्थ मिशन की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई। अभियान के तहत अब तक 3000 से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और पौधों की नियमित देखभाल पर जोर दिया गया। इधर भारतीय जननाट्य संघ इप्टा मधेपुरा की ओर से विमेंस कॉलेज परिसर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और कलाकारों ने विभिन्न पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति दी। मधेपुरा जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गौशाला परिसर समेत अन्य संस्थानों में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया और योग के महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।
2: अभी आप सुन रहे थे मधेपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनीष कुमार वत्स।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में गीत, कलाकार हैं श्रीमती दे।

अभी आप श्रीमती डे की आवाज में गीत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे जानवर फिल्म का गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है काजल। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: अभी आप सुन रहे हैं एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं SH बिहारी और संगीतकार OP नैयर।
1: हुजूर आप आए कदम चूम लूं या के आंखें

0: हुजूर अब आए कदम चूम लूं।
1: कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे 20 साल बाद फिल्म का हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार होंगे शकील बदायूनी और संगीतकार हेमंत कुमार।
0: बहुत शुक्रिया।
2: हेमंत दा को हमने गायक के हिसाब से तो इतना नजदीक से नहीं देखा। वो मेरे पिता माता दोनों के बराबर थे बॉम्बे में। मेरी शादी उन्होंने ही करवाई। He was a greater man than a greater singer for me.
3: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी पसंद।

अभी आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल। कलाकार हैं रूपा सिंह।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गजल सुन रहे थे। कलाकार थे रूपा सिंह। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचारों के लिए।
1: संध्या के साथ।

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूती और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। जर्मनी में जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का दबदबा जारी। आज भारत ने 2 रजत सहित 3 पदक जीते। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं का समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शिष्टमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने 2026 में भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। बैठक के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संयुक्त रूप से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिक देवोभव की सोच के साथ अधिकारियों से शासन में नागरिकों को केंद्र में रखने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2024 बैच के 183 प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा सिविल सेवकों से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कार्य करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने युवा सिविल सेवकों से दृढ़ संकल्प, नवाचार और नागरिक केंद्रित शासन के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करने का आग्रह किया। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में हर नीति और प्रशासनिक निर्णय का उद्देश्य विकसित भारत का निर्माण होना चाहिए। श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान का निरंतर मूल्यांकन करने का भी आग्रह किया। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में तथा पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। एक रिपोर्ट।
2: इस साल सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। आज के समारोह में पद्म भूषण 7 लोगों को दिया गया, जिनमें पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और प्रख्यात गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं राजनेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें क्रिकेटर रोहित शर्मा, मशहूर अभिनेता आर माधवन और प्रसार भारती के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पत्ति शामिल हैं। वहीं प्रसिद्ध टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सतीश शाह को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल रहे। सुपर्णा सेके के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी।

0: समाचार दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार अल नीनो के कारण मॉनसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
1: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। इन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है और जो कठिन परिस्थितियों में भी अच्छी पैदावार दे सकती हैं। खान मंत्रालय ने 56 महत्वपूर्ण खनिज खंडों और 11 खनन अन्वेषण लाइसेंस खंडों की सफल नीलामी के साथ देश के खनिज मिशन को गति प्रदान की है। मंत्रालय ने नीलामी के सातवें चरण के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। इससे अब तक नीलाम किए गए खंडों की कुल संख्या 56 हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 88 खंडों की नीलामी हो चुकी है। इस चरण में ग्रेफाइट, दुर्लभ खनिज, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लोकोनाइट और रॉक फॉस्फेट जैसे खनिज शामिल थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए ट्रकों और बसों से बदलने के लिए सरकार डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मंत्रालय ने कहा कि ये समझौते के अंतर्गत मूल उपकरण निर्माता योजना के अंतर्गत खरीदे गए ट्रकों और बसों के एक्स शोरूम मूल्य पर 8% की छूट प्रदान की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों मंत्रालयों में राष्ट्रीय परिवहन गतिशीलता और किफायती आवाजाही व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। केंद्र का मुख्य उद्देश्य सड़क और परिवहन क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना, निवेश और नीति निर्माण में सहयोग के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करना होगा। विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि अमरीका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन होने के बाद से भारत आने वाले 11 जहाजों ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार किया है। इनमें भारतीय ध्वज वाले कच्चे तेल के 3 टैंकर के अलावा विदेशी ध्वज वाला एक LPG वाहक पोत, एक कच्चा तेल टैंकर और उर्वरक लदे 6 मालवाहक जहाज शामिल हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि कतर में हुए धमाके में मारे गए भारतीय नागरिकों के शवों को वापस लाने के लिए भारत सरकार कतर के साथ मिलकर काम कर रही है।
3: रास लफान परियोजना में जो वहाँ एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में 12 भारतीय नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा कुल 66 लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं, वो लोग सब लोग सुरक्षित हैं और हॉस्पिटल में उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है। ये 12 लोग के बारे में हम लोग कतर में वहाँ के सरकार के साथ और इनके परिवारजनों के साथ उनसे बातचीत हो रही है हमारी।
1: ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कल ईरान, इथियोपिया, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
3: ब्रिक्स NSA की मीटिंग चल रही है, कल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की चीन के विदेश मंत्री और वहाँ के पॉलिट ब्यूरो के जो चीफ हैं उनसे भी हमारे NSA की द्विपक्षीय वार्ता हुई और इसमें उन्होंने जो हमारे द्विपक्षीय संबंध हैं उसके बारे में जिक्र किया और ये सकारात्मक बातचीत थी।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने फिलिस्तीन के साथ अच्छे संबंधों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमने मानवीय आधार पर फिलिस्तीन को सहायता भी प्रदान की है।
3: सालों से फिलिस्तीन के साथ हमारे अच्छे संबंध रहे हैं और हम लोगों ने उनको विकास की साझेदारी के तहत कई एक सारे प्रोजेक्ट्स मुहैया कराया है। ये प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने द्विपक्षीय तरीके से और साथ ही साथ UNRWA के माध्यम से भी मुहैया कराया है और मानवीय आधार पर उनको सहायता भी प्रदान की है और आगे भी ये कार्य हमारा चलता रहेगा।
1: भारत संयुक्त अरब अमीरात रक्षा साझेदारी पर श्री जायसवाल ने कहा कि हाल के कुछ वर्षों में संयुक्त

0: अरब अमीरात के साथ भारत के रिश्तों में काफी सुधार हुआ है और रक्षा साझेदारी की इसमें प्रमुख भूमिका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सिसेग बटमुख और उद्योग तथा खनन मंत्री गोंगोर दमदनियाम के साथ मंगोल तेल शोधन परियोजना के निर्माण स्थल का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया की मैत्री परियोजना में निरंतर प्रगति हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीव के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी 2026 के परिणाम आज घोषित कर दिए। उम्मीदवार सीयूईटी के आधिकारिक पोर्टल पर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। एजेंसी के अनुसार इस वर्ष प्रवेश परीक्षा में 11 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा है कि पिछली तिमाही में भारत का कुल व्यापार 5.4% बढ़ा है। आज नई दिल्ली में ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट का नवीनतम संस्करण जारी करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री लाहिड़ी ने कहा कि पिछली तिमाही में भारत का निर्यात 1.84 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और आयात में 6.5% की वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि भारत को सिर्फ पेट्रोल पर निर्भर न होकर दूसरे विकल्पों की ओर बढ़ना चाहिए।
1: डाइवर्सिफिकेशन मतलब सिर्फ पेट्रोलियम में निर्भर होना नहीं चाहिए, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी, बायोगैस, विंड, सोलर, न्यूक्लियर वो करना चाहिए। और दूसरी चीज है वी शुड एक्सप्लोर मोर सो दैट वी कैन हैव मोर डोमेस्टिक पेट्रोलियम। थर्ड इज वी शुड डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज। एक जगह कुछ गड़बड़ हो गया तो हमें और कहीं से ला पाएंगे।
0: मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज वर्षा, आंधी और तेज हवाएं चली जिससे तापमान में गिरावट आई। अगले 2 से 3 दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में कल तक तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 3 पदक अपने नाम किए। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर स्पर्धा में शिवा नरवाल ने रजत और युग प्रताप सिंह राठौर ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष जूनियर टीम स्पर्धा में शिवा नरवाल, संदीप बिश्नोई और चिराग शर्मा की तिखड़ी ने रजत पदक जीता। अब भारत के कुल 15 पदक हो गए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे ग्रुप के एक मैच में अमेरिका के ह्यूस्टन में पुर्तगाल का सामना उज्बेकिस्तान से होगा। ग्रुप एल में रात 1:30 बजे इंग्लैंड का सामना घाना से होगा। वहीं सुबह 4:30 बजे क्रोएशिया का सामना पनामा से होगा। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 के गोल से हरा दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुरक्षा सहयोग मजबूत करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागरिक अलंकरण के 2 समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में पत्रकार पी नारायणन, पूर्व टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेता ममूटी और आर माधवन तथा गायिका अलका याग्निक शामिल। सरकार ने कहा, अल नीनो के कारण कमजोर मॉनसून के संभावित असर से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां की जा रही हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल तक गरज के साथ तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग। दिस इज आकाशवाणी एंड

0: preparations to help farmers deal with the possible impact of weak monsoon caused by El Nino. IMD issues orange alert for thunder squall in Delhi, Haryana, Chandigarh and West Uttar Pradesh till tomorrow. Indian men's hockey team beat arch rivals Pakistan 4-3 in opening match of FIH Pro League in London. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Uzbekistan in Houston, US. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुताल्लिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि वो एल नीनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निपटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात के इनका से मुतालिक कौमी एजेंसी NTA ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मुकाबले में भारत की मर्दों की हॉकी टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-4 से हरा दिया है। और फीफा आलमी कप में हाउस्टन में पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बदलते हुए आलमी मंजरनामे में सिक्योरिटी से मुतालिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी से लेकर उभरती हुई टेक्नोलॉजी से लाहक मुश्तरका चैलेंजों के इजाले की खातिर ब्रिक्स का इंतहाई अहम रोल है। वजीर आजम मोदी ने आज शाम नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों और सिक्योरिटी के सीनियर अहदेदारान से मुलाकात की। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने इस बात को भी उजागर किया कि भारत की ब्रिक्स की सदारत में हकीकी इश्तराक में पेशरफ, आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात की हिमायत और एक महफूज और ज्यादा शमूलियत वाली दुनिया के सिलसिले में इश्तराक को अहमियत दी जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नागरिक देवो भव पर जोर दिया है और अफसरान से जोर देकर कहा है कि वो शहरियों को हुक्मरानी में मरकजी अहमियत दें। आज नई दिल्ली में 2024 बैच के IAS के उन 183 तरबियती अफसरान से बातचीत करते हुए जिन्हें मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में बतौर असिस्टेंट सेक्रेटरी मुंसलिक किया गया है, जनाब मोदी ने नौजवान सिविल सर्वेंट से जोर देकर कहा कि वो विकसित भारत @2047 की जानब भारत के सफर की क्यादत करें। वजीर आजम ने मुल्क की तामीर में खवातीन के बढ़ते हुए रोल को ये कहते हुए उजागर किया कि मौजूदा बैच में 40% से ज्यादा खवातीन अफसर हैं। जनाब मोदी ने नौजवान अफसरों से कहा कि वो मुसलसल मुल्क की तामीर में अपने ताउन का जायजा लेते रहें और अपने ओहदों के बजाय अपनी कारकर्दगी से हासिल होने वाले नतायज से इत्मीनान महसूस करें। उन्होंने इस बात पर एतमाद का इजहार किया कि उनकी तवानाई, सलाहियत और खुद को वक्फ करने का जज्बा भारत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने में एक अहम रोल अदा करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में शहरी एजाज दिए जाने की दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड अदा किए। मुल्क के आला तरीन शहरी एजाजात में से एक पद्म अवार्ड 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। सहाफी पी नारायणन को अदब तालीम के जुमरे में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, जबकि साबिक जज केटी थॉमस को सामाजिक काम के लिए पद्म विभूषण से सरफराज किया गया है। पेश एक रिपोर्ट।
2: इस साल हुकूमत ने कुल 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। साबिक टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और प्लेबैक्स गुलूकारा अलका याग्निक समेत 7 लोगों को पद्म भूषण से नवाजा गया है। सियासतदान शिबू सोरेन को बाद अज मर्ग पद्म भूषण दिया गया है। 57 افراد کو پدم شری ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے، جن میں

0: खिलाड़ी रोहित शर्मा, अदाकार आर माधवन और प्रसार भारती के साबिक सीईओ शशि शेखर वेम्पति शामिल हैं। अदाकार सतीश शाह को बाद अज़मर पद्मश्री से सरफराज किया गया है। इस मौके पर नायब सदर सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि हुकूमत नैनो की वजह से कमजोर मानसून के इम्कान असरात से निपटने की खातिर किसानों की मदद के लिए पेशगी तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि मुल्क में अब तक 43% कम बारिश हुई है और जुलाई में भी मानसून के कमजोर रहने का इम्कान है।
2: अल नीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है 2 जुलाई तक के सप्ताह में कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल, उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। हम जो प्रभावित जिले कितने हो सकते हैं उसका आकलन भी किया गया है और अब तक जो संभावना है 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना है।
1: जनाब चौहान ने कहा कि रियासतों को दालों और मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को फरोग देने का मशवरा है जिनमें कम पानी की जरूरत होती है और सख्त मौसम में भी उनकी अच्छी पैदावार हो सकती है। उन्होंने कहा कि रियासतों के साथ तालमेल में साइंसी तरीक़ेकार फसलों की बरवक्त मनसूबाबंदी और जिला सतह की तैयारी को मुस्तहकम किया जा रहा है। नीति आयोग के नायब चेयरपर्सन डॉक्टर अशोक लाहिरी ने आज कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की मजमूई तजारत में 5.4% का इजाफा हुआ। डॉक्टर लाहिरी ने यह बात नई दिल्ली में तजारत पर नजर रखने वाली सिमाही रिपोर्ट का ताज़ा एडिशन जारी करते हुए कही। नायब चेयरपर्सन ने मजीद कहा कि पिछली सिमाही के दौरान भारत की बरामदात 1.84 अरब डॉलर तक पहुंच गई जबकि दरामदात में 6.5% का इजाफा दर्ज किया गया। मगरबी एशिया की सूरतहाल के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहरान आर्जी था। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि दुनिया में जल्द ही अमन कायम होगा। आज जारी करदा रिपोर्ट में बुनियादी तौर पर अद्वियात की तिजारत पर जोर देते हुए आलमी तिजारत में भारत के रोल का तजिया पेश किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात मुनक़िद करने वाली कौमी एजेंसी NTA ने आज अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान CUET 2026 के नतायज का ऐलान कर दिया है। इम्तिहान में शामिल हुए उम्मीदवार अब सरकारी CUET पोर्टल के जरिए अपने स्कोर कार्ड्स तक रसाई हासिल कर सकते हैं। NTA के मुताबिक इस साल इस इम्तिहान में 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट ने आज 1993 के कोलकाता बाव बाजार बम धमाका केस में उम्र कैद के एक मुजरिम की कबल अज वक्त रिहाई के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक लगा दी। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा पर मुश्तमिल बेंच ने मगरबी बंगाल हुकूमत की उस दरखास्त पर अबूरी राहत दी जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत 77 साल मुजरिम मोहम्मद राशिद खान की फौरी रिहाई का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद राशिद खान को भी नोटिस जारी किया। रियासत की जानिब से पेश होते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने इस मामले में इस्लाही नजरिए का गलत इतलाक किया क्योंकि इस धमाके में 70 से ज्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। मोहम्मद राशिद खान के वकील MR शमशाद ने कहा कि उनके मुवक्किल 33 साल से ज्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं और एक शरीक मुलजिम को 2014 में इस सिलसिले में रियायत दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुशाहिदा किया कि खान का रोल मुख्तलिफ था और उन्हें धमाकों का मास्टरमाइंड करार दिया। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज मंगोलिया के वजीर खारजा बैतमुख और सनत और कानकनी के वजीर के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के जेर तामीर मकाम का दौरा किया। सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और मंगोलिया दोस्ती के तहत जारी प्रोजेक्ट में नुमाया पेशरफ्त हो रही है। उन्होंने इन मंसूबों में शामिल मुख्तलिफ टीमों के साथ जारी काम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर खारजा ने प्रोजेक्ट के मकाम पर भारत और मंगोलिया के वर्करों के साथ बातचीत की। उन्होंने इन मुश्किल हालात में इस तरह के अहम प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाने में उनकी मेहनत, लगन और अज़्म को सराहा। वजारत खारजा ने आज कतर में होने वाले एक

धमाके में 12 भारतीय शहरियों के हलाक होने की तस्दीक की। नई दिल्ली में नामा निगारों से गुफ्तगू करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस हादसे में 66 अफराद जख्मी भी हुए जिनका इलाज अभी चल रहा है। जनाब जायसवाल ने मजीद कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत नामे पर दस्तखत होने के बाद अब तक भारत से वाबस्ता 11 बहरी जहाज आबनाए हुरमुस से गुजर चुके हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाकी भारतीय परचमबरदार जहाज भी जल्द ही इस रास्ते से गुजरेंगे। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर से मुतालिक बयान पर अपना रद्द अमल जाहिर करते हुए तर्जुमान ने कहा कि ऐसे बयान पाकिस्तान की अपनी नाकामियों और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाने की एक लायानी कोशिश है। उन्होंने कहा कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करता है और इन दावों को बिल्कुल ही अहमियत नहीं देता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने आने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप में एक जामे मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इस मशक के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने मुश्तरक तौर पर बेस कैंप के पूरे अहाते में तलाशी और इलाके को महफूज बनाने की कार्रवाई अंजाम दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान ने अपने न्यूक्लियाई बुनियादी ढांचे की तवील मुद्दती और जामे निगरानी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। इसके साथ ही अमरीका अब नाए हुरमुज में पहरी जहाजों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदियों में नरमी करेगा और माली रियायतें फराहम करेगा। ताहम ये सब सख्त अमरीकी निगरानी के तहत होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक तफसीली बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की क़यादत ने जारी सिफारती मुज़ाकरात में अहम रियायतें दी हैं जिनका मकसद मगरबी एशिया में तवील कशीदगी के बाद एक जामे अमन फ्रेमवर्क कायम करना है। ताहम व्हाइट हाउस के इस बयान पर ईरान की हुकूमत ने फौरी एतराज़ किया और न्यूक्लियर निगरानी के दायरेकार के बारे में इख्तिलाफ जाहिर किया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकाई ने वाज़ेह किया कि ईरान ने मखसूस न्यूक्लियाई तनसीबात पर बैन अल-अक़वामी एटमी तवाना एजेंसी की निगरानी कबूल नहीं की। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 60 से 70 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंचने का इम्कान है। दिल्ली NCR में मौसम में अचानक शदीद तब्दीली देखी गई क्योंकि खित्ते में तेज बारिश, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चल रही थी। IMD के मुताबिक कौमी राजधानी में कम से कम दर्ज हरारत 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.4 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। दूसरी जानिब IMD ने कहा कि 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। लंदन में FIH प्रो लीग हॉकी के इफ्तिताही मैच में मर्दों की भारतीय हॉकी टीम ने रिवायती हरी पाकिस्तान को 3-4 गोल से हरा दिया। भारत और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये मुकाबला इस टूर्नामेंट के सबसे अहम मुकाबलों में से एक था। लंदन मरहले के दौरान भारत जुमेरात को इंग्लैंड का सामना करेगा और 26 जून को एक बार फिर पाकिस्तान से खेलेगा। इसके बाद 28 जून को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले के साथ अपना दौरा मुकम्मल करेगा। आज फीफा आलमी कप में ग्रुप मरहले के तहत मुख्तलिफ अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप के में हाउस्टन में रात 10:30 पुर्तगाल का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। वहीं ग्रुप एल के तहत देर रात 1:30 बोस्टन में इंग्लैंड और घाना आमने सामने होंगे। बाद में सुबह सवेरे 4:30 टोरंटो में क्रोएशिया का मुकाबला पनामा से होगा। जर्मनी के शहर सूल में जारी ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारत के लिए आज का दिन भी शानदार रहा और उसने मजीद 3 तमगे हासिल किए जिनमें चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। शिवा नरवान ने मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए चांदी का तमगा जीता जबकि युग प्रताप सिंह राठौड़ ने भी इसी मुकाबले में कांसे का तमगा जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक इश्तराक को मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी और साइबर सिक्योरिटी जैसे चैलेंजों से निपटने में ब्रिक्स का अहम रोल है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शहरी एजाज से मुताल्लिक दूसरी तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता किए। सहाफी पी नारायणन, टेनिस के सरकर्दा खिलाड़ी विजय अमृतराज, अदाकार ममूती और आर माधवन और गुलूकारा अलका याग्निक पद्म अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं।
हुकूमत ने कहा है कि

0: एनिनो की वजह से कमजोर मॉनसून के असरात के इम्कान से निमटने के लिए किसानों की मदद की खातिर पेश की तैयारियां कर रही है। इम्तिहानात की निकास से मुतालिक कौमी एजेंसी एनटीए ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुश्तरका यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान के नतायज का ऐलान कर दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कल तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और मगरबी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर आइए सुनते हैं नाटक।
2: ये आकाशवाणी पटना है। प्रस्तुत है नाटक समाज की रीढ़ शिक्षक। लेखिका है शादमा हसन। प्रस्तुति सहायक डॉक्टर रुपेश कुमार रूप। प्रस्तुत करता है अलका प्रियदर्शिनी। भाग लेने वाले कलाकार हैं अंजू चंद्रा, पूनम ठाकुर, संजय रॉय, ओम कपूर और सरविंद कुमार।
3: अरे मास्टर जी प्रणाम, क्या हुआ?
4: अरे बेटा गोपाल, खूब खुश रहो। कुछ नहीं बेटा, वो मैं सब्जियां लेकर घर जा रहा था कि रास्ते में मेरा थैला फट गया और ये सब सामान देखो ना बिखर गया है।
5: ये देखो, खुद के समय का तो मोल है नहीं, दूसरे के समय को भी समय नहीं समझते। ड्राइवर हॉर्न बजाते रहो।
4: अरे भाई हो गया। लगता है बड़ी जल्दी में है ये जनाब।
3: मास्टर जी जमाना ही ऐसा आ गया है, जिसे देखो जहाँ देखो वही भागम भाग में लगा है। अरे मुनिया
6: जी,
3: चल जरा जल्दी से लपक कर सब समेट कर उठा ले।
6: जी बापू, अरे ये सब हो गया, लीजिए मास्टर जी।
4: खूब खुश रहो मेरी बच्ची, खूब खुश रहो।
3: मास्टर जी ये जो गाड़ी गई है आपने पहचाना इसे? वो अपने पंकज की थी।
4: पंकज? नाम तो सुना हुआ लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है बेटा।
3: ये वही पंकज है जो बड़ा शरारती हुआ करता था। कितनी बातें सुनी है आपसे, वही अपने वैद्य जी का बेटा।
4: ओहो याद आया, वैद्य जी का लड़का पंकज। हाँ हाँ हाँ, बड़ा शरारती था वैद्य जी। कितनी चिंता करते थे कि क्या करेगा बड़ा होकर। चलो अच्छा है गाड़ियों से घूम रहा है।
3: जी मास्टर जी, और तो और सुना है कि अपने विद्यालय के पास वाली जो खाली जमीन है ना, उसको ये खरीदने का प्रयास कर रहा है ताकि वहाँ विद्यालय बना सके।
4: अरे वाह, गांव में नया स्कूल, लेकिन अपने पुराने स्कूल के पास ही क्यों? चलो खैर अब चलता हूँ, बड़ी देर हो गई है, मास्टरनी जी राह देखती होंगी।
3: जी मास्टर जी, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ।
4: हाँ।
3: चल मुनिया।
6: जी बापू।
4: चलो।
3: बहुत बहुत मुबारक हो पंकज, आखिर तुम्हें कामयाबी मिल ही गई।
5: हाँ यार, 4 साल से इस जमीन के पीछे लगा था, आज हाथ आ ही गई।
3: अरे यार ये मशहूर डायलॉग तो तुमने सुना ही होगा कि जब तुम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात मिलकर उस चीज से तुम्हें मिला देती है।
5: ओ यारा, ये ऐसे है, कहते हैं अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने की कोशिश में लग जाती
3: है। हाँ वही वही, समझ गया ना तू, इतना ही काफी है। पर यार एक बात समझ में नहीं आई, ये गांव में तो इतनी जमीन है, फिर तूने पुराने स्कूल के पास ही वाली ये जमीन क्यों लिया?
5: तू नहीं समझेगा, ये सब बिजनेस का फंडा है, इन सब चीजों में कहां पड़ रहा है तू। ले मिठाई खा।
7: अरे मास्टर जी आप कब आए, मैं कब से राह देख रही थी। रुको अभी चाय लेकर आती हूँ। ये लो चाय। क्या बात है, इतने चुप क्यों हो, कुछ हुआ है क्या?
4: कुछ कहा क्या तुमने?
7: क्या बात है, सच बोलना, इतनी गहरी चिंता किस बात की है?
4: अरे बाबा कुछ नहीं।

0: बस यूं ही।
1: बस यूं ही? ये बस यूं ही नहीं है, जरूर कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है।
0: है तुम भी ना, देखो मैं सबको पढ़ाता हूँ और तुम मुझे पढ़ लेती हो।
1: क्यों नहीं, इतने सालों का साथ है हमारा।
0: हाँ ये साथ, तुम्हारा साथ और प्यार ही तो है जो मुझे शक्ति प्रदान करता है, हर मुश्किल हालात से निकलने की हिम्मत देता है।
1: तो फिर अब बता भी दो ना कि किस बात पर ये गमजदा होकर बैठे हो।
0: रमा, वो तुम्हें बैजी का लड़का पंकज याद है?
1: बैजी का लड़का पंकज, वही ना जो शरारती था, अक्सर दूसरों को परेशान किया करता था।
0: हाँ हाँ वही, वो अपने स्कूल के पास वाली जमीन को ले रहा है जिस पर वो स्कूल बनाएगा, जो हर सुविधाओं से परिपूर्ण स्कूल होगा।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, नया स्कूल खुलेगा गांव में।
0: अरे रमा तू भोली है, हो मेरी भोली भाली रमा, बैठो मैं समझाता हूँ। देखो अब तक हमारे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है, अपना पुराना स्कूल है। नया स्कूल खुलना तो वाकई गर्व की बात है, किंतु रमा।
1: किंतु क्या, क्यों झूठ मूठ अपना खून जला रहे हो?
0: झूठ में नहीं रमा, जरा सोचो, नए स्कूल में बच्चों को सहूलियत

0: मैं समझाता हूँ। देखो, अब तक हमारे गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है, अपना पुराना स्कूल है। नया स्कूल खुलना तो वाकई गर्व की बात है, किंतु रमा।
1: किंतु क्या, क्यों झूठ मूठ अपना खून जला रहे हो?
0: झूठ में नहीं रमा, जरा सोचो, नए स्कूल में बच्चों को सहूलियत मिलेगी, जो अच्छी बात है, लेकिन सहूलियत के नाम पर एडवांस, पढ़ाई के नाम पर स्कूल में मनमाने ढंग से फीस भी तो ली जाएगी। फिक्र मुझे वैसे बच्चों की है जिनके माँ बाप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? बच्चों का मनोबल टूटेगा, साथ ही मुझे डर है कि कहीं शिक्षा का व्यापारीकरण न हो जाए। मैं शिक्षक केवल कर्म से नहीं हूं, बल्कि बच्चों को पढ़ाना अपना धर्म समझता हूं। पूरी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाते आया हूं, लेकिन डर है कि अब कहीं तस्वीर न बदल जाए।
1: तुम्हारा डरना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे तुम पर और तुम्हारी दी हुई शिक्षा पर पूरा भरोसा है। थोड़ा शरारती ही सही, पर पंकज था तो तुम्हारा ही विद्यार्थी।
0: भगवान करे तुम सही हो और मैं गलत।
1: ओह, गलत की बात क्यों करते हो? कुछ गलत होगा तो तुम हो ना संभालने को। अब ये बेकार का डर मन से निकाल दो, समझे?
2: भाई पंकज, एक साल के अंदर तूने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, क्या बात है! मुबारक हो मेरे दोस्त, मुबारक हो।
3: तुझे भी मुबारक हो मेरे यारा।
2: और सारे काम हो गए, मतलब पूरी तैयारी हो गई क्या?
3: हाँ, लगभग हो ही गई, बस अपने मास्टर जी को निमंत्रण पत्र देना है।
2: अच्छा, तो चलो चल कर दे आते हैं।
3: नहीं, वो मैं थोड़ा डरा सा था, वो पुराने ख्यालों वाले हैं ना, अपने आदर्शों पर चलने वाले, यू नो, आदर्शवादी टाइप मास्टर जी। फिर भी चल, उन्हें निमंत्रण पत्र दे ही आता हूँ, आखिर बचपन में बहुत मेहनत की है हमारे लिए।
2: नमस्ते मास्टर जी।
0: अरे तुम दोनों, नमस्ते नमस्ते, आओ आओ। और कैसे आना हुआ? आज इधर कैसे कैसे याद आ गई इस गरीब मास्टर की?
3: वो मास्टर जी, आपको तो पता ही होगा, वैसे तो पूरे गांव को पता है, फिर भी बता देता हूँ। मेरा स्कूल, जो अपने गांव का पहला सभी सुविधाओं से परिपूर्ण स्कूल है, अब बनकर तैयार हो गया है, उसी का निमंत्रण पत्र देने आया हूँ।
2: हाँ मास्टर जी, स्वीकार कीजिए गुरुदेव, और मेरे दोस्त को आशीर्वाद दीजिए कि खूब फले फूले और तरक्की करे।
0: मेरा आशीर्वाद तो मेरे सभी बच्चों के साथ है, बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि तुम सब जिस क्षेत्र में भी जाओ, अपनी जमीन से जुड़े रहो, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ो।
3: ये ईमानदारी, ये निष्ठा, ये सब रहने दीजिए मास्टर जी, क्या हासिल हो गया आपको अपने ही आदर्शों से? ना नया घर बना पाए, ना तरक्की की, ना कुछ हासिल कर पाए, वही पुरानी साइकिल। गुरुजी, आगे बढ़ना है तो, खैर छोड़िए गुरुजी, आप नहीं समझिएगा, जाने दीजिए।
0: क्या मिला मुझे, न जाने कितने ही बेबस माँ बाप की दुआएं और न जाने कितने ही ख्वाबों को टूटने से बचाया है। बेटा, जब हम दूसरों के दुख को अपना समझते हैं ना, तब जब उनके सुख के दिन आते हैं तो लगता है कि मैं सुखी हूँ। मेरे सभी सफल विद्यार्थी की सफलता में मैं खुद को देखता हूँ।
3: हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। खैर मास्टर जी, चलता हूँ, राम राम।
2: राम राम मास्टर जी।
1: बाप रे बाप, ये तो आज भी नहीं बदला।
0: हाँ रमा, बदला तो ये आज भी नहीं है।
2: आइए आइए मास्टर जी, आज पंकज जी के विद्यालय का उद्घाटन हो रहा है, आप भी देखिए।
3: देख रहे हैं ना मास्टर जी, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं मेरे स्कूल के लिए।
0: हाँ देख रहा हूँ, लेकिन चकाचौंध की दुनिया में तुम खो न जाना पंकज।
3: ओहो, फिर से वही? नहीं मास्टर जी, आज तो बिल्कुल भी नहीं।
0: लगता है मौसम खराब होने वाला है, मैं चलता हूँ। रमा रमा, दरवाजा खोलो।
1: अरे

0: आ गए आप।
1: हाँ रमा, लगता है बारिश बहुत ज्यादा होगी, इसलिए कुछ काम की चीज है, अगर आंगन में पड़ी हो तो हटा देना।
2: आपके क्षेत्र का पहला अपना स्कूल जहां नामांकन प्रारंभ हो चुका है, सभी सुविधाओं से संपूर्ण स्कूल जहां आपके नौनिहाल को मिलेगा एक बढ़िया स्कूल, सर्वांगीण विकास होगा। आइए आकर्षक छूट, तो जल्दी कीजिए, जल्दी आइए, पहले आइए पहले पाइए।
0: किले में छूट मिल रही है, चलो चलकर बात करते हैं हम लोग।
3: हाँ हाँ, चलो चलो चलकर बात करते हैं
0: हम लोग, पता करते हैं, चलो करवाएंगे। हाँ हाँ, चलो बच्चों का।
4: अरे मास्टर जी, प्रणाम।
1: प्रणाम प्रणाम। अरे तुम सब कहाँ से आ रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो।
4: जी मास्टर जी, वो हमने अपने बच्चों का दाखिला नए स्कूल में करवा दिया है, अब उनके सुनहरे भविष्य का सपना वो साकार होगा।
1: चलो अच्छा है, बच्चों को उस शिक्षा देना तो माता पिता की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन ध्यान देना, जिस प्रकार पहले विद्यालय में एब्सेंट करवा देते थे ना, वहाँ ऐसा ना करना, नियमित क्लास करवाना और अपनी निगरानी में भी रखना, समझे?
4: जी मास्टर जी, मास्टर जी पता है वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास की भी व्यवस्था है, अब अपने बच्चों के लिए सब नया नया होगा, तो समझने के लिए एक्स्ट्रा क्लास भी तो जरूरी होगा ना मास्टर जी।
1: अरे वाह, अच्छा बुधिया, तुम सबको याद है 2 साल पहले जब विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों के अतिरिक्त पढ़ाई के लिए प्रस्ताव रखे थे, तब तो किसी ने भी अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजा, और आज खैर जब जागो तभी सवेरा, पढ़ाओ बच्चों को, उनका पढ़ना जरूरी है।
5: यहाँ पधारे सभी अभिभावकों को मैं पंकज प्रणाम करता हूँ। आज 6 महीने हो गए हमारे स्कूल को संचालित होते हुए, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, बहुत खुशी हुई, बच्चे भी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, तभी तो हमने राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। हम यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसके लिए आपका सहयोग अपेक्षित है।
2: अरे माए, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या बताएं, जब से इस स्कूल में दाखिला बच्चों को दिलवाया है, तब से हर 3 महीने में किसी न किसी चीज के नाम पर एक मुश्त रकम की डिमांड कर दी जाती है। मेरी तो खटिया खड़ी हो गई है सिर्फ 6 महीने में ही।
0: अब ओखली में सिर दिए हो तो डर काहे का।
2: भाइयों भाइयों भाइयों और बहनों, इस खुशी के अवसर पर एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूल के बच्चों द्वारा पेश किया जाएगा स्थान स्कूल प्रांगण में। आप सभी अभिभावकगण सादर आमंत्रित हैं। याद रहे, आने वाले रविवार यानी कि 5 तारीख को आपके बच्चे पेश करेंगे अपनी कला का प्रदर्शन, कृपया ध्यान दें, तो आशीर्वाद देने अवश्य पधारें।
4: लो, एक और बोझ हमारे कंधों पर।
1: बोझ? कैसा बोझ?
4: का बताएं मास्टर जी, स्कूल में फीस बहुते मनमाना है, कभी किसी चीज के नाम पर तो कभी कुछ के लिए अलग से एक मुश्त रकम अलग ही वसूल किया जाता है।
6: और तो और मास्टर जी, बच्चों की कापी किताब तक तो ठीक था, अब तो बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था स्कूल वाले ही कर रहे हैं, जिसका भुगतान भी हमारे सर पर ही आ जाता है।
1: अच्छा ऐसा है?
6: जी मास्टर जी, ऐसा ही है।
1: तो फिर तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं?
4: हम लोग का करें, कौन सुनेगा हमारी, किसको बोले मास्टर जी?
1: किसी और को बोलने की क्या जरूरत है, पहले तुम खुद से पूछो, क्या इन स्कूल वालों को मनमानी करने देने के पीछे तुम सब नहीं हो?
4: हम सर? वो कैसे मास्टर जी, हम लोग तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, और ये क्या?

0: ठीक ही तो कह रहा हूं, पता नहीं आजकल के अभिभावकों को क्या हो गया है। झूठी शान की खातिर मेरा लड़का, मेरा बच्चा फला जगह पढ़ रहा है, उसके स्कूल में ये सुविधा है, वो सुविधा मिल रही है। हकीकत तो ये है कि बच्चों के साथ तुम भी आधुनिक होना चाहते हो, समाज में अपनी पैठ बनाना चाहते हो। क्या आज से पहले हमारे गांव में पढ़ाई नहीं होती थी? क्या यहां से पढ़कर बच्चे आगे नहीं गए? मुखिया, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस तक सभी यहीं की देन है। तब के अभिभावकों को इस स्कूल में कोई कमी नहीं दिखती थी, लेकिन अब
1: तो सही कहा भाई मास्टर जी।
2: सही कहा मास्टर जी, आज आधुनिकता की चाह में हम सब अंधे हो गए हैं। बच्चों की अच्छी शिक्षा की जगह हम उनकी सहूलियतों को देखने लगे और अपना सुख चैन गंवा बैठे।
3: जी मास्टर जी, बात तो आपकी 16 आने सच है। अब देखिए हम सब मिलकर क्या करते हैं, क्यों गांव वाले?
2: बिल्कुल सही, हम सब पंकज की मनमानी नहीं चलने देंगे, स्कूल की मनमानी नहीं चलने देंगे। स्कूल वाले होश में आओ, होश में आओ।
4: अरे भाई आप लोग शांत हो जाइए, क्या हुआ? आप सभी की परेशानी क्या है? आराम से बात कीजिए, सभी मसलों का हल निकल सकता है अगर आराम से बैठकर बात की जाए तो।
5: डायरेक्टर सर ने कहा है कि आप में कुछ लोग अंदर आकर आराम से बात कीजिए, यूं हो हल्ला हंगामा से कुछ नहीं होने वाला है।
2: अरे भाई हम सब क्या बात करेंगे, एक काम कर। अरे गुड्डू जा जल्दी से मास्टर जी को बुला ला, वही बात करेंगे।
6: अभी बुला कर लाता हूँ। मास्टर जी आपको सभी बुला रहे हैं।
0: अरे अरे अरे इस तरह से क्यों कर रहा है, सांस तो ले ले पहले। कौन बुला रहा है?
6: मास्टर जी वो हमारे स्कूल के बाहर सभी गांव वाले इकट्ठा हैं, वही आपको डायरेक्टर सर से बात करने के लिए बुला रहे हैं।
0: हो अच्छा ठीक है, तू चल मैं आता हूँ।
6: ठीक है मास्टर जी।
2: राम राम मास्टर जी।
0: राम राम, कहो क्या हुआ?
2: मास्टर जी स्कूल के डायरेक्टर यानी के पंकज ने हमें बुलाया है बात करने के लिए। अब पूरे गांव में आपसे ज्यादा सुलझा और आपसे ज्यादा समझदार तो कोई और है ही नहीं, इसीलिए हमारी तरफ से आप बात कीजिए ना मास्टर जी।
3: हाँ हाँ मास्टर जी, हम सब का निवेदन है कि आप हमारी तरफ से स्कूल की बढ़ती मनमानियों के खिलाफ बात करें पंकज।
0: ठीक है, तुम सब कहते हो तो मैं कोशिश करता हूँ।
2: मास्टर जी की, मास्टर जी की।
0: अच्छा अच्छा अब शांत हो जाओ, बात करता हूँ।
4: पाय लागू मास्टर जी।
0: खुश रहो बेटा। बेटा पंकज, जब ये स्कूल खुला था तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर भी था, एक संदेह था कि शिक्षा कहीं शिक्षा न रहकर धन अर्जित करने का माध्यम न बन जाए। और देखो मेरा डर आज सही साबित होता नजर आ रहा है।
4: मास्टर जी कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप हैं कि समझते ही नहीं।
0: हाँ तो समझाओ ना मुझे। देखो पंकज, माँ बाप के बाद गुरु का ही स्थान होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, याद है या भूल गए सब?
4: याद है गुरुदेव, किंतु हमारी भी परेशानियों को आप समझिए। अब देखिए मैंने बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए बाहर से शिक्षकों की नियुक्ति की है, लैब की व्यवस्था की है, कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट क्लास है, लाइब्रेरी है, गेम जोन है और सभी में एसी भी लगे हैं, इन्वर्टर है, स्विमिंग पूल है, साथ ही बच्चों के टीचर्स के बर्थडे सेलिब्रेशन से लेकर समय समय पर बच्चों के लिए पिकनिक की भी व्यवस्था है। और तो और स्कूल में ही सभी बच्चों की खाने की भी व्यवस्था कर रखी है मैंने, बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल में गार्ड्स हैं, खर्च भी तो है मास्टर जी।
0: मानता हूँ खर्च ज्यादा है, अब जहाँ भौतिक सुख सुविधाएं ज्यादा होंगी तो आर्थिक खर्च तो बढ़ेगा ही, अब इन सब चीजों को ध्यान में रखकर ही तो तुमने स्कूल फीस ज्यादा ही रखी है।

0: और पंकज, इनमें से कई सुविधाएं तो ऐसी हैं जिन्हें तुम ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, सही बोला ना मैंने?
1: जी मास्टर जी।
0: तो फिर बच्चे, जब तुम्हारा खर्च निकल जाता है तो फिर हर 3 या 6 महीने में एक्स्ट्रा खर्च का भार क्यों डालना अभिभावकों पर? बोलो।
1: वो गुरुजी ऐसा है कि
0: वो ऐसा है वैसा है, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। याद कर पंकज, जब वैद्य जी की अचानक मृत्यु हो गई थी तो क्या हमने तुझे कभी भी किसी चीज की कमी का एहसास होने दिया था? पैसों की खातिर तुझ पर या तेरे घर वालों पर कभी कोई दबाव बनाया?
1: नहीं मास्टर जी।
0: तो फिर बच्चे, आज ऐसा क्या हो गया है जो मेरी दी हुई शिक्षा आज बेअसर हो गई? क्या तुझे कुछ भी याद नहीं?
1: नहीं मास्टर जी, मुझे सब याद है। पैसों की तंगी नहीं, शायद पैसा ही सब कुछ है ऐसी मानसिकता वाला बना दिया। बापू की मृत्यु के बाद जब रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था, तब वो तीर की तरह मेरे दिल में चुभता था गुरुजी।
0: वो तीर तुझे याद है, और उस वक्त जो मरहम बना, जिसने तेरे सर पर हाथ रखा, उसे तू भूल गया।
1: मुझे माफ कर दीजिए मास्टर जी, मुझसे गलती हो गई। जाने अनजाने मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मुझे
0: अरे बेटा,
1: माफ कर
0: अरे
1: दीजिए।
0: बेटा, पंकज, रो नहीं, चुप हो जा।
1: मास्टर जी, अभी भी देर नहीं हुई है। वक्त की आंधी ने जो गर्द गुबार मेरी याद पर जमा दिए थे ना, आज आपकी बातों ने उसे साफ कर दिया। मेरी आंखें खोल दी। अब देखिएगा मैं कैसे सभी चीजों को ठीक करता हूं।
0: शाबाश, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है।
1: और अब मैं आपकी उम्मीद पर खरा उतर कर दिखाऊंगा मास्टर जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे शेर, हाँ, मेरे बेटे, मेरे गले से लग जा।
1: और वैसे भी मास्टर जी, बचपन में आप कहा करते थे, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और मेरे मामले में तो अभी शाम नहीं, दोपहर ही हुई है मास्टर जी।
0: अरे पंकज, तू और तेरी मस्ती।
1: जी मास्टर जी,
0: हाँ
1: जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा। चलिए
0: हाँ
1: अब अभिभावकों को आप ही समझाइए।
0: ठीक ठीक है, चलो चलते हैं। देखिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, पंकज से मेरी बात हो गई है, वो जल्द ही इन सारे मामलों को सुलझा देगा। हाँ बिल्कुल सुलझा देगा।
2: डीएम कार्यालय से आपके लिए चिट्ठी।
1: डीएम कार्यालय से शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक योगदान के लिए 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे गांव के सामने सम्मानित किया जाएगा। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है।
3: आज हम सब यहाँ एक ऐसी शख्सियत के सम्मान के लिए इकट्ठा हैं जिन्होंने अपने गांव में शिक्षा की एक ऐसी मशाल जलाई है, कई घरों को रोशन किया है, कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। उन्होंने अपने साथ साथ गांव का नाम भी रोशन कर दिया, और इन सब का श्रेय पंकज चौधरी को और उनकी दूरदर्शिता को जाता है। जोरदार तालियां पंकज चौधरी जी के लिए।
1: धन्यवाद, आप सभी का आभार। लेकिन सारी चीजों का श्रेय केवल मुझे देना अनुचित होगा, क्योंकि नाम भले ही मेरा, इन चीजों का माध्यम भले ही मैं हूं, लेकिन सोच और दूरदर्शिता मेरी नहीं है, ये तो मेरे गुरुदेव के हैं। जी हाँ, ये जो शिक्षा की मशीन

0: काल आज इस गांव में है, इसकी चिंगारी मेरे मास्टर जी के गुरुकुल से निकली है।
1: अरे भाई, चिंगारी मत बोलो, चिंगारिया बोलो। मैं अब्दुल गुरुकुल में तुझसे 2 साल सीनियर था, जो अब अपने जिले का डीएम हूँ।
0: अब्दुल भैया,
1: जी हाँ, आज से 30 साल पहले जो जिम्मेदारी हमारे मास्टर जी ने अपने कंधों पर उठाई थी, आज वो फल फूल रही है। मास्टर जी के पढ़ाए कई बच्चे अलग अलग जगह पर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सच है, जन्म हमें माता पिता से मिलता है, लेकिन जीवनदान जीने की कला हमें हमारे गुरुओं से प्राप्त होती है। किसी भी समाज की मजबूत संरचना के लिए एक शिक्षक की भूमिका बहुत अहम होती है। इसलिए आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मास्टर जी का सम्मान करना चाहूंगा, जिसके लिए मैं उन्हें स्टेज पर आने का निमंत्रण देता हूं। और अब मास्टर जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि पंकज को अपने हाथों से सम्मानित करें।
0: गुरुजी, गुरुजी, आपके हाथों सम्मान पाकर मैं तो धन्य हो गया। गुरुजी, धन्य हो गया।
2: खूब खुश रहो मेरे बच्चों, खूब खुश रहो।
1: और अब इस खुशी के मौके पर मैं चाहूंगा किस गांव के दिलों के धड़कन, हम सब के गुरूर, हमारे प्रिय गुरुजी अपने आशीर्वचन से हमें नवाजे।
2: बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज इस खुशी के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा जो स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, आगे बढ़ो और तब तक रुकना नहीं जब तक तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। मेरे बच्चों, कभी भी हार मत मानना, इरादे हमेशा नेक रखना। अपने साथ साथ औरों का विकास कैसे होगा, इस बात का खास ध्यान रखना। असली सफलता सभी की सफलता में है। और ध्यान रहे, इन तमाम बातों का एक ही सार है, वो है शिक्षा। यदि आप शिक्षित हैं तभी इन बातों को समझ पाएंगे। इसलिए हर इंसान को शिक्षा से जुड़ना चाहिए, शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। याद रखो बच्चों, शिक्षा से मिलता मान है, सुख और सम्मान है। जो हो तुम ज्ञानी, समझो सवर गई जिंदगानी।
3: अभी आप सुन रहे थे नाटक समाज की रीढ़ शिक्षक। लेखिका थी शादमा हसन, प्रस्तुति सहायक डॉक्टर रुपेश कुमार रूप, प्रस्तुतकर्ता थी अलका प्रियदर्शिनी। भाग लेने वाले कलाकार थे अंजू चंद्रा, पूनम ठाकुर, संजय रॉय, ओम कपूर और सरविंद कुमार।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
6: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
5: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं विवाह गीतों पर आधारित लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे बिहार।

श्रोताओं को कुमुद का नमस्कार। आपने अक्सर कहते सुना होगा, बेवक्त की शहनाई बज रही है, पर हम आपको वक्त की शहनाई सुनाने जा रहे हैं, यानी शादी ब्याह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत। मुंगेर से मालन आई है मोर लेकर। सभा में बैठे बड़े बुजुर्गों से मोर का मोल भाव करने की बात कही जा रही है। बाबा कहते हैं, अरे मालन, अभी तू लौट जा, सवेरे मैं तुझे अच्छे अच्छे वस्त्र दूंगा। मालन कहती है, नहीं बाबू, मैं सिर्फ कपड़े नहीं लूंगी, कपड़ों के साथ मुझे तो कानों के मोती दो और मेरे माली के चढ़ने को घोड़ा।

बनने के लिए मौरी मुंगेर से बनकर आ गई। मगर ये भी ध्यान देने की बात है कि गर्मी का क्या आलम है। एक तो मौसम का असर, दूसरे सिर पर मोर का भार, और तीसरे होने वाली दुल्हन की आती जाती यादों से परेशान। पसीने से सराबोर तो होना ही है, लेकिन बेला, चमेली, जूही, आह, नाम लेते ही मस्ती सी छा गई। हाँ, तो इन फूलों से गूंथी गई माला जो बनने को पहराई गई तो कुछ राहत मिली।

गज मोती जड़ा मोर झिलमिल करती लड़ियों के बीच बीच से झांकता सलोना चेहरा, बेली चमेली जूही के हार से बिखर गई सुगंध। कैसा सुंदर लग रहा है मेरा लाल, ठीक मोती दाने जैसा।

बारात घर से चलने ही वाली है, एक बार लाडले को जी भर कर देख तो लें। सहरे की लड़ियां लाल, जोड़े का पटुका लाल, कुंडल के मोती लाल, मेरे लाल का सब कुछ लाल लाल। मीठे सपनों में खोई खोई माँ सोचती है, सारी रात का जगा मेरा बन्ना जब घर वापस आएगा तो साथ में होगी चांद सी दुल्हन।

राम उस पर सवार हैं। परीक्षने को पहुंची सास दूल्हे के सौंदर्य से ऐसी अभिभूत कि दामाद को ठीक से देख भी नहीं पाती। आरती उतारने की तैयारी है। इधर जनक जी दूल्हे से मोर संभाल कर पालकी में बैठने का आग्रह करते हैं और उधर दूल्हे राजा की नींद से अलसाई पलकें रह रह कर बंद हुई जा रही। शोभा अपूर्व है।

चलिए, नींद से मतवाले हो रहे लाल का ब्याह हो गया। विवाह के गीतों में एक कोहबर का गीत हुआ करता है। ब्याह के बाद वर वधु को एक कमरे में बैठाते हैं। वहाँ स्त्रियाँ वर से तरह तरह के मजाक करती हैं। ये हाथ परिहास बहुत ही शिष्ट और संयत होता है। बाहर गुलाब के लाल फूलों से और भीतर पान के हरे हरे पत्तों से सुसज्जित कोहबर घर। वर विश्राम कर रहा है, दुल्हन पंखा झल रही है। झलते झलते उसे नींद आ जाती है। बस इतनी सी बात पर नौशे रूठ जाता है। भला ऐसा भी क्या, अगर वो सोई थी तो ये उसे निहारता रहता।

लेकिन उसने तो अपना बिस्तर ही आंगन में बिछवा लिया। मगर आधी रात में अचानक वर्षा की झड़ी जो लगी तो दूल्हे राजा का गुस्सा बताशा बनकर गल गया। अब तो वो किवाड़ खोल देने के लिए दुल्हन से अनुनय विनय करने लगा।

0: अभी आप सुन रहे थे विवाह गीतों पर आधारित लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे बिहार। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

अभी आप सुन रहे हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं देवर ने और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

चाइना टाउन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और साथी की आवाज़ में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार रवि।

ज्वेल थीप फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं मधुर सुल्तानपुरी और संगीतकार एच डी बर्मन।

0: गाइड फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने और संगीत से सजाया था एच डी बर्मन ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और साथी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है तीन देवियाँ। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार एच डी बर्मन।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में मेरे सनम फिल्म का गीत। गीतकार थे मजहर सुल्तानपुरी और संगीतकार ओपी नैयर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रस लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही भारत कतर सहयोग को विभिन्न क्षेत्रों में और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा सहयोग को मजबूत

0: करने और आतंकवाद तथा साइबर सुरक्षा से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तक की साझा चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने आज शाम ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों तथा वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को समर्थन करने और एक सुरक्षित, अधिक संरक्षित तथा समावेशी विश्व में योगदान देने का प्रयास करेगी। इस बीच ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 16वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इसमें ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों ने दुनिया के सामने मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। इस दौरान पारंपरिक सुरक्षा के अलावा ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और साइबर सुरक्षा तथा आतंकवादी नेटवर्क द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई तकनीकों और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। पत्रकार पी नारायणन को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण और पूर्व न्यायाधीश के टी थॉमस को समाज सेवा के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि सरकार एलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: एलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है, और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: श्री चौहान ने कहा कि राज्यों को दलहन, मोटे अनाज और तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देने की सलाह दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज दावा किया कि ईरान अपने परमाणु केंद्रों की व्यापक निगरानी के लिए सहमत हो गया है। इसके बदले अमेरिका हार्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पर पाबंदियों में ढील देगा और कड़े नियमों के तहत रोकी गई वित्तीय रियायतें जारी करेगा। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने मौजूदा कूटनीतिक बातचीत के दौरान लचीला रुख अपनाया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने परमाणु निगरानी ढांचे के दायरे से को लेकर अमेरिका के दावों को खारिज कर दिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने स्पष्ट किया कि ईरान ने अपने विशिष्ट परमाणु केंद्रों की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसियों द्वारा निगरानी के लिए कोई सहमति नहीं दी है। पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग के लंदन चरण के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से अभिषेक नैन, नीलकांत शर्मा, सुखजीत सिंह और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।